मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:52 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की ये सभा।

0: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 5:55 हो चुके हैं। प्रस्तुत है खेत खलिहान कार्यक्रम में पूर्व प्रसारित वार्ता। विषय है जैव उर्वरक। वार्ताकार है डॉक्टर महेंद्र सिंह।
1: भूमि उपचार के लिए 2 किलोग्राम कल्चर लेकर 50 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर आखिरी जुताई से पहले खेत में बिखेर देते हैं। सब्जियों के लिए बिछड़ा उपचार भी कर सकते हैं। बिछड़ा उपचार करने के लिए 600 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर कल्चर लेकर 100 से 200 लीटर पानी में घोल बना लेते हैं और बिछड़े की जड़ों को आधे घंटे तक दबाते हैं। आधे घंटे के बाद बिछड़े को इच्छित खेत में रोपाई कर दी जाती है। फॉस्फोबैक्टीरियन या PSB जीवाणु खाद, इसका प्रयोग धान, गेहूं, मक्का एवं सब्जी आदि में किया जाता है। बीज उपचार 600 से

0: 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर कल्चर लेकर 1 से 2 लीटर पानी में घोल बनाकर बीज में मिला देते हैं। मिलाने के उपरांत साया में छुपाकर खेत में बिजाई कर दी जाती है। भूमि उपचार के लिए 2 किलोग्राम कल्चर एवं 50 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट लेकर के मिक्स कर मिला लेते हैं और इच्छित खेत में आखिरी जुताई से पहले बखेर दिया जाता है। सब्जियों के लिए बिछड़ा उपचार करते हैं और बिछड़ा उपचार के लिए 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर कल्चर लेकर 100 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर पौधे की जड़ों को डुबोते हैं और ये आधे घंटे तक डुबोया जाता है। डुबोने के बाद इच्छित खेत में इसकी बिछड़े से रोपाई कर दी जाती है। माइकोराइजा, इसका प्रयोग धान, गेहूँ, मक्का, सब्जियाँ एवं फल वाली पौधों में किया जाता है। माइकोराइजा का उपचार पौध क्यारी में भी कर सकते हैं, जैसे 100 ग्राम इनोकुलम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भूमि उपचार, 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि बाग में पौधे लगे हैं तो एक पौधे में 200 ग्राम इनोकुलम पर्याप्त रहता है। ये इनोकुलम पौधे की जड़ों के आसपास खोद करके उसके जड़ के आसपास मिला दिया जाता है। नील हरित शैवाल, इसका प्रयोग केवल धान में किया जाता है और इसके लिए 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कल्चर लेकर उसको 20 किलोग्राम मृदा या बालू में मिलाकर धान रोपनी के 10 दिन के बाद छिड़काव कर देते हैं। जैव उर्वरकों से लाभ, रासायनिक उर्वरकों से सस्ते होते हैं जिससे फसल उत्पादन की लागत घटती है। जैव उर्वरकों के प्रयोग से नाइट्रोजन व घुलनशील फास्फोरस की उपलब्धता पौधों के लिए बढ़ जाती है। जैविक खाद से पौधों में वृद्धि कारक हार्मोन्स उत्पन्न होता है जिनसे उनकी बढ़वार पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैविक खाद से खेत में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। जैविक खाद से पर्यावरण सुरक्षित रहता है एवं मानव और पशुओं के स्वास्थ्य पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैव उर्वरकों के प्रयोग करने में कौन सी बातें ध्यान रखें? नाइट्रोजन जैव उर्वरकों के साथ हमेशा फॉस्फोबैक्टीरियन या PSV जैव उर्वरक का प्रयोग करना अत्यंत लाभकारी है। प्रत्येक दलहनी फसल के लिए अलग अलग राइजोम कल्चर आता है, अतः दलहन फसल के अनुरूप ही राइजोम कल्चर का प्रयोग करें। जैव उर्वरकों को धूप में कभी भी ना रखें। कुछ दिनों के लिए रखना हो तो मिट्टी के घड़े का प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं।
1: खेत खलियान में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर महेंद्र सिंह से जैव उर्वरक विषय पर जानकारी। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 6 बजने ही वाले हैं, अब हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे। इसे हम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त

0: संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहलिंग कैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना, साथ ही विनिर्माण, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है चिंतन मनन।
3: मानवता मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है। मानवता के अंतर्गत अत्यधिक विशेष गुण आते हैं और इन विशेष गुणों के भीतर ऐसे ऐसे गुण समाहित हैं जो मानव के जीवन को प्रकाशित करते हैं और मानव का मार्गदर्शन भी करते हैं। ये मानव के जीवन में 4 चांद लगा देते हैं। उदाहरण के तौर पर शालीनता, विनम्रता, परोपकार, त्याग, बलिदान, न्याय,

0: सहनशीलता, असहाय की सहायता, दूसरों के दुख में शरीक होना, दूसरों के दुख को अपना दुख समझना, ये ऐसे पवित्र और उज्ज्वल गुण हैं जो मनुष्य को अमर बना देते हैं। हर मनुष्य खुशी तलाश करता है, लेकिन अगर देखा जाए तो हम पाते हैं कि किसी मनुष्य को अपार खुशी उस समय मिलती है जब वह किसी दुखी के मन को खुश कर देता है, और इसके साथ उसे एक और कीमती चीज़ मिलती है, वह है उस दुखी दिल से निकली हुई दुआ। यही नहीं, मानवता एक ऐसा गुण है जो एक बेहतर समाज बनाने और देश को भी समन्वित एवं सम्मानित तरीके से चलाने में सहायक होता है। मानवता ही समाज में प्रेम, एकता, मेलजोल, भाईचारा स्थापित करती है, देश को एकता के साथ आगे ले जाने में सहायक होती है। इसके विपरीत अमानवीय कारणों से समाज भी बिगड़ता है, देश की उन्नति में भी बाधा उत्पन्न होती है और अमन व शांति भी जाती रहती है। जब मनुष्य मानवता खो देता है, इसके हृदय से मानवता का सुंदर एवं स्वच्छ गुण जाता रहता है, तो मानव के स्तर से गिरने लगता है और अंत में उसके अंदर पशुता आ जाती है। ना तो उसके अंदर हमदर्दी बचती है, ना सहनशीलता, उसके अंदर दुष्टता आ जाती है, उसका मन स्वार्थ से प्रेरित रहता है, दूसरों को तकलीफ देने में उसे कोई संकोच नहीं रहता, वह अत्याचारी और दुराचारी बन जाता है, वह तो पशु से भी बदतर हो जाता है। पशु से तो फिर भी लोग प्रेम करते हैं, पर वह तो नफरत का पात्र बन जाता है, उसके द्वारा आतंक फैलाया जाता है, जिससे अकारण ही लोगों को अपनी जानों से हाथ धोना पड़ता है और धन की बर्बादी अलग होती है। समाज और देश दोनों को इससे भारी नुकसान उठाना पड़ता है, कौमी एकता पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। किसी कवि ने खूब कहा है, इंसानियत की रोशनी गुम हो गई कहाँ, साए हैं आदमी के मगर आदमी कहाँ। हमारा देश सूफी संतों और महापुरुषों का देश रहा है, यही कारण है कि जो महापुरुष मानवता के पुजारी थे, उनके दरों पर, मज़ारों पर, समाधियों पर, मठों पर आज भी लोग अपनी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए जाते हैं और लोगों को इससे लाभ मिलता है। प्रिय श्रोताओं, हमें मानवता पर आधारित गुणों पर जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमारे अंदर परोपकार, हमदर्दी, सहनशीलता कूट कूट कर भरा होना चाहिए, ताकि हम एक स्वच्छ समाज की स्थापना कर सकें। ऐसा समाज जहां चाहत हो, प्रेम हो, भाईचारा हो, हम दुख दर्द बांटने वाले हों। किसी कवि ने कहा है, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। दिल तोड़ना किसी का ये जिंदगी नहीं है, गम दूसरों का ले लें क्या ये खुशी नहीं है। कहा जाता है कि जो मानवता के सच्चे पुजारी होते हैं, उनकी जिंदगी अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए हुआ करती है, उनका संदेश पूरी इंसानियत के लिए होता है। आज भी उनके कदमों के चिन्ह मौजूद हैं, उस चिन्ह को देखकर आज भी हम आगे बढ़ सकते हैं और मानवता की उस चोटी को छू सकते हैं जिसकी ज़रूरत समाज और देश को है।
1: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे थे चिंतन मनन। निवेदित है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए समूह स्वर में देश वंदना।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशभक्ति गीत। वंदना कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में सुनिए नरेंद्र रोशन के स्वर में सुंदर भजन।

0: इस भक्ति गीत के साथ ही वंदना कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। 6:35 हो रहे हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में पूर्व प्रसारित वार्ता। विषय है हृदय रोग एवं योग। वार्ताकार है संजय ब्रह्मचारी।
1: योग हृदय रोग निवारण के लिए एक ऐसा प्रभावी विज्ञान के रूप में प्रचलित हुआ है कि सभी चिकित्सा प्रणाली मुक्त कंठ से मानने लगे हैं कि योग रक्तचाप को घटाने और हृदय के धड़कन को नियमित करने में प्रभावी है। योग से सांस प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित होती है। योग एक जीवन शैली है जो वैज्ञानिक ढंग से जीने का मार्गदर्शन देता है। योग धूम्रपान, व्यसन और नशीले पदार्थों से परहेज एवं शाकाहार जैसे आदर्शों पर अडिग है। तनाव नियंत्रण में यौगिक क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हृदय रोग के निवारण के साथ बायपास सर्जरी एवं एंजियोप्लास्टी करने के बाद भी लाभदायक है। डॉक्टर मरीज के स्थिति के अनुसार कई प्रकार के आसन एवं प्राणायाम बताते हैं जो हृदय रोग के साथ शरीर के दूसरे अंग के लिए भी प्रभावी हैं। हृदय को अवरुद्ध धमनियों को योग अभ्यास द्वारा दूर किया जा सकता है। कई आसन हृदय रोग के लिए वर्जित हैं। बिना किसी अच्छे योग प्रशिक्षक के बिना योग को करना खतरनाक है। आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंद, योग निद्रा एवं ध्यान से मांसपेशियों को विश्राम देकर रक्त

0: चाप को नियंत्रित किया जाता है एवं दिल का दौरा जैसे आशंका को समाप्त किया जा सकता है। खान पान में परहेज हृदय की सेहत के लिए आवश्यक है। अधिक वसायुक्त आहार एवं मांसाहारी भोजन हृदय के लिए नुकसानदायक है। यह रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है, जो हृदय को रक्त मुहैया करने वाले धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जो जमाव होता है, जिससे हृदय को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता है और जो बाद में हृदय रोग का कारण बनता है। मोटापा, अत्यधिक वजन, आरामदायक रहन सहन, शारीरिक श्रम की कमी इसके कारण है। उपचार के दृष्टिकोण से यौगिक क्रियाएं मुख्य रूप से आसन, प्राणायाम एवं मुद्रा बंद आते हैं। आसन के प्रथम माह में पवन मुक्तासन भाग एक करना आवश्यक है। इस आसन को गठिया निरोधक या बात निरोधक सीरियल भी कर सकते हैं। शरीर के संपूर्ण ज्वाइंट में विषैला द्रव्य भरा रहता है। इस 24 अभ्यास जो पैर से लेकर गर्दन तक आते हैं, इसे करना आवश्यक है। एक महीने के नियमित अभ्यास से जोड़ों एवं टॉक्सिन्स के निष्कासन में एवं जोड़ों में लचीलापन आता है। द्वितीय माह पवन मुक्तासन भाग दो, जिसे हम एंटी गैस्ट्रिक सीरियल के नाम से जानते हैं, इसे चित्त लेट कर किया जाता है। सर्वप्रथम दाहिने पैर से क्रमशः बायां पैर से वृत्ताकार रूप में घुमाना, साइकिल चलाना, ये दूसरा अभ्यास आता है। चित्त लेट कर पहले दायां फिर बायां फिर उल्टा फिर सीधा तरह से साइकिल चलाना पड़ता है। उसके बाद रॉक एंड रोल आता है, जिसको लुढ़कना बोलते हैं, एवं चौथा आसन आते हैं नौकासन। इस प्रक्रिया के बाद आता है योग निद्रा या शवासन 10 मिनट के लिए जो है। फिर दूसरे महीने मुख्य आसन में शक्तिवन सीरीज जो है, इसमें ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, भुजंगासन एवं कौवा चाल। कुछ ऐसे कब्जियत के मरीज जो काफ़ी परेशान गैस और कब्ज से रहते हैं, पानी पीने के बाद कौवा चाल आवश्यक है। तीसरे महीने उच्च अभ्यास के क्रम में वज्रासन, शशांकासन, योग मुद्रा, भूनमनासन आदि प्रमुख आसन है। हृदय रोग के निवारण हेतु प्राणायाम मुख्य रूप से 3 हैं। उज्जयी प्राणायाम, जो उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप जैसे समस्या का निदान महीने भर में प्रभावी होकर रोगी लाभ महसूस करने लगता है, इसे 10 से 12 राउंड किया जाना चाहिए। दूसरा प्राणायाम आता है नाड़ी शोधन। हृदय रोगी को आसन से अनुलोम विलोम जैसा गिनती के साथ 5 गिनते हुए सांस भरना और 10 छोड़ने के क्रम में गिनती आवश्यक है। बायां नाक से शुरू करते हुए पुनः दायां नासिका से करना। प्रारंभिक चरण में 5 राउंड अभ्यास के बाद 10 राउंड बायां नाक एवं दायां नाक से करना आवश्यक है। तीसरा प्राणायाम हृदय रोग के लिए भ्रामरी आता है। यह प्राणायाम बहुत ही आसान एवं हृदय रोग के साथ साथ मानसिक ठंडक एवं स्मरण शक्ति में वृद्धि, टॉन्सिलाइट एवं थायराइड जैसे रोगों में लाभदायक है। योग निद्रा, रात में सोने से पहले 15 मिनट एवं ध्यान की प्रक्रिया में आजपा जप, इसमें श्वास के साथ कुछ मंत्र आता है। एक छोटा सा मंत्र है सो हम, सांस के साथ सो, छोड़ने का प्रक्रिया हम। षटकर्म में जल नीति अगर सुबह सूर्योदय के पहले अगर किया जाए, उसके बाद अगर योगा किया जाए, तो इसमें कोई शक नहीं कि हृदय रोग जैसा रोग पर नियंत्रण नहीं पाया जाए।
1: स्वास्थ्य चर्चा में अभी आपने सुना संजय ब्रह्मचारी से वार्ता, विषय था हृदय रोग एवं योग। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान की अगली कड़ी। गायक कलाकार हैं सुरेश वाडेकर।

श्री राम के मन में ये सोच व्याप्त है कि राजा जनक समेत भरत सभी माताएं अयोध्या तथा जनकपुरवासी दुखी हैं और व्यर्थ ही चित्रकूट में वनवास के कष्ट भोग रहे हैं। उनकी चिंता सुनकर वशिष्ठ जी मिथिलापति से सबकी दुविधा समाप्त करने का आग्रह करते हैं। मुनिवर के वचन सुनकर जनक जी का ज्ञान और वैराग्य तिरोहित हो गए। वो प्रेम और मोह के वशीभूत हो गए। उन्हें लगा कि यहाँ आकर उन्होंने अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ ने तो पुत्र विरह में अपने प्राण त्याग दिए और वे उन्हें और गहन वन में भेजकर अपने प्राण भी नहीं त्याग सकेंगे। मिथिलापति को नहीं समझ में आता कि अब क्या किया जाए। अतः क्या किया जाए इसका निर्णय उन्होंने भरत पर छोड़ दिया। भरत ने कहा, सारा जगत जानता है कि सेवा धर्म अत्यंत कठिन है। स्वामी धर्म और स्वार्थ एक दूसरे के विरोधी हैं। बैर अंधा होता है और प्रेम में बुद्धि साथ छोड़ जाती है। अतः मुझसे न पूछकर श्री राम की रुचि का ध्यान रखते हुए वही करना चाहिए जो सर्वसम्मत तथा सबके लिए हितकारी हो।

रामचरितमानस गान संपन्न हुआ। गायक थे सुरेश वाडेकर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र। कार्यक्रम विवरण इसमें सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

श्रोताओं, अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह के 7 बजे आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनते हैं रसरंग, मौसम का मिजाज, रेल सूचना, समाचार पत्रों की सुर्खियां, आज का इतिहास, कानून की बातें और कुछ फिल्मी गीत। 9:06 पर पेश किया जाएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। साथ ही आप अलग अलग

समयों पर भी फिल्मी गीतों का आनंद ले पाएंगे, जैसे सुबह पुरानी फिल्मों के तहत 10 बजे, दोपहर चित्रपट से के तहत 2:30 पर, शाम 5:30 पर और रजनीगंधा के तहत रात्रि 8 बजे। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 पर, कलाकार होंगी डॉक्टर स्मिता सिन्हा। 10:30 पर आप सुन पाएंगे लोकगीत कार्यक्रम, कलाकार होंगे विशेश्वर प्रसाद शर्मा। फोन इन आपकी पसंद प्रस्तुत किया जाएगा दिन के 11 बजे, प्रस्तुति एवं प्रस्तुतकर्ता होंगे सौरभ कुमार। 12 बजे सुनिए नारी लोक कार्यक्रम, प्रस्तुतकर्ता होंगी श्री पार्वती के। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरसंगम प्रस्तुत किया जाएगा 12:30 पर, कलाकार होंगे पंडित भजन सोपुरी। दिन के 1 बजे लोकरंग प्रस्तुत करेंगे विनय कुमार शुक्ला। 47 कार्यक्रम जीवन झरना आप सुनेंगे 1:30 पर, प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। प्रादेशिक संगीत कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 3 बजे, कलाकार होंगे डूंगर राम भट्ट और साथी। 3:20 पर आप सुनते हैं देशभक्ति गीत और 3:25 पर आप सुन पाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम को।

शाम की शुरुआत होगी 5 बजे युववाणी कार्यक्रम के साथ। प्रस्तुत करता होंगे सौरभ कुमार। कार्यक्रम विवरण आप सुनेंगे 5:55 पर। 6 बजे प्रस्तुत किया जाएगा ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। प्रस्तुत करता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। लोकगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:10 पर। कलाकार होंगे बसंत कुमार। 7:52 पर आप सुन पाएंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। कलाकार होंगे ज्ञानी लक्ष्मण सिंह वेदी। 9:30 पर आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से विज्ञान भारती कार्यक्रम। और रात्रि 10 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। कलाकार होंगे चंगना शेरी, सीपी माधवन, नमपुनिरी। कार्यक्रम विवरण में अभी आपने सुना हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 6:55 होने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत में समाचार।

0: पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: उभौ पक्षौ साइबर सुरक्षायाम् अपि च उदयोन्मुख प्रौद्योगिक्यां विशेषावधानेन सह रक्षा उद्योगयोः मध्ये सहयोगेन सह रक्षा सुरक्षा सहकारं सुदृढीकरणेऽपि सहमतौ अभवताम्। अस्मिन् सन्दर्भे साइप्रस डिफेंस एंड स्पेस इंडस्ट्रीज क्लस्टर तथा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स इत्येतयोः मध्ये संधिपत्रे हस्ताक्षरं जातम्। प्रधानमंत्री श्रीनरेन्द्र मोदी अद्य 21वें रोजगार मेलायां विविध प्रशासकीय विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तानां यूनां कृते 150,000+ नियुक्तिपत्राणां वितरणं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति आभासीय माध्यमेन करिष्यति। अमेरिकादेशस्य विदेश सचिवः मार्को रूबियो इत्येषः अद्य भारतस्य चतुर्दिवसीय यात्रायां कोलकातानगरम् आगमिष्यति। इदं तस्य प्रथमं भारत पर्यटनं भविष्यति। कोलकातानगरे प्रवासावधौ श्रीरूबियो वर्येण मदर टेरेसा वर्यायाः समाधिस्थले श्रद्धाञ्जलिः अर्पणस्य अपेक्षा अस्ति। सः विक्टोरिया स्मारकमपि द्रष्टुं शक्नोति। पश्चात् अमेरिकादेशस्य विदेश सचिवः नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह मेलनं विधास्यति। श्वः श्रीरूबियो राष्ट्रिय राजधान्यां विदेशमन्त्रिणा एस जयशंकरेण सह वार्तालापं करिष्यति। सः अमेरिकादेशस्य दूतावासस्य स्वातन्त्र्यदिवसोपलक्ष्ये आयोजिते कार्यक्रमेऽपि भागं ग्रहीष्यति। सोमवासरे श्रीरूबियो वर्यः आगरा जयपुर नगरयोः भ्रमणं करिष्यति। तत्पश्चात् मंगलवासरे भारते आयोजिते क्वाड विदेशमन्त्रिणां सभायां भागं ग्रहीतुं नवदिल्ल्यां प्रत्यागमिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य पूर्वीय मध्य प्रदेशे पूर्वीय उत्तर प्रदेशे विदर्भे च तीव्रतर उष्ण तरंगस्य स्थित्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारितास्ति। अद्य दिल्ली हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ राजस्थान बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड ओडिशा इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्ण तरंगस्य स्थित्याम् आईएमडी विभागेन नारंगवर्णीया संचेतना प्रदत्ता अस्ति। तटीये आंध्रप्रदेशे तेलंगानायां पश्चिम मध्य प्रदेशे पश्चिम उत्तर प्रदेशे च अद्य दिने तथैव स्थितिः भविष्यति। अद्य दिल्ल्यां अधिकतमं तापमानं 45° सेल्सियस यावत् न्यूनतम तापमानं 27° सेल्सियस यावत् भवितुं शक्नोति। अन्त्यक्रीडा वार्तायाम् आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां सनराइजर्स हैदराबाद दलेन हैदराबादे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं 55 धावनांकैः पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ नगरे पंजाब किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स दलयोः मध्ये क्रीडा भविष्यति। इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।

गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम और प्रणाम। साथियों, आज के इस एनर्जेटिक सुबह में मैं हूँ आपके साथ, आपकी होस्ट एंड दोस्त रिया। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में। तो साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में

अच्छे होंगे और अपना खास ख्याल भी रख रहे होंगे। साथ ही इस कड़कती धूप में, इस चिलचिलाती धूप में अपना ध्यान जरूर रख रहे होंगे और अपने आप को हाइड्रेट भी रख रहे होंगे। तो साथियों, बिना देर किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा भजन।

अभी आपने सुना विद्यापति के लिखे इस गीत को, स्वर थे सुशील ठाकुर के। श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं कबीरदास के लिखे इस भजन को, आवाज है सुशील ठाकुर की।

खामोशी तब बोलती है जब शब्द नहीं बोल पाते। कभी कभी जीवन का सबसे कठिन हिस्सा बस चुप रहना है और दुनिया को अपना रास्ता ढूंढने देना होता है। श्रोताओं, अब सुनिए बेकल उत्साही की ये रचना।

0: श्रोताओं, रसरंग में आप सुन रहे थे सुशील ठाकुर की आवाज को। अब आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुनना शुरू कर चुके हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, जिसे आप सुनते हैं हर रोज सुबह के 7 बजे से 7:55 तक। तो साथियों, अब वक्त हो चला है अपने अगले चंक की ओर बढ़ने का, और आज है दोस्तों शनिवार, जहां आज के दिन हम लाते हैं आपके लिए खास कानून की बातें। तो आज का विषय है मोटर व्हीकल संशोधित एक्ट 2019। वार्ताकार हैं अमीश कुमार। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: आज हम भारत के नए संशोधित परिवहन अधिनियम 2019 के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। परिवहन व्यवस्था किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को उन्नति की ओर ले जाने के लिए वहाँ की परिवहन व्यवस्था यानी ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम का सुव्यवस्थित होना आवश्यक है। भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, इसे विकास की ओर अग्रसर करने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना आवश्यक है, क्योंकि व्यापार को फैलाने और बढ़ाने के लिए एक अच्छे परिवहन व्यवस्था का होना आवश्यक था। इसलिए भारत सरकार द्वारा मोटर यान अधिनियम 14 अक्टूबर 1988 को अभी निष्पादित की गई, जिसे मोटर यान अधिनियम 1988 के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम में हर प्रकार के वाहन के सड़क पर चलाने और चलने

के तरीके को अधिनियमित किया गया है। कुछ समय तक तो यह प्रभावी रहा, परंतु आगे चलकर यह लोगों की नज़र में अपनी महत्ता खोता जा रहा था। इसे प्रारूप की सरलता कहें या शक्ति किसे पालन न किया जाना, दोनों स्थिति में मोटर यान या परिवहन अधिनियम 1988 लोगों के बीच अपनी महत्व खो रहा था। इस कारण व्यक्तियों को सड़क पर लापरवाह होकर चलने की आदत सी हो गई थी, जिसके फलस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि होती जा रही थी। पुराने समय से लेकर अब तक सड़क एवं परिवहन की व्यवस्था में काफ़ी बदलाव आ गया है। आज से 25 वर्ष पीछे चला जाए तो उस समय कार, मोटरसाइकिल या बस, ये सभी आज की तुलना में सड़क पर काफ़ी कम थे, जिसके कारण तत्कालिक मोटरयान अधिनियम कम प्रभावी होते हुए भी प्रभावी माना जा सकता था, क्योंकि सड़क पर मोटर गाड़ी काफ़ी कम चलते थे तो दुर्घटना भी कम होती थी, जिस वजह से लोगों को या कार बाइक के मालिकों के द्वारा भी परिवहन अधिनियम के को सख्ती से पालन नहीं किया जाता था। दूसरी ओर उस समय के जुर्माने का ढांचा भी आज के समय के प्रति व्यक्ति आय की तुलना में बहुत निम्न हो गया था, जिस कारण लोगों को नियमों की अवहेलना करने पर जुर्माना किया जाता था तो उसे आसानी से अदा करके वे छूट जाते थे। इस संदर्भ में एक पूर्व क्रिकेटर के बेटे का किस्सा कुछ समय पूर्व प्रकाश में आया था, जिसमें क्रिकेटर के द्वारा अपने नाबालिग बेटे को एक तेज रफ्तार बाइक खरीदकर उसके जीत पर दिया गया, जिसके फलस्वरूप क्रिकेटर का नाबालिग बेटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार से चलाते हुए एक गाड़ी से टकराकर वहीं पर मर गया, जिस कारण उस क्रिकेटर ने अपना बेटा खो दिया। क्योंकि पुराने अधिनियम में नाबालिग द्वारा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के पकड़ाए जाने पर किसी प्रकार का कोई दंड या अर्थदंड प्रावधान नहीं किया गया था, बाद में उसी क्रिकेटर ने अपने इस अधिनियम को सुधार करने के लिए एक रिट याचिका भी दायर की, जो प्रावधानों के अभाव में खारिज हो गई। अभी हाल ही में भारत सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष 150,000 लोगों की मौत होती है, जिसमें मरने वाले ज़्यादातर लोग 15 वर्ष से 29 वर्ष के बताए गए हैं। कभी हमने सोचा है कि इतनी सारी सड़क हादसों का जिम्मेदार कौन है? हमारा सड़क परिवहन के कानून के प्रति लापरवाह रवैया, क्योंकि पुराने कानून में जो भी दंड का प्रावधान है वह आज के समय में काफ़ी सरल दिखता है। अब भारत सरकार ने देश के सड़क दुर्घटनाओं की ओर सबका ध्यान आकर्षित करते हुए इसमें कमी लाने के उद्देश्य से कठोर प्रावधानों के साथ एक नए मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी है। यह अधिनियम 31 जुलाई 2019 को चर्चा के पश्चात राज्यसभा में 13 के मुकाबले 108 मतों से पारित किया गया था। यह अधिनियम 23 जुलाई को लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका था। यह विधेयक मोटर वाहन अधिनियम 1988 को संशोधित करते हुए पारित किया गया, जिसे पूरे देश में 1 सितंबर 2019 से लागू किया गया है। इस अधिनियम में सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए तथा दुर्घटना के पश्चात पीड़ित को राहत देने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। इस अधिनियम में केंद्र सरकार के लिए मोटर वाहन दुर्घटना कोष के गठन का प्रावधान भी किया गया है, जो भारतीय सड़क को उपयोग करने वाले को अनिवार्य बीमा प्रदान करेगा। इस अधिनियम में सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को तत्काल कैशलेस उपचार की व्यवस्था विकसित करने का प्रावधान भी किया गया है, जिसके तहत घातक चोट लगने पर तत्काल मेडिकल सुविधा एवं मृत्यु से बचाव की संभावना रहने पर सरकार थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के तहत मुआवजा का दावा करने वालों को अंतरिम राहत दिलवाया जाएगा, जिसके तहत अधिनियम में हिट एवं रन मामलों में अब मुआवजा भी सरकार ने बढ़ा दिया है, जिसके अनुसार मृत्यु की स्थिति में 25,000 रुपए से बढ़ाकर 2,00,000 रुपया और गंभीर चोट की स्थिति में 12,500 से बढ़ाकर 50,000 रुपया कर दिया गया है। इसके अलावे केंद्र सरकार ने इस अधिनियम में सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन करने की प्रावधान भी किया है, जो सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन के सभी पहलुओं पर समान समय पर केंद्र सरकार को रिपोर्ट करेगा। मुख्य रूप से इस संशोधित अधिनियम में विभिन्न सड़क परिवहन अपराधों के रोकथाम के लिए दंड को और भी कठोर कर दिया गया है। उदाहरण के लिए शराब या ड्रग्स में वाहन चलाने पर अर्थदंड 2,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया।
सीट बेल्ट नहीं लगाकर वाहन चलाने पर 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। दोपहिया वाहन पर दो से ज्यादा सवारी बैठाने पर 100 रुपये से 1000 रुपया, हेलमेट नहीं लगाने पर 100 रुपये

0: रुपये का स्थान पर 5,000 रुपये देना होगा। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल से बात करने पर 1,000 रुपये का स्थान पर 5,000 रुपये कर दिया गया है। नाबालिग के द्वारा ड्राइविंग करने पर पहले कोई दंड नहीं था, पर नए कानून में 25,000 रुपये दंड और 3 साल तक वाहन रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। मालिक एवं अभिभावक भी इसमें दोषी माने गए हैं एवं इस प्रकार के नाबालिगों को 25 वर्ष की आयु तक लाइसेंस नहीं बन सकता है। बिना इंश्योरेंस पहले 1,000 रुपये देना पड़ता था, अब 2,000 रुपये कर दिया गया है। ये सारी दंड या अर्थदंड सरकार द्वारा सख्ती से लागू किया जा रहा है ताकि सड़क सुरक्षा को जमीनी स्तर पर लागू किया जा सके। लेकिन बहुत लोगों के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि इतने कठोर जुर्माने लगाने की क्या आवश्यकता थी। तो इसे हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हमने बताया कि पुराने समय में जुर्माने की राशि या तो बहुत कम थी या कई अपराधों में नहीं थी, जिसमें अब भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। जब कम जुर्माने की राशि थी तब सभी सड़क परिवहन के अपराध को कारित करते थे, तब उस राशि को अदा करके अपराध सुधारने के बजाय उससे भूल जाते थे। इससे सड़क पर दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही थी। पुराने ग्रंथ रामचरितमानस में भी यह कहा गया है, भय बिनु होई न प्रीति। इसका तात्पर्य है भय के बिना सम्मान पूर्णतः नहीं मिलता है। यहाँ जब कठोर जुर्माने का डर मन में पैदा होगा तभी लोगों में अधिनियम को पालन करने की उत्कंठा बढ़ेगी, जिससे कई तरह के सड़क के परिवहन के अपराध तत्काल कम हो जाएंगे, जिस कारण सड़क दुर्घटनाओं में कमी देखी जा सकेगी। कहते हैं आज की सावधानी ही हमारा कल सुधारेगी, इसलिए आज इन कठोर प्रावधानों को यदि हम अपने जीवन शैली में शामिल कर लें और यातायात के नियमों का पालन करेंगे तब न तो सड़क पर मुसीबत आएगी और ना ही हमें कोई जुर्माना भरना होगा। आज हम विश्व में सड़क दुर्घटना में अग्रणी देश हैं। नए परिवहन नियम 2019 को हम पालन करेंगे और अपने देश को सड़क दुर्घटना से मुक्त करेंगे, एक नए राष्ट्र का निर्माण करेंगे।
1: कानून की बातें में आपने सुना अमीश कुमार से वार्ता। विषय था मोटर व्हीकल संशोधित एक्ट 2019। हमें उम्मीद है श्रोताओं ये वार्ता आपने ध्यान से ज़रूर सुना होगा और साथ में आपने यह जाना कि आए दिन जो मोटर व्हीकल की घटना बढ़ती जा रही है उससे हमें कैसे बचना है और साथ ही कानून को ध्यान में रखते हुए इन दुर्घटनाओं से बचना भी है और सेफ ड्राइव करना है। तो दोस्तों अब आगे की जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे, उससे पहले लेते हैं बस एक छोटा सा अंतराल और जल्दी वापस लौटते हैं, तो कहीं जाइएगा मत।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
3: 8700001424।

0: Akashvani at 90.
1: वेलकम बैक साथियों, आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, जिसे आप सुनते हैं हर रोज सुबह 7 बजे से 7:55 तक। तो साथियों, आइए अब जान लेते हैं भागलपुर रेलवे स्टेशन

0: गुजरने वाली ट्रेन की सूचना नाम और नंबर के साथ। तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 1553 भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस ये ऑन टाइम मिलने वाली है श्रोताओं, इसका सही समय है 7:50। 13016 हावड़ा कविगुरु एक्सप्रेस ये अपने नियत समय 7:45 पर भागलपुर आएगी। 12368 आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस, दोस्तों ये अपने सही समय 8:15 से डीले चल रही है 37। ब्रह्मपुत्र मेल जिसकी ट्रेन संख्या है 15658, दोस्तों ये डीले चल रही है 1:14, इसका सही समय है 8:05। 53416 जमालपुर साहिबगंज पैसेंजर ये ऑन टाइम मिलने वाली है साथियों, इसका सही समय है 8:37। 13403 रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस ये अपनी नियत समय 9:00 भागलपुर स्टेशन के लिए स्टेशन पहुंचेगी। 63431 साहिबगंज जमालपुर मेमू ये ऑन टाइम मिलने वाली है साथियों, इसका सही समय है 9:15। 13409 मालदा क्यूल इंटरसिटी ये अपने नियत समय 9:35 पर भागलपुर आएगी। 13229 गोड्डा राजेंद्र नगर एक्सप्रेस जो कि साप्ताहिक की ट्रेन है ये आपको ऑन टाइम मिलने वाली है साथियों, इसका सही समय है 10:15। 12367 भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस ये अपने नियत समय 11:55 पर भागलपुर से आगे के स्टेशनों के लिए प्रस्थान करेगी। तो ये थी भागलपुर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेन की सूचना NTS पर आधारित। साथियों हमारी बातें और भी होंगी आपसे, लेकिन बस एक अंतराल के बाद, तो कहीं जाइएगा मत, आकाशवाणी भागलपुर से जुड़े रहिए।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में। श्रोताओं तो आइए अब जान लेते हैं कि आज मौसम का क्या हाल रहने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान अवधि 23 से 27 मई के दौरान हल्की वर्षा होने का अनुमान है, इसके बाद मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% तथा दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्व हवा चलने की संभावना है। तो श्रोताओं ये थे हमारे मौसम का हाल। तो आइए अब आपको कार्यक्रम में जान लाते हैं, इस प्यारे से गीत को सुनते हैं और एंजॉय करते हैं आज के इस कार्यक्रम को।

उम्मीद करती हूँ साथियों, ये गीत आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो क्यों ना अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप जान लेते हैं कि आज के इतिहास की क्या कुछ महत्वपूर्ण खास घटनाएं घटित हैं। श्रोताओं, आज है 23 मई। तो आज की घटनाओं में बात करें वर्ष 1805 की, तो आज ही के दिन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजनी ने एक आदेश के अंतर्गत दिल्ली के मुगल बादशाह के लिए एक स्थायी प्रावधान की व्यवस्था की थी। वहीं वर्ष 1915 ईस्वी की बात करें तो आज ही का दिन था जब प्रथम विश्व युद्ध के समय इटली ने ऑस्ट्रिया हंगरी तथा जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। श्रोताओं, आज ही का दिन था जब वर्ष 1949 में पश्चिमी जर्मनी संविधान को अंगीकार करने के बाद औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया। बात करें वर्ष 1977 की, तो आज ही का दिन था जब बेनिन ने संविधान को अंगीकार किया। वहीं आज भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन था कि आज ही के दिन 1984 ईस्वी में बछेंद्री पाल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। जी हाँ श्रोताओं, और आज ही का दिन था जब वर्ष 2008 में भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन द्वारा डिस्टिलरी को ISO 9001 का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। बात करें वर्ष 2010 की, तो आज ही का दिन था जब मुख्य न्यायाधीश KG बालाकृष्णन की अध्यक्षता में भारत के उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने बिना विवाह किए महिला और पुरुष का एक साथ रहना अपराध नहीं माना। आज ही का दिन था जब वर्ष 2016 में भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से पूरी तरह से भारत में बने स्पेस शटल RLV-TD को लॉन्च किया था। तो श्रोताओं, ये थे आज के इतिहास की कुछ खास महत्वपूर्ण घटनाएं। आगे हम आपसे और भी बातें करेंगे, बस लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। It's raining.

0: offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techy new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
1: Nexa. श्रोताओं, जैसा कि आज के इतिहास में हमने कहा कि 23 मई 1984 को महान पर्वतारोही बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की पहली महिला बनकर इतिहास रचा। इसे दिन उन्होंने सफलतापूर्वक चढ़ाई की और शिखर पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला बनी। जी हाँ साथियों, उनकी जज्बा को हम सलाम करते हैं, उनकी इस एक कदम को जो उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, उनके इस कदम की, उनके इस साहस की दाद देते हैं। तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत।

जी हाँ साथियों, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है और उसी जंग से हमें जीतने का मौका बार बार मिलता है। तो इसीलिए तो श्रोताओं, बछेंद्री पाल ने अपने इस जंग से जीत ली और उन्हें पहाड़ों की रानी भी कहा जाता था। वह पर्वत शिखर एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही है और यह कारनामा उन्होंने आज के दिन ही दिन के 1:07 पर किया। श्रोताओं, आपको बता दें कि बछेंद्री पाल उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी की पहाड़ों की गोद में 1954 को जन्म लिया था। वह उत्तराखंड राज्य के खेतीहर परिवार में जन्मी बछेंद्री ने बीएड किया और शिक्षिका बनने के बजाय पेशेवर पर्वतारोही का पेशा अपनाने पर उनको परिवार और रिश्तेदारों का विरोध झेलना पड़ा। जैसा मैंने बताया श्रोताओं कि जिंदगी बहुत खेल खेलती है, हर लोगों के ज़िंदगी में जंग है, मुसीबतें आती हैं, लेकिन हमें उनसे आगे बढ़ना होता है, उनसे सीख कर उन गलतियों को ना दोबारा कर उनसे अच्छा करना होता है। तो अपने साहस, उनके साहस को सलाम करते हैं और आपसे भी हम यही कहते हैं कि आप भी अपने ज़िंदगी में अच्छा कीजिए, बेहतर कीजिए और अपनी गलतियों से सीखिए और कुछ नया कीजिए। तो श्रोताओं, अब इन्हीं बातों को हम यहीं रखते हैं और आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि आज

आज की समाचार पत्रों की सुर्खियों में क्या कुछ खास है। श्रोताओं, बात करें आज के अखबार की, तो आज के अखबार में है कि दैनिक यात्रियों व नौकरी पेशा वालों की सहूलियत, भागलपुर से मुंगेर होकर कटिहार तक आज से चलेगी स्पेशल ट्रेन। वहीं भागलपुरी जरदालू आम का स्वाद चखेंगे पीएम राष्ट्रपति, जून के पहले सप्ताह में 2000 पैकेट दिल्ली भेजे जाएंगे। सऊदी प्रो लीग पहली बार बने चैंपियन, रोनाल्डो ने अब तक खेले हर देश में प्रमुख ट्रॉफी जीती। सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया, मैच हारे, टॉप टू की जंग नहीं। बैडमिंटन क्वार्टर फाइनल में पहला गेम जीतने के बाद हारी अस्मिता। हॉकी वर्ल्ड कप से पहले बकाया फीस न मिलने पर मिलने से परेशान पाक टीम। फेडरेशन कप में चंद मिनटों में दो बार टूटा 100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड। मैच प्रीव्यू, पंजाब किंग्स प्लेऑफ पराजय अभियान। घरेलू सीरीज ऑस्ट्रेलिया से वनडे 30 मई से होंगे। थ्री डी ऑलराउंडर विजय का घरेलू क्रिकेट से संन्यास। बिहार का सिक्की घास व टिकुली कला को मिलेगा ग्लोबल मार्केट, 60,000 को घर बैठे मिलेगा रोजगार। गंडक नदी पर बने मंगलपुर विशुनपुर पुल में स्प्रिंग खींचने से आई दरार, 3 इंच की जगह 9 इंच हुआ गैप। तो श्रोताओं, आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों में बस इतना ही। आइए सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत और आपको सुनवाते हैं ये गीत।

जी हाँ सर, श्रोताओं, जब हम कुछ नया करते हैं तो हम उनसे डरते हैं, उस काम से डरते हैं। तो श्रोताओं, इंसान जब अपने ही डर के खिलाफ खड़ा हो जाए तो यही तो साहस है, और सबसे बड़ी जीत तो वही है। तो आज के सुविचार के साथ हमें दीजिए इजाज़त। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 8 बजने ही वाले हैं, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात, मॉर्निंग न्यूज और उर्दू समाचार।

0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि

0: रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
3: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारी जानचीपुर की मित्रता अब से सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
6: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: भारत तिब्बत सीमा पुलिस की महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
7: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिस

0: यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी आईएएस अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है, जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट यूजी की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे शत प्रतिशत त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स ने त्विषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, प्रतिशोध की भावना से काम न करें WFI। लोकसत्ता की हेडलाइन है, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। एनसीईआरटी की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रूपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स टू न्यू रिक्रूट्स इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टुडे। RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden four-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha today. Indian Army Officer Major Abhilasha Barak honored with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, hosts Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality.
3: Rozgar Mela is a step towards fulfillment of the Prime Minister's commitment to accord highest priority to employment generation. The Rozgar Mela is playing a significant role in providing meaningful opportunities to the youth for their empowerment and participation in nation building. Since its inception, around 12 lakh recruitment letters have been issued through 18 Rozgar Melas organized across the country. The 19th Rozgar Mela will be held at

0: And now, for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakal.
1: Thank you, Sunil. The Asian Edge leads with the headline, India-Cyprus Inc. Six-Packs Boost Trade Security Ties. The Reserve Bank of India Central Board has approved a record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to the government for financial year 26, reports the Economic Times. In its editorial piece titled Sheep Within Meat, A New Axis in the Making, the Pioneer argues that the recent summit between Xi Jinping and Vladimir Putin signals a deepening China-Russia alignment with potentially major symbolism and toward a more coordinated challenge to American influence. It concludes that the emergence of such an axis may become one of the defining geopolitical development of our time. And finally, in a bold push to boost biodiversity and climate resilience, the Andhra Pradesh Forest Department has launched preparations to produce 25 million seed balls in June during the monsoon season, writes the Statesman. And with that, it's back to you, Sunil.
0: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to distribute over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments today. RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden four-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha today. Indian Army Officer Major Abhilasha Barak honored with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, host Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashvani se pesh hai khabarnama. आदाब खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मुख्तलिफ सरकारी महकमों में नए भर्ती किए गए अफराद को 51,000 से ज्यादा तकरीरनामे तकसीम करेंगे आरबीआई ने माली साल 2025-26 के लिए 2.86 लाख करोड़ रुपए की इजाफी रिकॉर्ड रकम मरकजी हुकूमत को सौंपने की इजाजत दी है अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो भारत के अपने पहले चार रोजा दौरे पर कोलकाता पहुंच गए हैं वो आज दोपहर नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे भारतीय महकमे मौसमियात ने मशरकी मध्य प्रदेश मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज शदीद गर्मी के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है भारतीय फौज की अफसर मेजर अभिलाषा बराक को साल 2025 का अक्वामे मुत्तहदा की फौजी सिन्फी वकील के अवार्ड से नवाजा गया है और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया अब खबरें तफसील से वजीर आजम नरेंद्र मोदी 19वें रोजगार मेले के तहत आज मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों में 9 तकररशुदा 51,000 से ज्यादा नौजवानों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीरनामे तकसीम करेंगे जनाब मोदी इस मौके पर तकरीब से खिताब भी करेंगे हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि रोजगार मेला वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से रोजगार पैदा करने को दी जा रही तरजीह की अक्कासी करता है और इस विजन को हकीकत में बदल रहा है तफसील हमारे नामा निगार से
3: रोजगार मेला वजीर आजम मोदी की जानिब से रोजगार पैदा करने को तरजीह देने की जानिब एक अहम कदम है जो नौजवानों को बामाना मौके फराहम करने और मुल्क की तामीर में अहम रोल अदा कर रहा है अपने आगाज के बाद से मुल्क भर में मुनक़िद हुए 18 रोजगार मेलों में अब तक 12 लाख तकरीरनामे जारी किए जा चुके हैं 19वां रोजगार मेला मुल्क भर के 47 मकामात पर होगा मुल्क भर से तकरीरी पाने वाले उम्मीदवार मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में मुलाजमत हासिल करेंगे जिनमें रेलवेज दाखिला सेहत व खानदानी बहबूद और आला तालीम समेत दीगर महकमे और वजारतें शामिल हैं नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर
2: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रिकॉर्ड 2.86 लाख करोड़ रुपए की रकम इजाफी असासे के तौर पर मरकजी हुकूमत को मुंतकिल करने की इजाजत दी है ये रकम माली साल 2025-26 के लिए थी जो आरबीआई की जानिब से मुनाफे की तकसीम डिविडेंड की अब तक की सबसे बड़ी रकम है यह फैसला आरबीआई के डायरेक्टर्स के मरकजी बोर्ड की 623वीं मीटिंग में लिया गया जिसकी सदारत कल मुंबई में गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की आरबीआई ने अपने बयान में कहा है कि उसने मजमू

0: आमदनी में पिछले साल के मुकाबले इस साल यानी 2025-26 के दौरान 26.42% इजाफा हुआ है, जबकि अखराजात में जिनमें इम्कानी खतरात शामिल नहीं हैं 27.60 का इजाफा हुआ है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो अपने 4 रोज़ा भारत दौरे पर आज कोलकाता पहुंच गए हैं। ये भारत का उनका पहला दौरा होगा जो वाशिंगटन और नई दिल्ली के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की जानिब अहम कदम साबित होगा। जनाब रूबियो के दौरे के दौरान तिजारत, दिफा, तवानाई की यकीनी फराहमी, टेक्नोलॉजी और भारत बहरुल काहिल हिकमत अमली जैसे शोबों में तआवुन को वसत देने पर तवज्जो मरकूज किए जाने का इम्कान है। भारत में अमरीकी सफीर सर्गियो गोर ने हवाई अड्डे पर जनाब रूबियो का इस्तकबाल किया। अमरीकी वजारत खारजा ने कहा है कि कोलकाता में अपने क्याम के दौरान जनाब रूबियो मदर हाउस, सेंट टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी और शहर के चिल्ड्रन होम का दौरा करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोर ने बताया कि जनाब रूबियो दिन में नई दिल्ली का सफ़र करेंगे और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सफीर के मुताबिक ये दौरा बुनियादी तौर पर दिफाई शराकत दारियों, जदीद टेक्नोलॉजीज, तजारती ताल्लुकात और क्वाड फ्रेमवर्क के तहत इश्तराक जैसे अहम स्ट्रेटेजिक शोबों में तआवुन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज करेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और कुब्रुस के दरमियान सेमीकंडक्टर्स, खला और मसनूई जहानत जैसे नए और उभरते हुए शोबों में तआवुन की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। राष्ट्रपति भवन में कल कुब्रुस के अपने हमनसब निकोलस क्रिस्टोडोलाइड्स और उनके वफ्द को दिए गए इशाइये के बाद सदर जमहूरिया इजहार ख्याल कर रही थीं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और जिद्दत तराजी दो तरफा ताल्लुकात के मुस्तकबिल के मैदानों के तौर पर उभरे हैं।
1: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारे जानसीपुर की मित्रता आपसे सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
0: सदर जमहूरिया ने सरहद पार दहशतगर्दी और कसीर जहती इदारों में इस्लाहात जैसे अहम मामलों पर कुब्रुस की हिमायत की सताइश की। सदर जमहूरिया ने कुब्रुस की सालमियत, इत्तेहाद और इलाकाई यकजहती के तहत भारत की गैर मुतजलजल हिमायत का इयादा भी किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दोतरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक साझेदारी में बदल दिया गया है जो भारत और कुब्रुस के दरमियान बढ़ती सूझबूझ, गहराई और बाहमी एतमाद की अक्कासी करते हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय फौज की अफसर मेजर अभिलाषा बराक को जो लेबनान में अक्वामे मुत्तहदा के क़याम अमन मिशन में खिदमात अंजाम दे रही हैं, अक्वामे मुत्तहदा के 2025 के एक बावकार अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। उन्हें यह अवार्ड इस साल की फौजी सिन्फी वकील के तौर पर दिया जा रहा है। मेजर बराक जो फिलहाल एक भारतीय बटालियन में लेबनान में अक्वामे मुत्तहदा की उबूरी फोर्स में ख्वातीन की सरगर्मी वाली टीम की कमांडर UNIFIL के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हैं, भारतीय फौज के जंगजू हेलीकॉप्टर की पहली खातून पायलट भी हैं। ये अवार्ड हासिल करने वाली मेजर बराक तीसरी भारतीय क़याम अमन फौजी हैं जिन्हें ये एजाज हासिल हुआ है। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को साल 2019 में जनूबी सूडान में अक़्वामे मुत्तहदा मिशन के तहत खिदमात अंजाम देने पर इस अवार्ड से

के जंगजू हेलीकॉप्टर की पहली खातून पायलट भी हैं। ये अवार्ड हासिल करने वाली मेजर बराग तीसरी भारतीय कयाम अमन फौजी हैं जिन्हें ये एजाज़ हासिल हुआ है। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को साल 2019 में जुनूबी सूडान में अक़वामे मुत्तहिदा मिशन के तहत खिदमात अंजाम देने पर इस अवार्ड से

0: रोजा दौरे पर कोलकाता पहुंच गए हैं। वो आज दोपहर नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। भारतीय महकमे मौसमियात ने मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज शदीद गर्मी के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। भारतीय फौज के अफसर मेजर अभिलाषा बराक को साल 2025 का अक़वामे मुत्तहिदा की फौजी सिंफी वकील के अवार्ड से नवाजा गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: AIR at 90.
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222502, हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभवाणी,
1: आकाशवाणी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हर साल जुलाई में जारी होगा विज्ञापन, प्रत्येक वर्ष कम से कम 20,000 शिक्षकों की होगी बहाली। कॉम्फेड ने सुधा दूध समेत अन्य दुग्ध उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की, दूध के मूल्य में 2 से 3 रुपये प्रति लीटर तक की वृद्धि। और प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा भीषण गर्मी और लू की चपेट में, रोहतास के टेहरी का अधिकतम तापमान रिकॉर्ड 45 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति

0: पत्र वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नवनियुक्त युवाओं को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेला देश भर के 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं को रोजगार देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में अगले 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके अंतर्गत हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए हर वर्ष जुलाई महीने में नियुक्ति संबंधी विज्ञापन जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान श्री चौधरी ने शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए नई नीति बनाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि महिला शिक्षकों को गृह जिले के अपने प्रखंड की गृह पंचायत के बगल की पंचायत में स्थानांतरित किया जाए, वहीं पुरुष शिक्षकों का गृह जिले के गृह प्रखंड के बगल के प्रखंड में तबादला होगा। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को पोशाक की आपूर्ति जीविका के माध्यम से करने के भी निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद TRE4 को लेकर संशय की स्थिति समाप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के रिक्त पदों के आकलन के बाद इस संबंध में फिर से बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी।
2: जुलाई महीने में TRE4 की वैकेंसी आ जाएगी तो TRE4 पर स्थिति स्पष्ट हो गई। विद्यालयों में जितने भी हमारे लिए स्वीकृत पद है और जो आज शिक्षक हैं, कहीं ज़्यादा हैं कहीं कम है, उसका पूरा एक सप्ताह के अंदर हमारे विभाग के अधिकारियों को CM साहब ने निर्देशित किया है कि पूरा इसको रेशनलाइजेशन करके और निकालिए कि अभी कितनी आवश्यकता है और उसके आधार पर हम अधियाचना फिर भेजेंगे। एक तो न्यूनतम हो गया कि 20,000, यदि ज़्यादा आवश्यकता होगी तो ज़्यादा भेज।
0: बिहार स्टेट मिल्क कॉपरेटिव फेडरेशन कॉम्फेड ने सुधा दूध समेत सभी दुग्ध उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की है। दूध के मूल्य में प्रति लीटर 2 से 3 रुपए तक की वृद्धि की गई है। सुधा कोल्ड की कीमत प्रति लीटर 65 रुपए से बढ़ाकर 68 रुपए कर दी गई है। सुधा स्टैंडर्ड दूध 57 रुपए से बढ़कर 60 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं गाय दूध 54 रुपए से बढ़कर 57 रुपए और टी स्पेशल 50 रुपए से बढ़कर 52 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसके अलावा कॉम्फेड ने पनीर, दही, घी, मक्खन और मिठाइयों की कीमतों में भी वृद्धि की है। बड़ी हुई दरें 25 मई से प्रभावी होगी। साथ ही कॉम्फेड ने किसानों को प्रति लीटर दूध में 2 से 3 रुपए 13 पैसे तक की बढ़ोतरी की है। खुदरा विक्रेताओं के लिए दूध के मुनाफे में 20 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई गई है। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। बिहार पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता और पाकिस्तान से आतंकी संपर्क के आरोप में मुजफ्फरपुर के रतनपुरा गांव से मोहम्मद मुस्तफा नामक युवक को गिरफ्तार किया है। ATS के ADG पंकज दारात ने बताया कि आरोपी के पास से बरामद डिजिटल साक्ष्यों से देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने की साजिश का खुलासा हुआ।
3: इन पे मुख्य रूप से यह आरोप है कि एक सज्जात भट्टी पाकिस्तान बेस्ड एक गैंगस्टर है जो कि इंडिया में अपने हैंडलर्स के थ्रू इंडिया में जो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट हैं उनको अपना सोल्जर बनाना चाहता है। सज्जाद भट्टी का एक हैंडलर है राणा हुनैन, वो भी पाकिस्तान का है, तो उससे ये संपर्क में लगातार लास्ट 6-7-8 महीने से है और ये उनसे हथियार मांग रहा है बार बार।
0: बिहार में अपराध की बदौलत संपत्ति जमा करने वाले अपराधियों की संपत्ति जब्त होगी। एडीजी विधि व्यवस्था सुधांशु कुमार ने बताया कि अब तक 1433 अपराधियों की संपत्तियां चिन्हित की गई हैं। इनमें 428 की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू करने से संबंधित प्रस्ताव न्यायालय को भेज दिया गया है। पूर्वी चंपारण जिले के रघुनाथपुर और तुरकोलिया थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव में पिछले महीने जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत के मामले में मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने 14 मद्य निषेध पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है। मामले की जांच के बाद मद्य निषेध उपायुक्त दरभंगा की अनुशंसा पर यह कार्रवाई की गई है। गया जिले के खिजरसराय प्रखंड स्थित सिसवर गांव में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। पुलिस कर्मियों ने मौके से 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इधर केंद्रीय मंत्री को जान से मारने की धमकी देने के मामले में नालंदा जिले के लहेरी से 1 युवक की गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है जिन्हें एनटीए ने विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। अब तक इस मामले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: इधर आइए, इधर
5: इधर।
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
6: शुभवाणी,
5: लाभवाणी,
6: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास का टेहरी सबसे गर्म स्थान रहा। यहां का अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कैमूर का अधिकतम तापमान 44.2, गया का 42.4 और बक्सर का 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी पटना के अधिकतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। यहाँ का अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आज रोहतास, कैमूर, पटना, गया और बेगूसराय समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य जिलों में लू की चेतावनी जारी की है। वहीं राज्य के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान है।
7: राज्य के उत्तर पूर्व भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भागों का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है।
0: इधर सुपौल जिले के प्रतापगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत गोविंदपुर पंचायत के मंडल

0: टोला में बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में एक महिला की मौत हो गई। राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का पुनर्गठन किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक संजय सरावगी और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक उमेश सिंह कुशवाहा समिति के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। भाजपा की बिहार इकाई की ओर से आज से पटना में 2 दिवसीय दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान का आयोजन किया जाएगा। प्रशिक्षण का उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे। प्रशिक्षण वर्ग के समापन सत्र में पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल होंगे। प्रशिक्षण महाभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार ने शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 642 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस राशि से समग्र शिक्षा अभियान के तहत आने वाले शिक्षकों के अप्रैल और मई महीने का वेतन भुगतान किया जाएगा। सिवान के जिलाधिकारी ने 90 पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया है। ये सभी जांच के क्रम में अपने कर्तव्य स्थल से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए थे। आरा जंक्शन पर ट्रेन पर चढ़ने के क्रम में गिरने से पिता पुत्र की मौत हो गई। मृतक उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के रहने वाले थे। पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के रामकृष्ण नगर स्थित एक गोदाम से 95 लाख रुपए मूल्य की प्रतिबंधित दवा बरामद की गई है। पुलिस ने इस मामले में एक तस्कर और गोदाम कर्मी को गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के फारबिसगंज अनुमंडल थाना क्षेत्र में अवैध खनन और परिवहन में लगे 2 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। मधुबनी जिले के पंडोल थाना क्षेत्र के सरिसब पाही स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा के पास अपराधियों ने एक युवक से 1,40,000 रुपए लूट लिए। पश्चिम चंपारण जिले के कोबरथना और ठकराहा थाना क्षेत्रों से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। यह मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं कल खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रनों से हरा दिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की घोषणा को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, हर साल 20,000 शिक्षकों की बहाली होगी, 5 वर्षों में 1,00,000 नियुक्तियां। दैनिक जागरण ने इसी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, हर वर्ष जुलाई में आएगा विज्ञापन। प्रभात खबर ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, माता पिता IAS तो आरक्षण क्यों। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, जेब पर बोझ, 1 लीटर सुधा गोल्ड 3 रुपए और 200 ग्राम पनीर 10 रुपए महंगा। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, राज्य में 10 और IAS अधिकारियों का तबादला। आज अखबार लिखता है, जीविका दीदियों को इसी महीने मिलेंगे 20,000 रुपए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हर साल जुलाई में जारी होगा विज्ञापन, प्रत्येक वर्ष कम से कम 20,000 शिक्षकों की होगी बहाली। कॉम्फेड ने सुधा दूध समेत अन्य दुग्ध उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की, दूध के मूल्य में 2 से 3 रुपए प्रति लीटर तक की वृद्धि। और प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा भीषण गर्मी और लू की चपेट में, रोहतास के टेहरी का अधिकतम तापमान रिकॉर्ड 45 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंचा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: बिहार सरकार लेकर आई है आपकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक नई पहल, सहयोग शिविर। इसके तहत प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को पंचायत सरकार भवन अथवा निकटवर्ती सार्वजनिक स्थल पर सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
2: सहयोग पोर्टल सहयोग.बिहार.gov.in पर कभी भी ऑनलाइन परिवार

0: दर्ज कर सकते हैं। परिवाद दर्ज करने की तिथि से 30 दिनों के अंदर समाधान सुनिश्चित कर सहयोग पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
1: साथ ही सहयोग शिविर में संबंधित जानकारी हेतु निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1100 पर सुबह 8 से शाम 8 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। सहयोग से सबका सम्मान, जीवन आसान।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। हमारा अगला कार्यक्रम सुनने से पहले सुनिए ये संदेश।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्स और एफएम 100.1 मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। कार्यक्रम का पहला नगमा हमने लिया है एक विलेन फिल्म से, आवाज है अरिजीत सिंह के, गीतकार और संगीतकार हैं मिथुन।

0: Some just go through the day. You could live the grand life with the Grand Vitara. As you move from city streets to open escapes, the strong hybrid keeps up seamlessly. No matter where the road takes you, you're always breathing in freshness with auto purify and PM2.5 display. And when every moment feels this grand, safety comes standard with 6 airbags. Visit your nearest Nexa showroom to live the grand life with the Grand Vitara Strong Hybrid. Nexa.
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: बड़ी बहू, ये तुम्हारे ना
2: इतनी भी क्या

0: जल्दी थी।
1: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना, और ये
2: मेरी गुड़िया के नाम।
3: पर दादी आपके नाम?
4: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो।
3: क्या
5: आरबीआई कहता है?
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। श्रोताओं आपको सुनवा रहे हैं फिल्म 1920 एवल रिटर्न्स से यह गीत, जिसे शुरू से सवारा है महालक्ष्मी अय्यर ने। शकील आजमी के लिखे इस गीत की धुन तैयार किया है चिरंतन भट्ट ने।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने से अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और आदित्य नारायण की युगल आवाज में फिल्म अकेले हम अकेले तुमसे। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं अनु मलिक।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने यहीं संपन्न हुआ। प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज सुगम संगीत के गायक कलाकार हैं डॉक्टर स्मिता सिन्हा। कार्यक्रम के आरंभ में इनसे सुनिए मीराबाई के लिखे इस भजन को।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश
2: क्रेश
0: और बाल्टी बॉय
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: इट्स रेनिंग ऑफर्स ऑन द न्यू एज बलेनो दिस सीजन। अपग्रेड टू द बोल्ड एंड टेकी New Age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the New Age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
5: Nexa.
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
6: डायल कीजिए 8700014242।
7: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
8: While some just go through the day, you could live the grand life with the Grand Vitara. As you move from city streets to open escapes, the strong hybrid keeps up seamlessly. No matter where the road takes you, you're always breathing in freshness with auto purify and PM 2.5 display. And when every moment feels this grand, safety comes standard with 6 airbags. Visit your nearest Nexa showroom to live the grand life with the Grand Vitara Strong Hybrid.
9: Nexa.

सुगम संगीत संपन्न हुआ। आज सुगम संगीत में आपने सुना डॉक्टर स्मिता सिन्हा के गाए गीत और भजन। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 10 बजे हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है तीन देवियां फिल्म से। आवाज है किशोर कुमार और साथियों के।

कार्यक्रम की अगली पेशकश में सुनिए लता मंगेशकर और तलत महमूद की युगल आवाज में गीत छाया फिल्म से। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हैं सलील चौधरी।

0: AIR at 90. पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है बॉस। रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। अब सुनिए बीवी हो तो ऐसी फिल्म का यह गीत, जिसे शुरू से सवारा है मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल ने। समीर के लिखे इस बोल की धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

पुरानी फिल्मों से अगली पेशकश में आपको सुनवा रहे हैं 20 साल बाद फिल्म का यह गीत, जिसे स्वर से सजाया है अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज ने।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश में आप सुनिए चित्चोर फिल्म का यह गीत। आवाज है केजे येसुदास की, गीतकार हैं रविंद्र जैन और संगीतकार भी रविंद्र जैन हैं।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुराने फिल्मों से यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 10:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है लोकगीत कार्यक्रम। आज लोकगीत के गायक कलाकार हैं विशेश्वर प्रसाद शर्मा। कार्यक्रम के आरंभ में इनसे सुनिए लोक भजन।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: हो कांगा।
1: लोकगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आज लोकगीत के गायक कलाकार थे विशेश्वर प्रसाद शर्मा। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब अगला कार्यक्रम एक अंतराल के बाद।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स और एफएम के 100.1 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के ठीक 11 बजे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के फ़ोन कॉल पर आधारित फरमाइश फिल्म गीतों का कार्यक्रम फ़ोन इन आपकी पसंद। इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं सौरभ कुमार।

0: फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। श्रोताओं, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने मन पसंदीदा गानों की रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 11:30 बजे से 12 बजे के बीच में करवा सकते हैं। साथ ही आप अपनी फरमाइश प्रत्येक शनिवार को 11 बजे से 12 बजे के बीच में सुन सकते हैं। तो लेते हैं हम अपने पहले कॉलर को। नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: सौरभ कुमार साहब, सागर सप्रेम, प्यार है, नमस्कार।
0: नमस्कार, नमस्कार।
1: आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से आरणी सौरभ कुमार साहब से वार्तालाप कर रहा हूँ। मानवर, आप कैसे हैं?
0: जी हम अच्छे हैं, और बताइए क्या चल रहा है आजकल?
1: मैं भी अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ और ग्रीष्म ऋतु का आनंद ले रहा हूँ। प्रचंड धूप रहती है, हवाएं गर्म गर्म रहती है और ऐसे में घर के अंदर रहते हुए आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते रहता हूँ और आप लोगों से वार्तालाप करने का इच्छुक रहता हूँ। जब भी फोन लगता है हमें बड़ी खुशी प्रसन्नता होती है बातचीत करके, और जो समय अनुसार जानकारियां आप समेट कर बटोर कर लेके आते हैं, हम श्रोताओं को बताते हैं, वह हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारा ज्ञानवर्धन होता है, सामान्य ज्ञान भी बढ़ता है, जानकारियां मिलती है। ये प्रयास आपका सराहनीय है, प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपको हम बताना चाहेंगे कि 30 मई जो आने वाले है उस दिन हम लोग हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं, हिंदी जर्नलिज्म डे। क्योंकि पहला जो हिंदी का न्यूज़पेपर जो पब्लिश किया गया था, कलकत्ता से उदंत मार्तंड नाम का एक न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था जिसे पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने स्टार्ट किया था 30 मई 1826 के दिन, और इसी के लिए हम लोग

0: ये दिवस मनाते हैं, और साथ ही साथ 31 मई को हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस मनाते हैं, उसका नाम है एंटी टोबैको डे। तो आप सभी जानते होंगे कि टोबैको कितना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये आप हर जगह देखते होंगे, और धूम्रपान हो गया या जो गुटखा वगैरह जो खाते हैं लोग तंबाकू, उसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कई सारी बीमारियां खास करके कर्क रोग यानी कैंसर भी होने का खतरा होता है।
1: जी मुख का कैंसर होता है, लीवर का कैंसर हो जाता है, पेट का कैंसर हो जाता है, किडनी में भी प्रभावित करता है, और हमारे मन और मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है ये
0: जी।
1: तम्बाकू किसी भी रूप में हो, हुक्का के रूप में हो, सिगरेट के रूप में हो, पाउच के रूप में जब आते हैं तो पड़ी के साथ में हानिकारक होता है, किसी भी रूप में इसको लिया जाए ये हमेशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और कैंसर को जन्म देता है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, फिल्म का नाम है हम हराही प्यार के, कुमार सानू और अलका याग्निक ने गीत गाया है।
0: जी तो गाना खुद सुनेंगे अपने दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: जी मैं तो सुनूंगा, हमारे परम आदरणीय मित्र सौरभ कुमार साहब भी सुनेंगे आकाशवाणी भागलपुर के समस्त परिवार के साथ में, और मैं शामिल करता हूँ अविनाश जी, आशुतोष जी, संगीता जी, लोकेन वर्मा, राजू यादव और बाबा प्रेमदास जी, इन सभी दोस्तों के साथ में ये प्यारा सा खूबसूरत गीत आकाशवाणी भागलपुर से सुन रहे सभी श्रोताओं को सादर समर्पित करता हूँ।
0: जी तो ठीक है, आपकी पसंद पे गाना हम जरूर सुनाएंगे, और इस तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा।
1: जी हृदय धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय।
0: नमस्कार नमस्कार।

0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं मनोहर लाल गांधी, विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से बोल रहा था।
0: मनोहर जी कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया जी, आप सुनाइए आप कैसे?
0: जी हम भी अच्छे हैं। और बताइए क्या करते हैं आप मनोहर जी?
1: ये मेरी कपड़े की शॉप है यहाँ पे, और यही अपना दुकान पे ऐप के थ्रू अपना सारे कार्यक्रम सुनता रहता हूँ भागलपुर के भी।
0: जी काफी अच्छा लगा।
1: कॉल लगाया
0: जी? जी एकदम सही कहा आपने, आपने पहली बार कॉल लगाया है और काफी दूर से आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं, ये काफी अच्छी बात है। अभी आपके यहाँ मौसम कैसा है?
1: मौसम तो गर्म हवाएं चल रही है, लू चल रही है, इस समय बहुत बुरा हाल है।
0: जी जी, तब तो आप लोगों को उससे बचने का उपाय करना होगा।
1: जी समय पर अपना पानी पी रहे हैं, नींबू पानी पी रहे हैं, शिकंजी वगैरह।
0: जी जी जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आपके माध्यम से हम अपने श्रोताओं से आग्रह करेंगे कि आप गर्म हवाओं लू के थप्पेड़ों से बचें। और साथ ही साथ बात बताना चाहेंगे कि 30 मई को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो यानी आलू का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, और आलू जो है आलू के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप में ये मनाया जाता है। और साथ ही साथ जो 31 तारीख को हम लोग एंटी टोबैको डे मनाते हैं 31 मई के दिन, और आप सभी जानते होंगे कि तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक होता है। यह आपकी
1: हानिकारक है सर
0: जी, तो इसके बारे में अवेयरनेस लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम इस दिन मनाते हैं। तो हम आपके माध्यम से अपने सारे श्रोताओं से आग्रह करेंगे कि वो लोग तंबाकू का जो सेवन करते हैं उसे धीरे धीरे करके छोड़ दें। सरकार द्वारा कई नशा मुक्ति केंद्र भी चलाए जाते हैं, वहाँ जा करके आप इसको छोड़ने के लिए अगर आपको दिक्कत हो रही है तो वहाँ आप ट्रेनिंग ले सकते हैं और कोशिश करके इसे छोड़ दें।
1: ये तो खैर सभी को पता है कि इस चीज़ से कितना नुकसान है
0: जी,
1: मगर हम जो है बेखबर इन चीजों का सेवन करते हैं जो गलत है।
0: जी जी,
1: और आकाशवाणी के माध्यम से जानकारियां भी दी जाती हैं।
0: जी जी जी,
1: हमें समझना चाहिए।
0: जी तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: जी फिल्म का नाम है यादों की बारात।
0: जी
1: इसके बोल है चुरा लिया है तुमने जो दिल।
0: क्या बात है, तो गाना खुद सुनेंगे या अपने दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: जी सभी दोस्तों को डेडिकेट करूंगा। हेलो फरमाइश एकता ग्रुप है हमारा
0: जी,
1: तो सभी के लिए मैं एक गीत सुनना चाहता हूँ।
0: जी तो ठीक है, आपकी पसंद पे खूबसूरत सा गाना हम जरूर सुनाएंगे और इस तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं चिरमिरी कुरासिया कांजी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से आपका निमेश होता इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी इंद्रभान जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है सर, आप भी अच्छे? मैं भी अच्छा हूँ सर, कंप्लीट में हूँ और यही नर्सरी के बीच में हूँ सर। यहाँ एकदम धूप तेज है।
0: जी जी,
1: गरम गरम हवा चल रहा है सर।
0: तो हम लोग बात कर रहे हैं आपसे कि 23 तारीख को हम लोग वर्ल्ड टर्टल डे मनाते हैं, यानी टर्टल मतलब कछुआ हो गया। कछुआ के बारे में जो अवेयरनेस है उसके बारे में फैलाने के लिए, और हमारा जो उड़ीसा का जो तट है पारादीप के आसपास का, वहाँ पे प्रजनन हेतु बहुत सारे कछुए आते हैं, मालाबार तट पे भी आते हैं। तो ये हम लोग के लिए मतलब बहुत ही बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और 22 तारीख को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी मनाते हैं।
1: जी
0: जी, तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: आज मैं सुनूंगा सर, फिल्म का नाम है पुकार।
0: जी

0: वो गाना है ना, तू मैके मत जइयो मत जइयो मेरी जान, गायक अमिताभ बच्चन जी का फिल्म का गाना है, खुद अमिताभ बच्चन जी गाए हैं। सबसे पहले गीत आपको के निर्देशक से आपको पूरे भारत का श्रोता को, आकाशवाणी भागलपुर में जुड़े सभी लोगों को, आपके परिवारजन को, रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को, भागलपुर में सभी उद्घोषक भाई बहनों को, हेलो एकता रेडियो फ्रीक्वेंसी ग्रुप में जुड़े श्रोताओं को, पूरे भारत का श्रोता को डिलीट कर इसका प्रसारण शनिवार 11 बजे होगा।
1: जी जी जी, तो आपकी पसंद पे गाना हम जरूर सुनाएंगे और इसी तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा।
0: जी सर, फोन टाइम के सर, धन्यवाद।

0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार सर, हम नारायणपुर से मिथुन कुमार साहब बोल रहे हैं।
0: मिथुन जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं सर।
0: और कैसे चल रहा है अभी?
1: अभी कुछ नहीं सर, बैठे रहते हैं, कोई रोजगार है नहीं। ब्लाइंड आदमी तो कोई रोजगार देता भी नहीं है, नहीं मिलती है।
0: तो बताइए, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: दाता फिल्म का सर।
0: दाता फिल्म का कौन सा गाना?
1: बाबुल का घड़ी अपना।
0: ठीक है, तो आपकी पसंद पे गाना हम जरूर सुनाएंगे, और इसी तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा।
1: ओके ओके।

0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं महाराष्ट्र ग्राम कराड़ जिला सातारा से तुकाराम जाधव बोल रहा हूँ।
0: तुकाराम जी, काफी दिनों बाद आपसे बात हो रही है। आपके यहाँ मौसम कैसा चल रहा है?
1: मौसम क्या, हमारे इधर सर्दी कड़ी धूप है, 40 तापमान रहता है हमारे इधर।
0: तो आपके यहाँ फसलों का कैसा चल रहा है अभी?
1: फसल क्या, अभी हमारा गन्ने की फसल रहती है, उसका कोई असर नहीं पड़ता है गर्मी का।
0: तब तो कोई बात नहीं है। और मतलब लू वगैरह भी चल रहा है आपके यहाँ?
1: हाँ जी जी जी, बहुत कम है हमारे इधर।
0: तब तो बहुत समझ के रहना चाहिए। और हम आपको बताएंगे, 31 तारीख को हम लोग वर्ल्ड टोबैको डे मना रहे हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है, अभी लोगों के बीच में तंबाकू

निषेध के बारे में जागरूकता फैलाना है, ठीक है, एंटी टोबैको डे। तो आपके माध्यम से हम अपने सभी श्रोताओं से बोलेंगे कि जो तंबाकू खाने से बहुत ही खतरनाक

0: जी, तो ठीक है, ये गाना आपको हम जरूर सुनाएंगे और इसी तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा।
1: कुछ मित्रों का नाम दे देंगे?
0: जरूर जरूर, आप अपने मित्रों के नाम हमें बताएं जिनको आप ये गाना डेडिकेट करना चाहते हैं।
1: सबसे पहले मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ सर जी।
0: धन्यवाद।
1: हमारे मित्र पेशा राव शेळके जी, सुनील बोधे जी, कांताबाव रामगडे जी, विठ्ठल पवार जी, सतीश गाडगे जी, गौतम कोकाडे जी, विकास शेळके जी, श्रीकांत मंडारे जी,
0: जी
1: विजय पाटील चारुकर जी,
0: जी
1: रमेश जाधव जी,
0: जी
1: और धनंजय चटेलर जी, हम सब एक ही सुनना चाहते हैं।
0: जी तो ठीक है, आपके पसंद पे आपके तमाम दोस्तों को और अपने तमाम श्रोताओं को ये गाना हम जरूर सुनाएंगे और इस तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा।
1: शुक्रिया, धन्यवाद।

0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: विजय पाटिल।
0: विजय जी कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हो सर जी, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, और लग रहा है पहली बार आपसे बात हो रही है।
1: हाँ, पहली बार मैं भागलपुर पर भाग के आया हूँ सर जी।
0: क्या बात है, और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं महाराष्ट्र जालना डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा।
0: अच्छा, जालना से बात करें, महाराष्ट्र से। आज हमें एक जालना से और कॉल आया था, और काफी अच्छा लगता है आप इतने दूर से हमें कॉल करते हैं। तो आप करते क्या हैं?
1: हाँ सर जी, मैं खेती बाड़ी करता हूँ, और मेरा मंडप डेकोरेशन का व्यवसाय है मेरा।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: और सर जी,

0: मेरे पास।
1: जी, तब तो काफी अच्छा है कि आप साउंड सिस्टम वगैरह का काम करते हैं, काफी अच्छा लगा सुनकर। तो बताइए आज आप
0: हाँ,
1: कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
0: वो शहनशाह फिल्म का गीत सुनना है सर जी।
1: शहनशाह फिल्म का कौन सा गाना?
0: उसने कहा अंधेरी रातों में सुनता न रहूं
1: क्या बात
0: पर।
1: है, आप लगता है अमिताभ बच्चन के फैन हैं।
0: हाँ, बहुत फैन हूँ सर जी मैं अमिताभ बच्चन को, कभी भूल नहीं पाऊंगा।
1: जरूर
0: और
1: जी,
0: हमारे दोस्तों को याद भी करना चाहता हूँ,
1: जरूर जरूर, नाम बताइए।
0: जैसे कि हमारे बुजुर्ग के राजू यादव जी
1: जी
0: और विजेंद्र विश्वकर्मा जी, और साथ ही साथ आपको भी इस गीत में शामिल करता हूँ सर जी मैं।
1: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पसंद पे ये खूबसूरत सा गाना आपके तमाम दोस्तों को हम जरूर सुनाएंगे, और इस तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा।
0: ओके सर जी, कॉल करने के लिए दिल से धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं
1: जी? नमस्कार नमस्कार
0: नमस्कार, आपके अंदाज ही आपकी पहचान है, तो आप अपने बारे में आप हमारे श्रोताओं को खुद बता दे।
1: जी मैं राजू यादव, ग्राम प्रहका श्रीरामपुर डेरा सरीला राट मुस्करा हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश।
0: क्या बात है, और लग रहा है आपसे हम पहली बार बात कर रहे हैं।
1: जी पहली बार, पहले होती रही एक साल पहले, लेकिन मैं हम थोड़ा व्यस्त रहे, कॉल नहीं लगा पाए, लेकिन आज पहली बार 2026 में बात हो रही।
0: क्या बात है, और आप बुंदेलखंड से बोल रहे हैं, इतनी दूर से बोल रहे हैं, तो आपको बताना चाहेंगे कि अभी 28 तारीख को हम लोग पूरे देश में बकरीद का त्यौहार मनाएंगे।
1: जी,
0: और आपके माध्यम से हम आने वाली बकरीद के लिए अपने तमाम श्रोताओं को हार्दिक बधाई पहले ही दे देते हैं। ये सारे त्यौहार हमारे देश में, चाहे किसी भी धर्म की हो या किसी भी संप्रदाय के हो, सभी कुछ ना कुछ एक मैसेज देता है।
1: जी,
0: और पॉजिटिव मैसेज रहते हैं, और हमें उस रूप में उसको ग्रहण करना चाहिए।
1: जी,
0: और आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं खुद से।
1: जी सर जी, मैं कृषक हूँ, कृषि का कार्य करता हूँ, और इस समय मैं अपने बगीचे में लेटा हुआ हूँ और कार्यक्रम देखा कि आज रिकॉर्डिंग हो रही है, तो थोड़ा समय निकाला और मैं लगातार लगभग 10-15 मिनट हो रहे रिकॉर्डिंग के कॉल मिलाते।
0: क्या बात है, और आपने कॉल भी लग गया, और काफी अच्छा लगता है इतनी दूर से हमें लोग कॉल करते हैं, और हम आपकी फरमाइशों को पूरा जरूर करेंगे। तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: सर जी गाना तो मैं मूवी का नाम रहेगा उसका, नाचे नांगन गली गली का।
0: जी इस फिल्म का कौन सा गाना?
1: तुम क्या आए दुनिया बदल गई।
0: क्या बात है, तो ये गाना आप खुद सुनेंगे या किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं?
1: सभी रेडियो भागलपुर सुनने वाले, रेडियो के चाहने वाले दीवानों को ये गीत समर्पित करूंगा, और कुछ लाइनें भी जरूर कहूंगा।
0: जरूर जरूर फरमाइए।
1: भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसे आला उदल की नगरी महोबा बुंदेलखंड से प्यार नहीं।
0: क्या बात है, और आपने अल्लाह उदल की बात की, तो अगर उनके बारे में और कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं।
1: उनका तो इतिहास गवाह है, हमारे अल्लाह उदल की नगरी महोबा में आज भी कजली का मेला लगता है, किरतुआ तला है, और माँ चंद्रिका देवी का इतिहास मंदिर गवाह है, और हनुमान जी का बहुत बड़ा है मंदिर है, और करिया पाठा भी विराजमान है, जहाँ महोबा के पश्चिम साइड में करिया पाठा है, वहाँ किरतुआ तला है, जहाँ कुछ सावन भादो में वहाँ एक कजली मेला लगता।
0: जी, और चंद्रशेखर आजाद भी बुंदेलखंड से जुड़े हुए थे।
1: जी। और सर ये भी बताना चाहता हूँ, बुंदेलखंड से ही रानी लक्ष्मीबाई
0: जी
1: हमारी झांसी की हैं, जो बुंदेलखंड का नाम रोशन करती हैं, महिलाओं का सम्मान ऊपर बढ़ाती हैं।
0: ठीक है, तो आपके तमाम चाहने वालों और अपने तमाम श्रोताओं को आपकी पसंद पे गाना हम जरूर सुनाएंगे, और इसी तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा।
1: प्रणाम, नमस्कार,
0: नमस्कार, नमस्कार।
1: जय माता की, जय भारत।

0: हेलो जी, नमस्कार
1: नमस्कार। फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
0: सर। रमेश साहब बोल रहा हूँ सर जी।
1: रमेश जी, कैसे हैं आप?
0: ठीक ठाक सर
1: और
0: जी।
1: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: फरीदाबाद बल्लभगढ़ से सर जी।
1: जी, और रहने वाले आप कहाँ के हैं?
0: बिहार का सरपाका जिला का।
1: जी, और बताइए अभी क्या चल रहा है?
0: बस ठीक है सर जी।
1: तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
0: आज सर जी हम गाना सुनेंगे, फिल्म का नाम है सिर्फ तुम।
1: अच्छा, सिर्फ तुम फिल्म का कौन सा गाना?
0: बस उसी का सर एक गाना सुना दीजिएगा सर जी।
1: जी, तो गाना खुद सुनेंगे या अपने दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
0: बस सर जी आपको भी सुनाएंगे, पूरा श्रोता कॉल करने वाले को ये गाना सुनाएंगे सर जी।
1: जी, तो ठीक है, आपकी पसंद पे गाना हम जरूर सुनाएंगे और इस तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा।
0: ओके सर जी,
1: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: जय बजरंग रेडी जो सोता था बस स्टैंड वंडा विलेज चले मैंने वो चाय वाले वो ऐसा चाय पी दो।
0: और लक्ष्मण जी कैसे हैं आप?
1: बस भगवान की कृपा है, आप लोग की कृपा है।
0: और क्या चल रहा है आजकल?
1: बस चाय की दुकान और रेडियो है, जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ।
0: जी जी, ये नया इनोवेशन हो गया आपका। आपको बताना चाहेंगे कि 31 तारीख यानी 31 मई को हम लोग एंटी टोबैको डे मना रहे हैं, यानी तंबाकू निरोध दिवस। तो आप इसके बारे में जानते होंगे कि तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है, और आपके माध्यम से हम अपने तमाम श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि तंबाकू खाने से ओरल कैंसर होता है, आपको श्वास नली या ग्रास नली जो बोलते हैं उसमें भी कैंसर हो सकता है, और भारत में जितने कैंसर के केस है सबसे ज़्यादा आपको ओरल कैंसर केस है। तो इसीलिए सभी लोगों को तंबाकू जो खाते हैं उसको या तो छोड़ दें, छोड़ने में दिक्कत होती है तो नशा मुक्ति केंद्र में जाकर छोड़ना सीखें, लेकिन इसको जितना जल्दी हो सके छोड़ दें, क्योंकि इससे स्वास्थ्य बहुत ही आपका प्रभावित होगा।
1: दांत भी खराब होते हैं, सब दिक्कत होती है, इसलिए तम्बाकू गुटखा नहीं खाना चाहिए।
0: जरूर जरूर, ठीक है। तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: आज सुनाओ दिलवाले का, सातों जन्म तक करता रहूंगा प्यार।
0: तो ठीक है, गाना आप खुद सुनेंगे, दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: गजराज लोधी मांगे लालचंद ने बसंती लाल कटारी सवारी सचिन भाई का मुकेश भाई का ये सब दोस्त।
0: ठीक है, तो आपकी पसंद पे गाना हम जरूर सुनाएंगे, और इस तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा।
1: ठीक है सर, नमस्कार।
0: नमस्कार।

घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही है, यानी वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का। जाने से पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि प्रत्येक शुक्रवार को आप अपने मन पसंदीदा फरमाइशी फिल्मी गानों के लिए अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। इसके लिए आप हमें सुबह 11:30 से 12 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मुझे यानी सौरभ कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: इसको बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: आप सुन रहे थे श्रोताओं के फोन कॉल पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम फोन इन आपके पसंद। पेश कर रहे थे सौरभ कुमार और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जा रहा था आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए शहरी महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम नारी लोक।
1: मैनू श्रीना का प्यार भरा नमस्कार। मैनू ये तो हम सभी को पता है कि आज का युग इंटरनेट और तकनीक का युग है। आधुनिक जीवन में सोशल मीडिया का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां पहले लोग केवल समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते थे, वहीं अब मोबाइल फोन और इंटरनेट ने दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है। आज हर व्यक्ति कुछ ही सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया ने महिलाओं के जीवन में भी बड़ा परिवर्तन लाया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म महिलाओं के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं, ना बहनों? इनका महिलाओं के सामाजिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक जीवन पर भी गहरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो बहनों, बातें आगे भी यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और सुनते हैं कुछ और भी जरूरी बातें।
2: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
3: हाँ दी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
3: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
3: पर दीप,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
3: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
2: अच्छा।
4: आरबीआई कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: AIR at 90.
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 87

0: दो चार दो।
1: हाँ।
0: लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
3: बहनों नारी लोक कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। और बहनों हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया की। जी हाँ बहनों, सोशल मीडिया ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ लोग अपनी बात, विचार, फोटो, वीडियो और जानकारी दूसरों के साथ साझा करते हैं और इसके माध्यम से लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी प्रतिभा दुनिया के सामने ला सकते हैं। बहनों जहाँ पहले महिलाओं को अपनी बात समाज तक पहुँचाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था, वहीं सोशल मीडिया ने उन्हें अपनी आवाज़ उठाने का एक मजबूत मंच दिया। अब महिलाएं घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं, व्यवसाय चला सकती हैं और अपनी समाज में अपनी पहचान बना सकती हैं। बहनों सोशल मीडिया ने महिलाओं को नई नई जानकारियाँ प्राप्त करने का अवसर दिया है। आज महिलाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून, रोजगार और सरकारी योजनाओं के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त कर रही हैं। कई महिलाएं ऑनलाइन क्लास और वीडियो देखकर नई चीज़ें सीख रही हैं। इससे उनका ज्ञान और आत्मविश्वास दोनों बढ़ रहा है। आज वे इस मीडिया के माध्यम से अपना व्यवसाय चला रही हैं, घर बैठे कपड़ों का बिजनेस कर रही हैं, कोई खाना बनाकर ऑनलाइन ऑर्डर ले रही हैं तो कोई ब्यूटी और हस्तकला का काम कर रही है। इसे बहनों हम महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत बन रही हैं और बहनों आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़ रही हैं। इस मीडिया ने महिलाओं को अपनी कला और प्रतिभा दिखाने का मंच दिया है। तो बहनों कई महिलाएं गायन, नृत्य, लेखन, पेंटिंग, कविता, सिलाई, मेकअप और खाना बनाने की कला को वीडियो और पोस्ट के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रही हैं। आज वो अपने अधिकारों और अपनी समस्याओं को खुलकर बोल भी पा रही हैं इस मंच के द्वारा। और बहनों महिलाओं की सुरक्षा, अधिकार, शिक्षा, घरेलू हिंसा और समाज अधिकार जैसे मुद्दों पर सोशल मीडिया ने लोगों को जागरूक भी किया है। और इतना ही नहीं बहनों, महिलाएं आज देश विदेश के लोगों से जुड़ भी रही हैं, साथ ही नई संस्कृति, नए विचार और नई तकनीकों को जान भी रही हैं। पर जहां सोशल मीडिया के द्वारा महिलाओं में इतने सारे सकारात्मक प्रभाव देखे जा रहे हैं, वहीं कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। बहनों सोशल मीडिया पर लोग अक्सर अपनी अच्छी तस्वीरों और शानदार जीवन दिखाते हैं। कई महिलाएं इन्हें देखकर खुद की तुलना करने लगती है। इससे उनमें हीन भावना, तनाव और आत्मविश्वास की कमी पैदा हो रही है। कई महिलाएं घंटों सोशल मीडिया पर समय बिताती है। इससे पढ़ाई, काम और परिवार के लिए समय कम हो जाता है। सोशल मीडिया की लत धीरे धीरे दैनिक जीवन को प्रभावित करने लग रही है। बहनों आज ऑनलाइन धोखाधड़ी बड़ी समस्या बन चुकी है। कई महिलाओं को सोशल मीडिया पर बदसलूकी की और परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अधिक मोबाइल से जुड़े रहने पर घर के लोगों से दूरियां भी बढ़ रही है। तो बहनों हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया महिलाओं के लिए एक वरदान भी है और चुनौती भी। यह महिलाओं को जागरूक, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाते हैं, लेकिन इसका गलत उपयोग तनाव, समय की बर्बादी और कई समस्याओं को जन्म भी देते हैं। इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग समझदारी, संतुलन और सावधानी के साथ करें। तो बहनों और भी ज़्यादा जानने के लिए सुनते हैं पूर्व प्रसारित वार्ता। विषय है मीडिया और स्त्री समाज। वार्ताकार है प्रियंता प्रेमलोचा।
4: महिलाओं को जागरूक और सशक्त बनाने में जिन माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है उसमें मीडिया का महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन हमारे देश में ऐसा लगता है कि महिला समाज एवं मीडिया के बीच 36 का आंकड़ा है। आप कोई भी अखबार उठा लें, गांवों में, खेत खलिहानों में, परिवार में, नौकरी में महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव

0: की चर्चा, उससे लड़ने की आवश्यकता पर लेख मिले या नहीं, सुंदरता बढ़ाने के उपायों पर विस्तृत लेख अवश्य मिलेंगे। मेधा पाटेकर, किरण बेदी की चर्चा हो या नहीं, ऐश्वर्या राय, लारा दत्ता इत्यादि का गुणगान अवश्य मिल जाएगा। प्रगतिशील और आंदोलनी तेबर वाली युक्तियाँ, आधुनिक विचारधारा वाली, अन्याय और शोषण के खिलाफ आंदोलन करने वाली, सड़कों पर नारे लगाते हुए जुलूस निकालने वाली महिला, अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले स्त्रियों की जितनी चर्चा समाचार पत्रों में होती है, उससे कई गुना अधिक चर्चा देह एवं सौंदर्य की तिजारत करने वाली अभिनेत्रियों एवं मॉडलों की होती है। 1999 में दो बड़े अंग्रेजी समाचार पत्रों का एक महीने तक विश्लेषण करने पर पाया गया कि प्रिंट मीडिया में महिलाएं अब भी सिर्फ हास्य की ही जगह पाती हैं। अधिकतर समाचार पत्र और पत्रिकाएं सिर्फ साप्ताहिक महिला संबंधी पेज में ही महिलाओं के मुद्दे उठाते हैं। मुख्य पेजों में महिलाओं की उपस्थिति आमतौर पर विज्ञापनों या हिंसा और सामाजिक घटनाओं के समाचारों के रूप में होती हैं। जो मुद्दे विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में जगह पाते हैं वे हैं, दाम्पत्य जीवन को स्त्रियां बेहतर कैसे बनाएं, पति को रिझाने के लिए पत्नी क्या करे, पति के काम से लौटने पर पत्नी कैसी लगनी चाहिए, क्या ऐसे आलेख स्त्रियों के दिलो दिमाग को पुरुष प्रधान व्यवस्था के खिलाफ खड़े कर सकते हैं, क्या इससे ऐसा संस्कार पैदा होगा कि स्त्रियां पारिवारिक हिंसा और जुल्म के खिलाफ बगावत कर सके। समाचार पत्रों, मीडिया के अन्य माध्यमों आदि के द्वारा स्त्रियों को यह समझाने की कोशिश की जाती है कि उनका दैहिक सौंदर्य ही उनके अस्तित्व की सार्थकता की कसौटी है। धारावाहिकों, न्यूज चैनलों और विज्ञापनों ने स्त्री की एक दूसरी छवि बनाई है। इनमें एक नई किस्म की स्त्रियों को दिखाया जाता है। ये परंपरागत उत्पीड़न और शोषण से तो मुक्त दिखती हैं, लेकिन यह स्वयं पुरुषवादी समाज के लिए उपयोग की वस्तु बनकर रह जाती हैं। इन दिनों हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुक्त स्त्री का जो रूप दिखाता है, वह उपभोक्ता स्त्री का ही रूप है, जो सिगरेट पीती है, शराब पीती है। अधिकतर उच्च वर्गों की स्त्रियों की इसी छवि को इसमें दिखाया जाता है। विज्ञापनों, धारावाहिकों और फिल्मों के भीतर स्त्री का निर्माण करते हुए मीडिया यह भूल जाता है कि भारत की शोषित दमित स्त्री की मुक्ति का लक्ष्य बाजार में साबुन बेचने वाली स्त्री नहीं हो सकती। पत्रकारों के लिए विचारणीय बिंदु यह है कि हम लोगों ने ही नारी को एक रंगीन बल्ब दिया है। चिंता की जगह चटपटापन पैदा कर हम लुत्फ उठा रहे हैं। भूमंडलीकरण, आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण ने मीडिया को इस कदर अपने आगोश में जकड़ा है कि प्रिंट मीडिया, खासकर टीवी मीडिया में चेहरा, सुंदरता, आकर्षण को प्राथमिकता दी जाने लगी है। वास्तव में समस्या व्यक्ति की उपस्थिति को लेकर नहीं है, बल्कि उसकी उपस्थिति कैसी है, यह सोचने समझने का विषय है। इन विज्ञापनों में स्त्रियों की गरिमा तथा उनकी अस्मिता पर जबरदस्त कुठाराघात करने का कार्य किया है। पर्दे की दुनिया में महिलाओं को उनके बौद्धिक स्तर पर नहीं, वरन दैहिक स्तर पर पेश किया जाता है। देखा जाए तो यह एक प्रकार की गुलामी है, जिसमें महिलाओं की बौद्धिकता को दरकिनार कर महज उसके दैहिक सौंदर्य को परोसने भर का कार्य करवाया जाता है। यह उसके संपूर्ण व्यक्तित्व की उपेक्षा है, जहाँ वह एक बुद्धिमान, प्रतिभावान, गौरवान्वित मनुष्य के रूप में नहीं, बल्कि एक उत्पाद के रूप में प्रस्तुत की जाती है। आदि मीडिया में बोल्ड एंड ब्यूटीफुल के लिए तो जगह है, किंतु कर्मठ एवं जुझालू महिला के लिए नहीं। 1994 में किए गए एक मीडिया सर्वेक्षण में पाया गया कि टीवी समाचारों में महिलाओं के मुद्दे हास्य पर थे। हालांकि टीवी के प्राइम टाइम में दिखाए जाने वाले प्रसिद्ध धारावाहिकों के सर्वेक्षण में कुछ उत्साहित करने वाली प्रवृत्तियां भी दिखाई दी। जिन महिला किरदारों को घरों से बाहर काम करते हुए दिखाया गया, वे मजबूत शख्सियत वाली थी, अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। कुछ पत्रिकाएं नारियों की अपरिष्कृत और सतही रुचियों को बढ़ावा देती हैं। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा एवं अनेक सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में हिंदी के पत्र प्रभावकारी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को कुटीर उद्योगों एवं हस्तकला से कैसे संबद्ध किया जाए, इस प्रश्न को पत्रिकाएं सुलझा रही हैं। महिलाओं की मानसिकता परिमार्जित करने में महिलोपयोगी प्रकाशन महत्वपूर्ण है। इनसे सजने सवरने के अतिरिक्त चतुर्दिक जागरण का शुभ संदेश प्राप्त होता है। महिला के प्रति हिंसा, यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना जैसी घटनाएं पहले से घटती आ रही हैं, परंतु मीडिया ने उनमें वह चेतना जगाई है जिसके कारण अब वे अत्याचार के विरुद्ध मुखर हो रही हैं और सरकार को भी उनके हित में कानून बनाने के लिए तत्पर होना पड़ रहा है। महिलाओं के पक्ष में जमीन तैयार करने में रेडियो, दूरदर्शन, पत्र पत्रिकाओं और सबसे अधिक समाचार पत्रों की भूमिका रही है, क्योंकि वह आम आदमी तक पहुंचने का सर्व सुलभ सस्ता माध्यम है। बालिका शिक्षा संबंधी कई विज्ञापन एवं कार्यक्रम दिखाकर दूरदर्शन साक्षरता के प्रसार में सहयोग कर रहा है। मलाला यूसुफ को कौन जानता अगर मीडिया ने उसे नहीं दिखाया होता। आज अगर किसी पर तेजाब फेंकने की घटना होती है तो आरोपी सलाखों के पीछे होता है। यह महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करने का कार्य करता है। रेडियो टीवी ने महिलाओं की सोच में बदलाव ला दिया है। टीवी मीडिया के स्क्रीन पर दिखने वाले चेहरों का स्कैनिंग कीजिए। इन चेहरों को बाजार की जरूरतों के हिसाब से सजाया संवारा जाता है। आज के मीडिया में चेहरों को सेल करने की होर लगी हुई है। आज विज्ञापनों में रचनाओं पर अश्लीलता हावी है। विज्ञापन एजेंसियों ने अयोग्य सामानों को बेचने में महिला की देह का नियोजित ढंग से प्रयोग किया है। पुरुष उत्पादों के विज्ञापनों में महिला मॉडल को इस तरीके से दिखाते हैं कि सुंदर महिला उसी पुरुष को चाहेगी जिसके पास कीमती ब्रांडेड उपभोक्ता वस्तुएं हैं। सांवले रंग को गोरा कैसे बनाया जाए, इसके लिए दर्जनों ब्रांड के उत्पाद बाजार में मौजूद हैं, जो बड़े से बड़े दावे के साथ किसी भी सांवली स्त्री को गोरा बनाकर उसके जीवन को ऊंचाई देते नजर आते हैं। गोरा बनते ही लड़की में आत्मविश्वास आ जाता है, अच्छी जॉब मिलती है। कल तक शादी के लिए लड़का राजी नहीं था, गोरा बनते ही वह उस लड़के को शादी के लिए इनकार करती है, क्योंकि अब वह हर रूप में पूरी तरह सक्षम है। सौंदर्य मिथ ने महिला की स्वतंत्रता को मोड़कर उसके चेहरे और देह में बदल दिया। सौंदर्य मिथ ने महिला को झूठी चयनशीलता भी दी है। विज्ञापनों में भी महिलाओं के लिए समाज के दायरे तय हैं। फिर चाहे स्थिति जो हो, वह चाहे शिक्षित हो जाए या फिर वह कामकाजी हो, इसी सांस्कृतिक मानस को ध्यान में रखकर विज्ञापन भी बनाए जाते हैं। इन विज्ञापनों में महिलाओं का कपड़े धोना, बर्तन मांजना, पति को ऑफिस के लिए रवाना करना दिखाया जाता है। तमाम विज्ञापन जो इस समय टीवी पर दिखाया जाता है उसका आशय सिर्फ इतना है कि महिला सिर्फ आनंद, आराम और संतुष्टि देने की वस्तु मात्र है। इस पूंजीवादी समाज में महिला को उपभोक्ता वस्तु बनाने की महिला विरोधी जनसंचार माध्यमों और व्यवसायियों की साजिश को समझना होगा। अगर हम ऐसा कर पाने में असफल रहे तो महिलाओं की वास्तविक समस्याओं और उनके वास्तविक मुद्दों पर पर्दा डाल दिया जाएगा। महिला आंदोलनों और संघर्षों से हासिल हुई अब तक की हमारी उपलब्धियों को दरकिनार कर दिया जाएगा। तब महिलाओं की पहचान उनके विचार, विवेक और कर्तव्य से नहीं, देह और सौंदर्य से होंगे, क्योंकि तब ये जीती जागती नारी नहीं, उपभोग करने लायक वस्तु रह जाएंगी।
1: बहनों, हम सुन रहे थे पूर्व प्रसारित वार्ता। विषय था मीडिया और स्त्री समाज। वार्ताकार थी प्रियंता प्रेमलूचा। बहनों, बातें आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

बहनों, दिनों दिन बढ़ती गर्मी हर किसी को परेशानी में डाल रही है। तेज धूप, सूरज की तेज किरणें मानो आग उगल रहे हो। हर किसी का हाल बेहाल है, चाहे इंसान हो या पशु पक्षी। लेकिन कुछ बातों का ख्याल रखकर आप खुद को इस मौसम के लिए तैयार कर सकती हैं। बहनों, दिनों दिन बढ़ती गर्मी चिंता का विषय तो है, पर बदलते मौसम में फिट बने रहने के लिए अपनी जीवन शैली में बदलाव जरूरी है। अपने रूटीन में बदलाव की शुरुआत करने की जरूरत है, ताकि आने वाले महीनों में पूरी तरह से स्वस्थ रहा जा सके। साथ ही गर्मी में तमाम बीमारियां भी लोगों को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में जरूरी है कि अपने खान पान से लेकर पहनावे में भी बदलाव किया जाए, तो वहीं अपने स्वास्थ्य के प्रति भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। तेज धूप से बचने के लिए जरूरी है कि अपने दिन के कामों को दोपहर तक पूरा कर लिया जाए। गर्मियों के मौसम का असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ साथ हमारे खान पान भी पर भी साफ देखा जा सकता है। तो बहनों, गर्मियों से बचने के लिए फिटनेस को बरकरार रखना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में खान पान का स्वस्थ होना अहम भूमिका निभाती है। साथ ही इस मौसम में तला भुना खाने से बचें, हरी सब्जी फलों का सेवन करें, नियमित रूप से सलाद को अपने डाइट में शामिल करें। इस मौसम में शरीर में पानी

की कमी बिल्कुल भी ना होने दे, तो 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिए। घर से बाहर जाने से पहले भी पानी पीकर निकले, भरपूर खाना खा के निकले, साथ ही अपने साथ छाता लेकर निकले। धूप से आने पर तुरंत पानी ना पिए और नहाए भी नहीं। तो बहनों, इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप इन परेशानियों की, यानी कि गर्मी से होने वाली परेशानियों से बच सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। और ज़िंदगी को और भी खूबसूरत बनाने के लिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। तो चलिए, चलते चलते सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

बहनों, अब हमारा समय ही पूरा होता है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ और बातों के साथ, नई नई जानकारी के साथ। अब हमें त्याग गया, नमस्कार।

0: की घड़ी में दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको पंडित भजन सपोरी का सरोद वादन सुनवा रहे हैं राग पतदीप में।
1: वक्त है

अभी आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुर संगम में पंडित भजन सपोरी का संतूर वादन सुन रहे थे, राग पटदीप में। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के ठीक एक बजा है। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज के हमारे कलाकार हैं विनय कुमार शुक्ला। आरंभ में आइए इनसे सुनते हैं ये विकास गीत।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई।

0: क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: लीजिए अब सुनिए विनय कुमार शुक्ला से ये पूर्वी।

आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज के हमारे कलाकार हैं विनय कुमार शुक्ला। इन्हीं के गाए लोकगीत आप एक बार फिर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार के बाद, जिसके लिए आइए शामिल होते हैं रांची की प्रसारण सभा में। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वें रोजगार मेले में झारखंड समेत देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। कहा, युवाओं के लिए बन रहे लाखों रोजगार के अवसर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राजधानी रांची के आधा दर्जन से अधिक नए इलाकों में पाइपलाइन से पीएनजी आपूर्ति शुरू करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 25 मई से सभी विभागों की करेंगे समीक्षा। बजट की घोषणाओं पर भी होगी चर्चा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इबोला वायरस को लेकर झारखंड समेत सभी राज्यों को निगरानी का दिया निर्देश। भारत में अब तक नहीं मिला है इबोला का केस। और नेशनल रैंकिंग रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप के दूसरे दिन झारखंड के रुद्रांश शर्मा ने 500 प्लस डी इवेंट में जीता स्वर्ण पदक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से झारखंड समेत देश भर के 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि भारत विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करना है। दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने धनबाद रेलवे ऑडिटोरियम में रोजगार मेला कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान 88 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कौशल विकास योजना के तहत 1.5 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
2: कौशल विकास योजना के तहत अब तक 1.5 करोड़ से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और इसके साथ ही पीएम इंटर्नशिप युवा को लगभग 1.25 लाख प्रतिभागी जो युवा है उनको देश की शीर्ष कंपनियों में अनुभव और आर्थिक सहायता प्राप्त करने का भी बेहतर अवसर भी मिल रहा है।
0: इधर रांची में कार्यक्रम आयोजन सीसीएल ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मौजूद रहे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में बैठक कर मोरहाबादी, लालपुर, धुरवा, हिहेल, एचसी क्षेत्र और बीआईटी मेसरा समेत आधा दर्जन से अधिक नए इलाकों में जल्द पीएनजी आपूर्ति शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स गठित कर युद्ध स्तर पर कनेक्शन दिए जाएं, ताकि अधिक से अधिक घरों को पाइपलाइन से सस्ती और पर्यावरण अनुकूल गैस मिले। इस दौरान मंत्री ने तंग मोहल्लों में आग बुझाने के लिए 2 फायर बाइक का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 25 मई से 11 जून तक रांची में सभी विभागों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। इन मैराथन बैठकों में सभी प्रमुख विभागों के कार्यों का मूल्यांकन और योजनाओं का क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने पर जोर रहेगा। साथ ही बजट घोषणाओं पर भी चर्चा होगी। 25 मई को जल संसाधन, वित्त और वाणिज्य कर विभाग से शुरुआत होगी और 11 जून को परिवहन, राजस्व, निबंधन, भू सुधार और विधि विभाग की समीक्षा के साथ यह अभियान समाप्त होगा। हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने कल रांची के रातू में 2.25 करोड़ की लागत से बनने वाली 2 सड़कों का शिलान्यास किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि जर्जर सड़कों से बरसात में कीचड़ और गर्मी में धूल की समस्या थी। नई सड़कों से किसानों को मंडी, छात्रों को स्कूल और मरीजों को अस्पताल पहुंचने में आसानी होगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। 15 मई को 3 रुपए प्रति लीटर और 19 मई को 90 पैसे की वृद्धि के बाद ईंधन की कीमतों में यह तीसरी बार संशोधन है। आज की वृद्धि के बाद

0: में पेट्रोल की कीमत 102.63 रुपए और डीजल की कीमत 97.66 रुपए हो गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्यसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही झारखंड की सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगी। श्री मरांडी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया।
1: भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी भी थी और चुनाव जीतेगी भी। राज्य में करप्शन व्याप्त है, भ्रष्टाचार व्याप्त है सभी स्तरों पर। इस प्रकार से हेमंत सोरेन के राज्य में विकास का काम रुका पड़ा। इन सारे मुद्दों को लेकर हम स्थानीय स्तर पर भी कार्यक्रम करते हैं, प्रदेश स्तर पर भी कार्यक्रम करते हैं।
0: बता दें कि झारखंड की 2 सीटों पर 18 जून को मतदान होना है। रांची के खिजरी से कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने कहा है कि गठबंधन सरकार में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और पार्टी को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।
2: इंडिया एयरलाइंस भावनात्मक भी है, इंडिया एयरलाइन राजनीतिक भी है और इंडिया एयरलाइन देश का आने वाला जो डिमांड है उसका भी एक कड़ी है। इसीलिए निर्णय जो होंगे सारे पार्टियों का भावना को लेकर के सारे पार्टियां मिलकर के एक उम्मीदवार खड़ा करें ताकि जो है कि दोनों का दोनों सीट हम आसानी से जीत सके।
0: झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने GST में राज्य का हिस्सा नहीं मिलने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।
3: हमारे राज्य में GST का पैसा नहीं आ रहा। जो भी राज्य के कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसमें केंद्र सरकार का सहायता होता है, सहायता और ये फेडरल सिस्टम का एक स्थापित मूल्य, किसी योजना में 1 रुपए नहीं आना, राज्य सरकार के कमर को तोड़ने का काम कर रही है।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इबोला वायरस को लेकर झारखंड समेत सभी राज्यों को निगरानी और रोकथाम के सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। हालांकि भारत में अब तक कोई मामला नहीं मिला है। झारखंड में केंद्र के निर्देश पर तैयारी शुरू कर दी गई है और जल्द ही सभी सिविल सर्जन्स को अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाने व अन्य एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने समन्वित निगरानी, समय पर रिपोर्टिंग और चिन्हित स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों पर विशेष जोर दिया है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में भीषण गर्मी पड़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोलहाल प्रमंडल में लू लगने से एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक हीट वेव को लेकर लोगों से सतर्क रहने और धूप से बचाव की अपील की है। 11वीं नेशनल रैंकिंग रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप के दूसरे दिन झारखंड के रुद्रांश शर्मा ने 500+ D इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया। रुद्रांश शर्मा की लगातार दूसरी स्वर्णिम सफलता पर रोलर स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ झारखंड में खुशी की लहर है। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,47,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,75,000 रुपए प्रति किलो है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वें रोजगार मेले में झारखंड समेत देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। कहा, युवाओं के लिए बन रहे लाखों रोजगार के अवसर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राजधानी रांची के आधा दर्जन से अधिक नए इलाकों में पाइपलाइन से PNG आपूर्ति शुरू करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 25 मई से सभी विभागों के करेंगी समीक्षा। बजट की घोषणाओं पर चर्चा भी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इबोला वायरस को लेकर झारखंड समेत सभी राज्यों को निगरानी का दिया निर्देश। भारत में अब तक नहीं मिला है इबोला का केस। और नेशनल रैंकिंग रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप के दूसरे दिन झारखंड के रुद्रांश शर्मा ने 500+ D इवेंट में जीता स्वर्ण पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर

0: 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंग का शेष भाग। कलाकार हैं विनय कुमार शुक्ला। आइए इनसे सुनते हैं ये विरह गीत।

0: से चोर बासमाई गले चुनरी भइए कैसे काजल।
1: आप सुन रहे थे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग, कलाकार थे विनय कुमार शुक्ला। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक संताली पत्रिका कार्यक्रम जियो झरना।

0: आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जीवन झरना, ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। तो बचने वाले हैं, आइए शामिल होते हैं पटना के प्रसारण सभा।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे अधिक मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व के कई देशों के साथ साझेदारी भी कर रहा है, जिसका मकसद देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाना है। उन्होंने कहा कि देश

0: पूरी दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बनता जा रहा है। रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नव नियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। ये रोजगार मेला पूरे देश में 47 अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के परीक्षार्थियों को सरकारी बसों में निशुल्क आवागमन की सुविधा दिए जाने की घोषणा की है। श्री चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इसका उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले परीक्षार्थियों को बिना किसी आर्थिक और मानसिक तनाव के समय पर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थाओं और मठ मंदिरों से छात्रों और अभिभावकों के लिए पेयजल और सत्तू जैसे पेय पदार्थों की व्यवस्था में सहयोग करने की अपील भी की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना के ऊर्जा सभागार में आयोजित 2 दिवसीय AI समिट का उद्घाटन किया। श्री चौधरी ने कहा कि हमारा संकल्प है कि युवा शक्ति, स्टार्टअप और नवाचार के बल पर बिहार डिजिटल क्रांति का अग्रणी राज्य बने। उन्होंने कहा कि AI आधारित विकास से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। श्री चौधरी ने कहा कि इस समिट का मुख्य उद्देश्य राज्य को टेक्नोलॉजी हब बनाना और युवाओं के लिए कौशल विकास के नए अवसर प्रदान करना है। कार्यक्रम में देश भर के AI विशेषज्ञ, स्टार्टअप, डेवलपर्स और शोधकर्ता समेत हजारों की संख्या में छात्र शामिल हो रहे हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि ऊर्जावान कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत है। श्री नवीन ने प्रदेश भाजपा की ओर से पटना सिटी में आयोजित 2 दिवसीय दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और तन्मयता से कार्य कर रहे हैं, उन्हें ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम से बेहतर दिशा निर्देश मिलते हैं। इस अवसर पर पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल समापन सत्र में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में अगले 5 वर्षों में 1,00,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके अंतर्गत हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए हर वर्ष जुलाई महीने में नियुक्ति संबंधी विज्ञापन जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान श्री चौधरी ने शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए नई नीति बनाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि महिला शिक्षकों को गृह जिले के अपने प्रखंड की गृह पंचायत के बगल की पंचायत में स्थानांतरित किया जाएगा। वहीं पुरुष शिक्षकों का गृह जिले के गृह प्रखंड के बगल के प्रखंड में तबादला होगा। प्रदेश के विभिन्न भागों में मौसम का मिला जुला रूप देखने को मिल रहा है। राज्य के दक्षिणी भागों में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। वहीं उत्तर पूर्वी भागों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण आंधी बारिश की परिस्थितियां बनी हैं। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और सुपौल जिले के विभिन्न स्थानों पर आंधी बारिश और वज्रपात की आशंका है। वहीं पटना, गया, अरवल, औरंगाबाद, भभुआ, रोहतास समेत राज्य के दक्षिण मध्य और दक्षिण पश्चिम भागों में अनेक स्थानों पर प्रचंड गर्मी और लू की स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
2: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां शहरियों की ज़िंदगी को बेहतर और आसान बनाने का एक अहम जरिया हैं। जनाब मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोज़गार मेले का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा

के मुल्क ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जाहिर किया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी लगन, तर्ज अमल और रोज़मर्रा के कामों से इस भरोसे का मान रखें और इसे मज़ीद मजबूत करें। जनाब मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के तरक्याती सफ़र का हिस्सा बनने के लिए पुरजोश है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत दुनिया के कई मुख्तलिफ ममालिक के साथ शराकतदारी भी कर रहा है, जिसका मकसद मुल्क के नौजवानों को मौके, रोज़गार और आलमी तजुर्बा फराहम करना है। उन्होंने कहा कि मुल्क अब पूरी दुनिया का एक काबिल एतमाद सप्लाई चेन पार्टनर बनता जा रहा है। रोज़गार मेले में हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों, तंजीमों में नौमुंतखब 51,000 से भी ज़्यादा नौजवानों को तकरीरी नामा तकसीम किए गए। ये रोजगार मेला पूरे मुल्क में 47 मुख्तलिफ मकामात पर मुनक्किद किया गया था। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने 21 जून को होने वाले नीट यूजी के दोबारा इम्तहान के उम्मीदवारों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया है। जनाब चौधरी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इसका मकसद दूर दराज के इलाकों से आने वाले उम्मीदवारों को बगैर किसी माली और जहनी तनाव के वक्त पर इम्तहान मराकज तक पहुँचाना है। वज़ीर आला ने ज़िला इंतज़ामिया, रज़ाकाराना तंजीमों और मठ मंदिरों से भी अपील की है कि वो तलबा और उनके वालदैन के लिए पीने के पानी और सत्तू जैसे मशरूबात के इंतजाम में तआवुन करें। वज़ीर आला सम्राट चौधरी आज पटना के ऊर्जा सभागार में मुनाकिद दो रोज़ा AI समिट का इफ्तिताह किया। जनाब चौधरी ने कहा कि हमारा अज़्म है कि यूथ एनर्जी स्टार्टअप और इख्तरा के ज़ोर पर बिहार डिजिटल इनकलाब के सफ़े अव्वल की रियासत बने। उन्होंने कहा कि AI पर मोहित तरक्की से तालीम, सेहत, ज़रात और नज़्म व नस्क को मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। जनाब चौधरी ने कहा है कि इस समिट का ख़ास मकसद रियासत को टेक्नोलॉजी हब बनाने और नौजवानों के लिए फ़रोग़ हुनर के नए मौक़े फराहम करना है। प्रोग्राम में मुल्क के AI माहरीन, स्टार्टअप डेवलपर्स और रिसर्च स्कॉलर समेत हज़ारों की तादाद में तलबा शामिल हो रहे हैं। BJP के कौमी सदर नितिन नवीन ने कहा है कि तवानाई से भरपूर कारकुन ही पार्टी की असल ताकत हैं। जनाब नवीन ने बिहार BJP की जानिब से पटना सिटी में मुनक़दा दो रोज़ा दीनदयाल उपाध्याय तरसीलो तरबियती मुहिम का इफ्तिताह करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि पार्टी कारकुन पूरी लगन और तुंदही से काम कर रहे हैं और ऐसे तरबियती प्रोग्रामों से उन्हें बेहतर रहनुमाई मिलती है। इस मौके पर पटना साहब के रुकन पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद, रियासती सदर संजय सरोगी समेत पार्टी के कई सीनियर रहनुमा और कारकुनान मौजूद थे। वज़ीर आला सम्राट चौधरी कल इख्तितामी सेशन में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने कहा है कि रियासत में आइंदा 5 वर्षों में 1 लाख असातज़ा की तकर्री होगी। इसके तहत हर साल कम से कम 20,000 असातज़ा की तकर्री की जाएगी। इसके लिए हर साल जुलाई के महीने में तकर्री से मुतालिक इश्तहार जारी किया जाएगा। महकमे तालीम की जायज़ा मीटिंग के दौरान जनाब चौधरी ने असातज़ा के तबादला के लिए नई पॉलिसी बनाने की भी हिदायत दी है। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। रियासत के जनूबी हिस्सों में शदीद गर्मी और झुलसा देने वाली लू की सूरत हाल बनी हुई है। वहीं शुमाल मशरक़ी हिस्सों में मगरबी डिस्टर्बेंस की वजह से आंधी और बारिश के हालात बने हुए हैं। महकमे मौसमियात ने अपनी पेशगोई में कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और सुपौल अजला के मुख्तलिफ मकामात पर आंधी, बारिश और आसमानी बिजली गिरने का खदशा है। दूसरी तरफ पटना, गया, अरवल, औरंगाबाद, भभुआ और रोहतास समेत रियासत के जनूबी वस्त और जनूबी मगरबी हिस्सों में कई मकामात पर शदीद गर्मी और लू की सूरत हाल बरकरार रहेगी। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब ख़त्म होता है।

Nikam. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल तक की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज

0: शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
0: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
2: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आई गॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
0: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरला में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम

0: प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। सीबीएसई ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। सीबीएसई ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
0: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1,100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपए की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपए हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली

0: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमरीकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेन्यू कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुगियो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थ या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंजीबुगियो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम के आरंभ में प्रस्तुत है फिल्म आन मिलो सजना का एक दुकाना। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म जंगली से, आवाजें ही लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म बेमिसाल से, आवाज है लता मंगेशकर की।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: AIR at 90. आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: लीजिए अब सुनिए मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गीत आवाज़ है लता मंगेशकर की।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म नाम का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर बाद के 3 बजे हैं। लीजिए सुनिए प्रादेशिक संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको राजस्थानी लोक संगीत सुनवा रहे हैं। आज के हमारे कलाकार हैं डूंगर राम भाट और साथी। आइए उनसे सुनते हैं कुछ मांड।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्रोताओं, हमें खेद है कि किसी कारणवश हम आपको प्रादेशिक संगीत का कार्यक्रम नहीं सुनवा पाए। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम के 110.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं इस समय।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अमर प्रेम का गीत, आवाज किशोर कुमार की। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने। इस गीत को सुनने के लिए आपने हमें खत लिखे। आप हैं बोडोसरा नेला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली, प्रियांशु साहू। और ये खत आया है खमहरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रदीप कुमार का। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: किशोर कुमार की गाय फिल्म अमर प्रेम के इस गीत के साथ ही आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: रवि शर्मा लिखित नाटक सुनिए विजय माल।
1: सब यथा स्थान विराजें, कार्यवाही आरंभ की जाए।
2: जो आज्ञा महाराज। महाराणा की जय। राणा हाड़ा जी का विशेष दूत एक संदेश लेकर आया है और दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा चाहता है।
1: आने दिया जाए।
3: महाराणा की जय।
4: राणा हाड़ा जी ने यह पत्र आपकी सेवा में प्रेषित किया है।
1: मंत्री जी,
2: अन्नदाता,
1: पत्र का भावार्थ व्यक्त कीजिए।
2: अन्नदाता, राणा हाड़ा जी अपनी अतीत सुंदरी कन्या का विवाह हमारे वीर सामंत चूड़ावत से करना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए आपकी अनुमति मांगी है।
1: यदि

0: चूड़ावत जी को यह प्रस्ताव स्वीकार है तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है?
1: महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं इस विषय में कुछ

0: हैं आप? क्या हाड़ी कुमारी छत्राणी नहीं है? क्या उसकी रगों में पूर्वजों का रक्त प्रवाहित नहीं हो रहा?
1: महाराज,
0: हम आपकी शंका का कारण समझने में असमर्थ हैं।
1: महाराज, जहां तक मुझे ज्ञात है, हाड़ी कुमारी में वीरोचित गुणों का अभाव है। सामंत चूड़ावत का बचपन तो तलवारों की खनखनाहट में पला है और यौवन युद्ध क्षेत्र में पल्लवित हुआ है। कहीं ऐसा न हो कि हमारे इस उगते हुए सूर्य को ग्रहण लग जाए। विद्वानों ने कहा भी है, भार्या रूपवती शत्रु, यूं भी नारी का रूप और यौवन पुरुष की सबसे बड़ी दुर्बलता है। जानबूझकर इस दुर्बलता को गले की माला बनाने की सलाह मैं नहीं दे सकता।
0: चूड़ावत जी,
2: महाराणा,
0: आपकी इस विषय में क्या सम्मति है? क्योंकि वीर राजपूत केवल अपने ही विचारों और अपने ही भुजबल के विश्वास पर आगे बढ़ता है, इसलिए निसंकोच आप अपने विचार व्यक्त कीजिए।
2: महाराणा, हाड़ी कुमारी के अद्भुत रूप और लावण्य की चर्चा सुनकर भी मैंने कभी भावुकता का आश्रय नहीं लिया, पर मैं इतना अवश्य कहूंगा कि रूपवती भार्या को चाहे शत्रु कहा जाए अथवा उसे पुरुष की दुर्बलता की संज्ञा दी जाए, पर इन सब के साथ साथ वो पुरुष के जीवन की एक महान प्रेरणादायक शक्ति भी है, वह शक्ति जिसके अभाव में शिव भी शव के समान हो जाता है। आज एक नारी के सौंदर्य ने मेरी वीरता और पुरुषत्व को चुनौती दी है। यदि महाराणा की आज्ञा हो तो स्वीकार कर लो इस चुनौती को।
0: हम आपको ये चुनौती स्वीकार करने की अनुमति देते हैं। मलखान सिंह
3: जी, महाराज,
0: राणा हाड़ा को ये शुभ संदेश दे दो कि हमें ये संबंध स्वीकार है। महामंत्री जी।
4: जी महाराणा।
0: सामन चूड़ावत के विवाह का आयोजन राजकीय सम्मान से अतिशीघ्र किया जाए।
1: जो आज्ञा महाराज।

0: भैया भाभी बहुत ही सुंदर हैं।
1: सच
0: सच भैया, देखोगे तो पागल हो जाओगी।
1: तनिक अपनी भाभी को हमें भी तो दिखा दो।
0: इतने उतावले क्यों हो रहे हो, थोड़ी देर और ठहर जाओ ना। और हाँ, मेरे मुंह दिखला मी।
1: ये लो।
0: कितनी अच्छी है ये माला।
1: अब बोल कहाँ है तेरी भाभी।
2: अरे तारा, कहाँ चली गई?
0: सब भाभी को ही घेर कर बैठी हैं।
1: अच्छा,
0: कोई सुनता ही नहीं। तारा, तारा
2: आई।
0: देख तारा, जरा भैया को ऊपर वाले कमरे का रास्ता दिखा देना, बेचारे थक गए हैं।
2: आइए सामन, ऊपर जाकर विश्राम कीजिए और प्रतीक्षा भी।
1: प्रतीक्षा? प्रतीक्षा किसकी?
2: चंद्रोदय की। आज आपके शयन कक्ष में पूर्ण चंद्र का आगमन जो होने वाला है।
1: ओह, अब समझा, तुम बहुत नटखट हो।
0: आओ भाभी, इधर आओ, यहाँ बैठो। हाँ, ऐसे यहाँ। यहाँ क्या करना होगा मुझे? ये हमारी कुल देवी हैं, सौभाग्य और यश की देवी।
2: अच्छा,
0: नववधु इनसे आशीर्वाद प्राप्त कर ही पति के दर्शन कर सकती है। आज के दिन वधु जो कुछ इनसे मांगती है वो उसे अवश्य मिलता है।
2: अच्छा
0: भाभी, मांगो जो भी इच्छा हो।
2: मैं केवल यही मांगती हूँ कि मेरे पति पर कभी भी किसी भी प्रकार का कलंक न लगे, यश और सौभाग्य की वर्षा होती रहे उन पर।
0: धन्य हो भाभी, तुमने वही मांगा जो मांगना चाहिए था।
2: इसके सिवा और मैं मांग ही क्या सकती थी?
0: भाभी, तुम्हारे ये विचार तुम्हारी सुंदरता में चार चांद लगा देती हैं। और हाँ भाभी, अब रात अधिक हो रही है, हम सब तो आज रथ जगा करेंगी। तुम ऊपर जाओ, आज तुम्हारी मधु यामिनी है ना।
2: ना ना, मैं भी तुम लोगों के साथ रथ जगा करूंगी।
0: रथ जगा तो करोगी ही, पर ऊपर, यहाँ नहीं। भाभी शर्माओ नहीं, ऊपर जाओ। नहीं जाती? अच्छा ठहरू, मैं भैया को बुलाती हूँ, तुम्हें गोद में उठा कर ले जाएंगे। हाँ,
2: अरे अरे,
0: बुलाओ भैया।

0: मैं जाती हूँ।
1: तारा सुन
2: जी।
1: भैया ऊपर के कमरे में ही है ना?
2: जी हाँ, सामंत तो वहाँ पहले से ही हाड़ी रानी की प्रतीक्षा में बैठे हैं।
1: बस अब खूब मजा आएगा।
2: कितना सुंदर कक्ष है ये, पलंग, गुलाब की पंखुड़ियाँ, फूलों के पर्दे और ये तलवार अवश्य मेरे स्वामी की है, और वो चित्र किसका है? ओह स्वामी प्रियतम, कितना तेजस्वी मुख है, आज मेरी चिरसंचित अभिलाषा पूर्ण हुई, अब मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे। जब तुम सामने आओगे तब तो शायद लज्जा के मारे में कुछ बोल भी नहीं।
3: नहीं।
2: कौन?
3: स्वागत है।
2: ओह आप यहाँ?
3: हाँ प्रिय, मैं यहाँ कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, पर ये घूंघट किस लिए? मैंने तो तुम्हारे रूप की एक झलक भर देखी है, हृदय नहीं भरा। अच्छा तो मैं ही इस चंद्रमुख पर से इन घूंघट रूपी बादलों को हटाए देता हूँ। ऐसे
2: ना,
3: हाँ, ना। अब ठीक है, देख रहा हूँ रूप का सागर, विधाता के हाथों खड़ी हुई सौंदर्य की प्रतिमा, पवित्रता और कोमलता की प्रत्यक्ष देवी मीनाक्षी, सुहाग बिंदिया और शशि मुख मोती की नथ, मानो साक्षात भगवती का ही पदार्पण हुआ है मेरे घर में। मेरा अपनापन, मेरा व्यक्तित्व जैसे तुम में विलीन होता जा रहा है। मैं नहीं हूं, मैं और तुम।
2: स्वामी मेरे देवता,
3: सच
2: मैं तुम्हारी पुजारी।
4: सभी प्रजाजनों को सूचित किया जाता है,
3: तुम सच मुगल बादशाह सुंदर हो,
4: नगर की राजकुमारी
3: चंद्रमुखी,
4: और
3: ये चाहता है कि एक तक तुम्हें देखता ही रहूं।
4: नगर के राजा ने
2: स्वामी
4: हमारे महाराणा
2: के पागलपन
4: सहायता
2: की
3: है। तुम कुछ कहती जाओ और मैं सुनता रहूं। मेरी रानी, मैं तुम्हारे सौंदर्य सागर के यौवन रूपी भंवर में फंस गया
2: हूं।
3: कमल के कोमल संपुट में बंद भ्रमर की तरह हैरान हूँ, मुक्त हूँ।
2: सुना आपने?
3: इधर
2: स्वामी।
3: प्रिय
2: छोड़िए, छोड़िए मेरा हाथ।
3: प्रिय मुझसे क्या अपराध हो गया है जो तुम इतनी प्रसन्न हो और अचानक दूर खड़ी हो गई?
2: स्वामी सुनिए नगाड़े की ध्वनि, राजपूत तो इसका मतलब अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए मैं पीछे हट गई।
3: ओह मेरी हाड़ी रानी, मेवाड़ भूमि वीरों से शून्य नहीं है, और फिर मेरे लिए तो राणा जी का विशेष दूत आएगा।
2: जानती हूँ, पर देश की आन पर मर मिटने वाले किसी की प्रतीक्षा नहीं किया करते।
3: प्रियतम मैं
2: प्रियतम
3: मैं
2: मेरी प्रार्थना है कि आप किसी की प्रतीक्षा न करें और तुरंत अपने कर्तव्य का पालन करें।
3: प्रिय जीवन में प्रेम का महत्व किसी भी वस्तु से कम नहीं, कम से कम इस मधु यामिनी को तो बीत जाने दो। विधाता भी कैसा क्रूर है, जीवन के इस मधुर हास्य में कठोरता का अठास और संगीत की मधुर लहरी में ये भयानक चीत्कार जैसा क्षण मेरे ही भाग्य में था। तुम्हें जी भर कर निहार भी न सका, एक बार हृदय से लगा भी न सका, सेज पर सजी हुई गुलाब की पंखुड़ियां भी तुम्हारी प्रतीक्षा में मुरझा जाएंगी।
2: स्वामी यह केवल आपका मोह और वासना है।
3: रानी
2: प्रेम प्रेरणा देता है मोह विचलित करता है।
3: रानी,
2: स्वामी विचलित हो रहे हैं क्योंकि मोह ने प्रेम को बंदी बना रखा है।
3: हाँ रानी, मैं विचलित हो रहा हूँ। मैंने अब तक यौवन के उद्दाम वेग को केवल तलवार की धार पर ही रोक रखा था, पर तुम्हारे रूप और यौवन ने उस वेग को इतना तीव्र कर दिया है कि उसे रोकना असंभव सा हो रहा है। अपने प्राणों को अब तक मैं बर्छों और भालों की नोक पर ही उछालता फिरता था, पर आज जैसी घुटन और उलझन कभी ना हुई थी। क्या करूं?
2: तो ठीक है स्वामी, आप चूड़ियां पहनकर यहां बैठिए और मैं सैनिक वेश में युद्ध भूमि में जाती हूँ।
3: रानी ठहरो,
2: आप इस पुष्पशैया पर बैठकर अपनी घुटन का उपचार करिए, मैं आपकी इस कायरता के पाप का प्रायश्चित करने जाती
3: हूँ। ठहरो रानी,
2: ये हर अंश की तलवार है जिसने हर संकट में हमारी रक्षा की है। मैं जाती हूँ।
3: रानी ठहरो।
2: नहीं
3: रानी, सुनो तुम।
2: नहीं सामन, नहीं, मैं जीते जी अपने आप पर ये कलंक नहीं आने दूंगी कि जब सहस्त्रों युवक एक अबला की सतीत्व रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रहे थे, उस समय सामंत रंग महल में रंगरेलियां मना रहा था। रूप और यौवन की आंधी में सामंत की वीरता एक तिनके की भांति उड़ गई। अपनी प्रियतमा के केश पुष्पों की सुगंध में मधो सामंत तलवारों की खनखनाहट से भयभीत हो गया। नहीं नहीं सामंत, नहीं, मैं आप पर एक कलंक का टीका नहीं सह।
3: रानी शांत हो और जरा यहाँ बैठो।
2: छोड़िए मुझे, मैं ये तलवार लेकर आलमगीर की सेना पर टूट पड़ूंगी। एक राजपूत बालक के लिए मैं अपने प्राणों की बलि दे दूंगी। कोई पूछेगा तो कह दूंगी कि सामंत की वीरता कायरता के बंदी खाने में बड़ी तड़प रही है।
3: नहीं नहीं नहीं, ठहरो रानी, तुम चली जाओगी तो मुझे विदा कौन करेगा?
2: तो फिर शीघ्रता कीजिए स्वामी, आइए मैं आपके भाल पर रक्त तिलक कर दूं। स्वामी विजयी हो और शीघ्र लौटे, यही मेरी शुभकामना है।
3: रण क्षेत्र में भी मैं तुम्हारी मनोहर छवि न भूल सकूंगा। तुम मेरी रग रग में समा गई हो, मैं तुम्हारे इस निर्दोष अछूते और अतृप्त यौवन को देख रहा हूँ। सोचता हूँ यदि मैं जीवित न लौटा
2: ना, ना।
3: तो तुम्हारा ये रूप यौवन
2: ऐसा न कहिए प्रियतम, यदि कहीं कुछ अनहोनी हो गई तो ये दासी स्वर्ग में आपके स्वागत के लिए पहले ही उपस्थित हो जाएगी। आप ऐसे विचार हृदय से निकाल दीजिए और निश्चिंत होकर रणभूमि में जाइए।
3: अच्छा प्रिय, विदा। जय भवानी।
2: जय भवानी। विजय प्राप्त कर शीघ्र आइए, मैं विजय मान लिए आपकी प्रतीक्षा करूंगी। भवानी आपको यह शौर्य दे।
3: सुंदर है हाड़ी रानी, कितनी मस्ती और अल्हड़पन है।

0: किसी को भेजना ठीक होगा। कुछ निशानी भी मांग लाएगा। रण सिंह उपयुक्त है इस कार्य के लिए, उसी को भेजता हूं।
1: रण सिंह का प्रणाम स्वीकार हो रानी जी।
2: कहिए रण सिंह जी, क्या समाचार लाए हैं?
1: महारानी, सामंत बड़े विफल हैं। उन्होंने मुझे आपके पास कुछ सेनानी लाने भेजा है। साथ ही ये संदेश भी दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर जौहर व्रत करने से आप ना हिचके।
2: ओह, अभी तक प्रियतम का मोह नहीं टूटा। एक क्षत्रानी अपनी मान मर्यादा की रक्षा करना अच्छी तरह से जानती है। लीजिए, ये मेरे पितृकुल की तलवार है। निशानी के रूप में उन्हें ये तलवार देकर कहिएगा कि दोनों वंशों की लाज अब उनके हाथ है।
1: जो आज्ञा।
2: तारा, आज 3 दिन हुए, युद्धस्थल का कोई समाचार नहीं मिला।
3: वह रानी जी, जब रणसिंह आते हैं तब आप क्रोधित उठती हैं, और जब युद्ध का कोई समाचार नहीं मिलता तब व्याकुल होकर रोने लगती हैं।
2: तारा, तारा देख तो कोई आ रहा है।
3: रणसिंह जी आए हैं।
1: रानी जी, रणसिंह का प्रणाम स्वीकार हो।
2: रणसिंह, युद्ध भूमि का क्या समाचार है?
1: महारानी जी, युद्ध किसी भी समय आरंभ हो सकता है। सामंत ने मुझे अंतिम बार आपसे कुछ सेनानी मांग लाने को कहा है। उनका शरीर रणभूमि में है पर मन आपके ही पास मंडरा रहा है।
2: रणसिंह, एक अबला के सतीत्व को संकट में देखकर भी सामंत मेरे ही बारे में सोच रहे हैं। इस हाड़जांग की पुतली के मोह में उनकी सारी एकाग्रता नष्ट हो रही है। उनकी इस मानसिक कायरता का कारण मैं हूं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ करना होगा, तो फिर यही ठीक है। रणसिंह, प्रतीक्षा करो, मैं आज तुम्हें अंतिम निशानी दूंगी। ऐसी निशानी जो कभी भी किसी भी पत्नी ने अपने पति को न दी होगी। विजय मार। तारा, तारा
4: आई। आई रानी जी, आपने मुझे बुलाया।
2: हाँ तारा, मेरी प्यारी सखी, तूने मेरी बहुत सेवा की है ना। आज अंतिम बार तेरी सहायता चाहती हूँ।
4: ये क्या कर रही है?
2: तारा, इधर आ, मेरी मांग में सिंदूर भर दे। मेरे केशों को सुगंधित पुष्पों से सजा दे, पैरों में बिछिया पहना और मावर लगा। जल्दी कर, जल्दी कर तारा।
4: रानी जी, रानी जी, मुझे छोड़कर मत जाओ। पगली
2: रोती है, क्षत्रानी होकर रोती है। शिकता कर, रणसिंह मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ला ला सिंदूर ला। अरे, तेरे हाथ कांप रहे हैं, ठीक से मांग तो भर दे। ऐसे दर्पण ला, दर्पण इधर ला। अरे अरे वाह, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। जब मेरा विवाह हुआ था तब सब कहते थे कि बहुत सुंदर लग रही हूँ, पर आज मैं कैसी लग रही हूँ ये तो तू ही बता सकती है। बता, बता ना। अरे फिर रोती है। ला, ला तारा, मेरे विवाह का जोड़ा और मुझे पहना दे। सुन तारा, एक बार तूने ही कहा था ना कि सामंत की विजय माल का सबसे सुंदर पुष्प मैं हूँ। हाँ, आज वही पुष्प बनने में जा रही हूँ। स्वामी के जोड़े करवोलत वक्ष पर ये मेरा शीश रूपी पुष्प खूब खिलेगा।

बाला बहुत विलंब हो रहा है। तारा जल्दी कर, ला कृपाण। ठहरिए रानी जी, मुझे आपके चरण स्पर्श तो कर लेने दीजिए। बस अब समय नहीं है तारा, अब समय नहीं है। मेरा भग्न शेष रण सिंह को दे देना। और कहना कहना रानी ने विजय मार।

0: तारा, तुम रो क्यों रही हो?
1: रण सिंह जी, लीजिए, हाड़ी रानी ने सामन के लिए ये विजय माल भेजी है।
0: ये कैसी विजय माल है जो इस तरह थाली में ढांक कर लाई हो?
1: आप स्वयं देख ले और सामन तक शीघ्र पहुंचा दे।
0: ये क्या, ये रानी के शीश की विजय माल? धन्य हाड़ी रानी, तुम्हारा ये बलिदान युग युग तक भारत के नरनारियों को प्रेरणा देता रहेगा। जाता हूं तारा।
2: अभी तक रण सिंह नहीं आया और इधर आलमगीर अपनी विशाल सेना के साथ आगे बढ़ा आ रहा है। उसे रोकने का कोई उपाय नहीं सूझता। हाड़ी रानी नस नस में बस गई है, क्या करूं?
0: सामंत, क्या मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो सकता हूं?
2: आओ आओ रण सिंह, मैं बड़ी उत्सुकता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। कहो, हाड़ी रानी कुशल से तो है? मेरे लिए कुछ सेनानी दी उन्होंने?
0: हाँ सामंत, रानी जी ने आपके लिए ये विजय माल भेजी है।
2: अच्छा,
0: इसे गले में पहनकर आप झूम पड़ेंगे।
2: सच?
0: और जो भी इस अनोखी विजय माल को देखेगा वो अपने प्राणों की बाजी लगा देगा। इस विजय माल के साथ ही हाड़ी रानी ने एक निवेदन भी किया है।
2: वो क्या?
0: कि इस युद्ध में हम सब का एक ही नारा हो और एक ही लक्ष्य हो, विजय या मृत्यु।
2: हमें सब स्वीकार है, पर सेनानी तो दिखाओ।
0: आगे बढ़िए सामंत, और इस ढके हुए थाल को स्वयं खोलकर रानी की दी हुई इस निशानी से अपने वक्ष स्थल को सुशोभित कीजिए।
2: रणसिंह, ये क्या लाए हो?
3: हमारी रानी का भग्न शीश, ये क्या किया तुमने रणसिंह?
0: मैंने नहीं, आपने ही ये किया। रानी के मोह में अंधे होकर आपने मुझे बार बार सेनानी लाने को भेजा। रानी आपकी दुविधा को पहचान गई और आप पर कोई कलंक न लगे।
3: मैं समझ गया, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं ही दोषी हूँ। सचमुच मेरा पतन हो गया था, रानी ने मुझे बचा लिया।
2: हाड़ी रानी, तुम साक्षात भवानी थी, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, नहीं पहचाना। इन लहराते हुए सुंदर केशों की माला बनाकर मेरे गले में पहना दो रण सिंह। मेरी प्रियतमा का शीश मेरी छाती पर लटकने दो। मेरे मृत शरीर को रानी के साथ एक ही चिता पर रखकर भस्म कर देना। अब मेरी आंखों पर से मोह का आवरण हट गया है। भूखे सिंह की तरह हम अपने शत्रुओं पर टूट पड़ेंगे। साथियों, आगे बढ़ो, विजय हमारी है।

0: बादशाह की सेना उल्टे पैर फाग दे।
1: सच रणसिंह, तुम विजयी हुए?
0: हाँ सामंत, सच। मुगल बादशाह भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, शायद वो भी रणभूमि छोड़कर भाग निकला। सामंत,
1: शत्रु भाग गया। जय भवानी, हम विजयी हुए, हम विजयी हुए। मैं चाहता हूँ मेरी प्रियतमा मेरी प्रतीक्षा में होगी।
2: मैं चाहता हूँ सामंत, आप कहाँ जाने जा रहे हैं? सामंत ठहरिए, ठहरिए सामंत।
1: रानी, सुना तुमने? हम विजयी होकर आ गए, हम लौट कर आ गए। आओ हमारा स्वागत करो, टीका लगाओ, आरती उतारो। रानी शीघ्र आओ। तारा, ओ तारा।
3: जी सामंत।
1: रानी जी कहाँ हैं? उनसे कहो कि हम विजयी होकर आ गए हैं, विजय माल लेकर जल्दी आए।
3: सामंत, रानी जी की विजय माल तो आपके गले में पहले से ही सुशोभित है।
1: हाँ, रानी, मेरी हाई रानी, मेरी विजय माल।

विजय माल। अभी आपने रवि शर्मा लिखित ये नाटक सुना, प्रस्तुतकर्ता बी डी माथुर।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज विविध भारती के स्टूडियो में एक युवा अभिनेता हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि युवा अभिनेता, लेखक, गायक और संगीतकार देवेंद्र अहिरवार। बहुत स्वागत देवेंद्र।
3: बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।
2: देवेंद्र, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी जो पहचान बनी है वो 120 बहादुर से बनी है।
3: जी जी।
2: ये फिल्म आपको कैसे मिली थी?
3: ये फिल्म के पहले एक बहुत लंबी कहानी है। इस पहचान तो ऐसे नहीं है कि इस फिल्म से बनी है, क्योंकि मैं लगातार थिएटर कर रहा था। लगभग 15-20 सालों से मैंने काम किया है। मैं काफी छोटा तब से काम कर रहा हूँ और एक ऐसे बोल सकते हैं कि एक बहुत एक बड़ी ऑडियंस को जानने का मौका मिला कि
2: Correct.
3: इस नाम का कोई बंदा है कुछ काम करता है। तो ये फिल्म मुझे जैसे सबको मिलती है, क्योंकि हम बाहर के लोग हैं तो ऑडिशन से ही मिलती है। सो मैं ऐसे म्यूजिक में हूँ, मेरा गाने गाने का काम है, या मैं एक्टिंग करता हूँ या नाटक बनाता हूँ। तो कास्टिंग डायरेक्टर जो अनमोल आहूजा है, उनको मालूम था कि मैं गाना गाता हूँ। तो एक कैरेक्टर था 120 बहादुर के लिए, ऑडिशन हुआ कि एक गाना गाने वाला लड़का चाहिए। तो उन्होंने मुझे ऑडिशन लिया, पर वो उस कैरेक्टर के लिए मैं बाद में फिट नहीं बैठा, मेरा लुक नहीं जा रहा था और मेरा काम, मेरा ऑडिशन अच्छा हुआ था। तो उनको लगा कि इसको हम फिल्म में इस वाले कैरेक्टर के लिए नहीं रख सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे एक दूसरे कैरेक्टर के लिए टेस्ट किया जिसका नाम था बैंगन। तो उस बैंगन कैरेक्टर के लिए फिर मैं फाइनल हुआ। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, खासकर बुंदेलखंड के पूरे एरिया ने, मध्य प्रदेश के पूरे एरिया ने और पूरे देश के लोगों ने फिर बहुत ज़्यादा प्यार दिया और मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ।
2: बिल्कुल, लेकिन आपकी यात्रा यहाँ से शुरू नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि सीधे चलते हैं बुंदेलखंड की तरफ। आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका बचपन कैसा था और अपने माता पिता के बारे में बताएं।
3: जी जी। सो मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरे गाँव का नाम है पहरा।
2: क्या बात।
3: सो मैं बहुत छोटा था तब मैंने एक रेडियो पे गाना सुना था कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, इश्क और भी गहरा हुआ है। तो मैं काफी छोटा था और मैं सोचता था मेरे गांव का नाम फिल्मों में आता है। मेरे गांव के नाम पे गाने बने हुए हैं। हाँ। तो तभी मैंने सोचा था कि मैं, बच्चे के दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो मैं फिल्मों में जाऊंगा।
2: अरे
3: और मुझे पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है, सच में ऐसा होने वाला है। तो एक ऐसी छोटी सी कहानी है, और मैं रेडियो लगातार सुनता था, विविध भारती लगातार सुनता था, छतरपुर आकाशवाणी मैं बहुत सुनता था, हेलो फरमाइश में सुनता था, रेडियो मेरे साथ ही रहता था, मेरा दोस्त हुआ करता था एक तरीके से, क्योंकि मेरे पापा भी गाना गाते थे तो उनको भी शौक था। देशर पटरिया के गाना, उर्मिला पांडे जी के गाने और भी बहुत सारे लोगों के गाने मैं सुनता था। तो ऐसा एक जीवन बीता और मेरे घर के बाहर एक चबूतरा था। चबूतरे पे शाम को लोग अपने खेतों पे खाना खाने के पहले, डिनर करने के पहले वहाँ पे बैठते थे और फिर वो वहाँ पे कुछ गाने गाते थे 1-2 घंटे और फिर अपने खेतों पे जाते थे सोने के लिए कि जानवर उनके खेतों में ना घुसवाए। सो पूरा किसान परिवार, एक छोटी सी बस्ती मैं, आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। सो उन लोगों में मैं और मेरा भाई लखन भी, दो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे जो बैठते थे और कई दफ़ा लोग हमसे इरिटेट भी होते थे कि बच्चे बहुत ज़्यादा बैठते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते नहीं हैं। तो फिर क्या हुआ कि मंडली ने सोचा कि इस मंडली को थोड़ा बड़ा करते हैं। तो उस समय ऐसा होता था कि कोई गलत करता था तो उससे वो लगाते थे, जुर्माना लगाते थे।
2: अच्छा अच्छा।
3: तो ऐसा करके होता, तो किसी ने कुछ गलत किया होगा तो उन्होंने कुछ पैसा दिया, 8-10 हज़ार रुपए उधर से आए। तो उन्होंने सोचा इस पैसे का क्या करें। हाँ। तो उन्होंने सोचा अब हारमोनियम ले लेते हैं।
2: अरे वाह वाह।
3: तो उन्होंने हारमोनियम ले लिया, पर हारमोनियम बजाना तो किसी को नहीं आता था, तो अब बड़ा असमंजस हो गया। तो रात को बैठते थे पर हारमोनियम रहता था, बजा तो कोई नहीं था। तो फिर वो हमारा घर जस्ट बगल में था तो हमारे घर में रखते थे वो हारमोनियम। तो मैं और मेरा भाई स्कूल से आके हम 2-3 घंटे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। वो ढोलक बजाता था, मैं हारमोनियम बजाता था और ऐसे बजाते बजाते बजाते बजाते सडनली थोड़ा थोड़ा गाने के आसपास में दिखने लग गया लोगों को कि गाने के आसपास से, गाने के आसपास है, कोई भी गाना गाता है तो उसके आसपास ही बजा लेता है। तो ऐसे करके मैं उस पहला जो मेरा ग्रुप था, जो मेरा पहला परफॉर्मेंस था, वो गांव के जो फोक आर्टिस्ट हैं, जो मंडली है जिनमें मेरे पिताजी
2: चबूतरे में हुआ,
3: चबूतरे पे ही मैंने उसको एकदम से ऐसे शुरू किया और फिर स्कूल में गाने गाने शुरू किए। सो मैं ये बोलूंगा मेरे पिताजी भी किसान है, मेरी माँ भी किसान है और मैं बहुत ही प्राउडली ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। जिस तरह से हम प्राउडली बोल पाते हैं ना कि हम फौजी खानदान से हैं, ऐसे जय जवान जय किसान वाले जो पूरी बात है अगर हम उन साथ में बोले तो हम बहुत सारे लोगों को एक क्राइसिस रहता है कि बोलने में कि हम किसान परिवार से, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं किसान परिवार का एक लड़का हूँ।
2: कितनी दूर है छतरपुर से ये गाँव?
3: छतरपुर से 24 किलोमीटर दूर है, ये बसारी पन्ना रोड पे पड़ता है, तो बसारी के आगे है पहरा। बहुत ही छोटा सा गाँव है सर। बहुत
2: कितनी क्लास तक वहाँ पढ़े आप?
3: मैं वहाँ पे पढ़ा 8वीं क्लास तक, उसके बाद मैं 12वीं तक पढ़ा बसारी में। बसारी में पढ़ते हुए एक फिल्म आई थी उस समय जिसका नाम था जीजाओरे, बुंदेली फिल्म थी। उसमें एक एक्टर थे हिमालय यादव जो उसी गांव के थे, तो वो लाइक वो बहुत पॉपुलर हो गए थे उस फिल्म से। उस फिल्म को बहुत प्यार मिला, हर घर में सीडी हुआ करती थी उस समय तक, जीजाओरे की सीडी, झूमो नाचो गाओ रे, खुशियां मनाओ रे, पता नहीं आओ रे भैया जी जाओ रे, ऐसा कुछ गाना था उसका, टाइटल सॉन्ग था उसका।
2: अच्छा, जब ये सब बातें हो रही हैं तो मुझे ये भी लग रहा है कि वो जो चबूतरे पर गाने होते थे उसमें से कोई गाना याद है?
3: उसपे ऐसे कुछ भी गम्मतें होती थी, गाने होते थे, लाइक फागे होती थी। तो उसी तरह से कि कहा ले आए राजा पहाड़िया मेरे, कहा ले आए,

0: उपटा लगे तुंगरिये, क्या बात है,
1: कहा ले आए राजा कुमारिया में,
0: मतलब बुंदेलखंड
1: लाइक कोई लव मैरिज करके किसी को डिफिकल्ट शहर में ले जाए। ये गाना मतलब इनडायरेक्ट रूप से वैसा है।

0: कहा ले आए। सो वही है, लाइक मैं किसी लड़की को प्रॉमिस करूं कि मैं तो बंबई रहता हूं और फिर मैं वहां छोटे से कमरे में रख दूं, तो उसी सिचुएशन को एक अलग तरीके से कवि बुंदेली बुंदेलखंड के जो लोग हैं, जो
1: हाँ
0: लोग कवि हैं, लोग गायक हैं, वो कैसे उसको कैप्चर करते हैं और कैसे उसको करते हैं,
1: तो
0: तो
1: मजा आ गया मुझे
0: बहुत
1: सुन
0: ही मजा आ गया। वो तो बहुत
1: के
0: मजा आ गया। तो
1: तो।
0: यही था फिर बुंदेली। फिर जब बसारी में पढ़ता था, हिमालय भैया से मिलना हुआ, हिमालय यादव जी से मिलना हुआ, उस समय बसारी में एक फेस्टिवल होने लग गया था, उसका नाम था बुंदेली उत्सव।
1: हाँ
0: तो बुंदेली उत्सव बहुत बड़ा फेस्टिवल होता, फरवरी में लगभग 1 महीना 21 दिन चलता था वो।
1: अच्छा
0: और उस समय तो क्योंकि जो वो कराते थे शंकर प्रताप सिंह बुंदेला जी, मुन्ना राजा जी कराते थे उसको, तो पूरे MP के फोक आर्टिस्ट सेलिब्रिटी आते थे उधर। तो वो पहली बार मैंने एक नाटक किया उस ग्रुप में जुड़ के, हिमालय भैया के ग्रुप में जुड़ के, और नाटक का नाम था ददुआ भाव दिल्ली में बर्बाद।
1: अरे
0: और
1: बाप
0: मैं नाइन्थ
1: रे,
0: क्लास में पढ़ता था उस समय।
1: ठीक है।
0: उस नाटक में मैं रेल का डिब्बा बना था, हम वो छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे, हमारे
1: हाँ
0: छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे,
1: तो
0: लाइक
1: बुंदेली में था ये।
0: हाँ बुंदेली में नाटक था। अब मुझे कोई भी डायलॉग याद नहीं है, क्योंकि मैं एक तो पहला नाटक था मेरा, तो उस ग्रुप से जुड़ गया और फिर मुझे बहुत मजा आया। और मैंने अभी आपसे बात भी किया, इस तरह का जो जो मुझे वो सर्कल में बैठते थे लोग, एक दूसरे की आंखों में बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, उस तरह का एक भाव मुझे लगता था। तो मुझे पता चला कि मैं शायद इस फील्ड में ही जाना चाहता हूँ।
1: वाह।
0: तो फिर ऐसी शुरू हुआ सर, मैं जल्दी से इसको वो कर लेता हूँ कि खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई। खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, हमारे घर के पास ही है खजुराहो, 30 किलोमीटर दूरी है। सो खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई, राष्ट्रीय नाट विद्यालय NSD की एक वर्कशॉप थी, और उसको डायरेक्ट करने आए थे इश्तियाक आरिफ खान, जो कि काफ़ी
1: ओ
0: बड़े
1: वो तो
0: एक्टर हैं,
1: पन्ना के ही
0: जो
1: है।
0: पन्ना के ही हैं। तो
1: हाँ
0: वो NSD से पास होने के बाद वो वर्कशॉप के लिए आए थे। हमको पूछा गया कि खजुराहो में वर्कशॉप हो रही है, तो खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई खजुराहो, अंग्रेज आते हैं, गोरे, 5-स्टार होटल, तो हमें उधर पहुंचना है कुछ भी करके। तो घर में बोला कि एक वर्कशॉप हो रही है, तो उनने बोला क्या क्या चाहिए पड़ेगा, तो हमने बोला कि उन्होंने बोला 2-2 किलो चावल लेके चलना है, 1 किलो दाल लेके चल रही है, थोड़ा नमक लेके चलते हैं, हल्दी मिर्ची लेके चल रही है, क्योंकि वहाँ पे 1 महीने रहना है।
1: हाँ
0: तो शिल्प ग्राम में एक वर्कशॉप हो रही थी और उसमें हमने काम किया, और वो एक नाटक उन्होंने कराया इश्तियाक जी ने, इन्हें कहीं देखा है,
1: अरे
0: इन्हें कहीं
1: वाह,
0: देखा है। तो एक ऐसे कैरेक्टर जिनको हमने कहीं ना कहीं देखा है, उसका नाटक उन्होंने बनाया था, और वो नाटक बहुत अच्छा बना, और मैं बहुत इंप्रेस हुआ कि इतने छोटे से हैं वो, क्यूट से हैं, और उन्होंने इतने 20-25 लोगों को, पूरे देश के लोगों को एक नाटक में पिरो दिया, और इतना अच्छा काम निकल के
1: और
0: आया।
1: इश्तियाक भाई की एक खासियत और है कि वो बहुत म्यूजिकल आदमी है।
0: हाँ, और म्यूजिकल प्ले था वो, और म्यूजिक में मेरा रुझान भी था, तो वो भी मेरे से काफी खुश थे। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी हो जाए, उनसे पूछा कि सर आपने मैं मुझे ये करना है या मैं कहाँ सीखूं, तो उन्होंने बोला था कि मैं NSD से पढ़ा हुआ हूँ, तुम भी NSD जाओ अगर तुम्हें करना है। तो फिर मैंने तब लिख लिया था डायरी में कि मुझे कुछ भी करके NSD पहुंचना है।
1: डायरी में लिख गया।
0: हाँ, तो मैं लिख
1: अरे
0: लिया कि
1: क्या
0: अब भी
1: बात
0: मुझे
1: है।
0: पहुंचना है NSD। तो फिर वहां
1: अभी
0: से
1: आगे की कहानी थोड़ा आगे सुनाएंगे।
0: जी जी
1: यहां एक फिल्मी गाने की जगह बनाते हैं।
0: हाँ जी जी
1: तो जिस दौर में हम हैं, जिस दौर में आप ये सब कर रहे थे कि आप वो बड़े गांव में गए और उसके बाद खजुराहो हो गए, उस दौर का कोई गाना याद आता हो तो वो गाना यहां बजाया जाए।
0: एक फिल्म थी वो शोला और शबनम, गाना
1: गुड।

0: फिर म्यूजिक आता, जो आप कह रहे थे ना, ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए
1: क्या बात है।
0: ओए। तो ये कुछ कुछ गाने जो ऐसे उस समय के याद है मुझे,
1: बिल्कुल वो एक जहन में बसे होते हैं और ये उस दौर की याद लेके
0: जी जी जी हमने बहुत देखा है फिल्म को।
1: वाह,
0: बहुत देखा है फिल्म को हम। मैं तो करण अर्जुन बहुत देखी, ये देखा, पता नहीं मिथुन की फिल्में देखी, टड़ी पार जैसी फिल्में देखी, जो भी सीडी पे जो भी मिलता था देखते थे, जो भी मिलता था देखते, वो हमारे लिए बेस्ट फिल्म होती थी।
1: वाह, ये गाना सुनते हैं।

0: देवेंद्र, आपसे बातें हो रही हैं और हम तकरीबन 90s के जमाने में हैं और ये वो दौर है जब आप एक नाटक करते हैं बुंदेलखंड फेस्टिवल में और फिर इश्तियाक आरिफ खान साहब से आपका परिचय होता है जो तब तक एनएसडी में हैं और तब तक बंबई आके उन्होंने अपने जलवे नहीं दिखाए और वो एक शिविर लगाते हैं और वहां से आपको एक राह दिखती है।
1: जी, जी।
0: एक लड़का जो पहरा गांव का है और जिसको बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा जिसका परिचय नहीं है उसका परिचय इन सब चीजों से होता है और वो अपनी डायरी में लिख लेता है कि मुझे कैसे भी करके
1: यहाँ पहुंचना है।
0: उसके आगे क्या होता है?
1: उसके आगे मैं फिर स्कूल के बाद कॉलेज में पहुंचता हूँ तो अब मुझे तो कोई लोग चाहिए कि भाई ये काम करने वाले लोग कहाँ हैं, अभी मुझे 3-4 साल और पढ़ना पड़ेगा है ना, तब जाके मैं वहां पे जाऊंगा। क्योंकि मैं वर्कशॉप के निकलने के बाद मैं दिल्ली आया घूमने के लिए कि मुझे पहले वो जगह देखनी है जहां मुझे पढ़ना है।
0: तो मंडी हाउस चले गए।
1: मैं पहले किसी दोस्त के साथ जो किसी बस्ती में रहता था, मजदूर फैमिली का, मजदूरी करने जाते थे उनके पिता जी, तो मैं उस दोस्त के साथ दिल्ली आया और दिल्ली में ढूंढते ढांढते उस बच्चे के साथ में, और मैं खुद बच्चा हूँ अभी, मैं 9th-10th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं एनएसडी की तरफ बढ़ते बढ़ते मैं वहां पहुंचा। उस समय मेट्रो बन रही थी और मैंने पहली बार देखा कि वो ऐसी सीढ़ी है जिसपे पैर रखते अपने आप ऊपर पहुंचा देती है। मेरे लिए बड़ा चमत्कार था। मैं घर जाके लोगों को बता रहा हूँ कि भाई ऐसी सीढ़ी बन चुकी है धरती पे कि आपको चढ़ना नहीं पड़ता, आप अपने आप ऊपर पहुंच जाओगे। और मैं ऐसे हो गया। फिर मैं एनएसडी के गेट पे पहुंचा और मैं एनएसडी मैंने देखा कि ये लिखा है राष्ट्रीय नाट विद्यालय, मतलब ये वो जगह है। और मैंने वहां से निकलते हुए लड़के लड़कियों को देखा और वो बहुत ही फ्रेंडली है, किसी ने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है, कोई डायलॉग पहन रहा है, कोई कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहा है। और मैं देखा कि भाई ये तो अलग दुनिया है, ये तो कमाल की दुनिया है। तो मैं गेट में घुसने को हुआ तो एक उस समय एक गार्ड हुआ करते थे, उनका नाम था धुरंधर जी, रिटायर्ड फौजी थे वो
0: जी।
1: तो मैं घुसने लगा, उन्होंने बोला क्या हुआ, मैंने बोला कि मेरे को यहाँ पढ़ना है। बोले कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैंने कि मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। तो कह रहे यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने कहा अब तो मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा यार। तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। तो उन्होंने बोला कह रहे ऐसे बहुत लोग आते हैं बोलने के लिए, पहले अभी 10th क्लास में पढ़ता है, अभी तू ग्रेजुएशन करेगा फिर तेरा मन बदल जाएगा, पता चला कुछ हो जाएगा, तू नौकरी लग जाएगी तो तू नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं नहीं सर मैं आऊंगा। मैंने बोला कि मैं आऊंगा, मुझे आना ही है इधर। तो मेरे पास उस समय नोकिया 2626 फोन हुआ करता था।
0: हाँ, वो छोटा वाला
1: फोन। तो उसमें 1 मिनट की रिकॉर्डिंग होती थी।
0: हाँ।
1: तो मैंने उनसे बोला कि मुझे क्या क्या करके आना है,
0: बस रिकॉर्ड
1: कर दो, 1 मिनट ही मेरे पास में, इससे ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास में।
0: हाँ।
1: तो उन्होंने मुझे बताया कि 6 नाटक चाहिए जिसमें तूने एक्टिंग की हो, बैकस्टेज किया हो, 3 बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया होना चाहिए जिनके लेटर्स लिखा होगे, जिनमें लिखा होगा कि वो तुमको जानते हैं, तुमने उनके साथ काम किया है और वो तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहे हैं।
0: अरे गजब।
1: और तुम अनुशासित हो।
0: 1 मिनट में
1: सब बता दिया, ये करके आना पड़ेगा तब तुम फॉर्म डाल सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग लेके, मैं रोज सुनता था मुझे ये करना है। मैं वापस आया, मैंने अपनी पढ़ाई की, कॉलेज गया। फिर मैंने सोचा यार यहाँ पे कोई नाटक ही नहीं करता उस तरह से, तो मैं ही नाटक करूंगा।
0: तो मैं कॉलेज में, इस शहर में था
1: ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में महाराजा कॉलेज, तो वहां पे मैंने एक ग्रुप बना दिया और छोटे मोटे नाटक करने लगा, यूथ फेस्टिवल में नाटक करने लगा। और पता चला कि छतरपुर में कोई इफ्टा नाम का एक संस्था है जो एक्टिव है, जो उस समय शिविन शुक्ला जी चला रहे थे, अभी भी वही संभालते हैं उसको। तो उनसे जुड़ गया, फिर उनने जो भी नाटक कराया उनमें नाटक करने लग गए, बकरी नाटक किया, सर्वेश्वर सत्यनाग नाटक किया और भी नाटक जो भी वो कराते थे उससे जुड़ गए। और वो रिकॉर्डिंग सुनता रहता था कि ये तो करना ही भाई, अभी एक नाटक हुआ है, वो नाटक हुआ। फिर ये भी सोचता था कि जिस लेवल के हम नाटक कर रहे हैं इस लेवल के नाटक के उसमें काउंट होंगे, हम तो कुछ भी कर देते हैं,
0: बिल्कुल
1: कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कहीं बोल दिया ये इम्प्रोवाइज करके कर दिया, बुंदेली में कुछ भी बोल दिया कर दिया। तो फिर सोचा ग्रेजुएशन के दौरान कि भाई ऐसे चलेगा नहीं, भोपाल निकलना पड़ेगा।
0: अच्छा,
1: कुछ भी करके अब इस जगह से निकलना पड़ेगा। अब भोपाल जाने के लिए किसी से मिलना पड़ेगा, आपको कोई जानता हो? आपको कोई भी नहीं जानता सर, एक बंदा नहीं है जिससे थिएटर आया आर्ट फील्ड से जिससे भोपाल में किसी को जानता हो। तो एक उसी जो वर्कशॉप हुई थी इश्ताक जी वाली, उसमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे हरीश भैया, हरीश विश्वकर्मा उनका नाम था, उन्होंने एक नंबर दिया कि हेमंत देवलेकर नाम के एक बंदे हैं, हेमंत भाई
0: बिल्कुल
1: आप जानते होंगे, बहुत बड़े कवि हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल, विहान ग्रुप,
1: हाँ विहान ग्रुप अभी वो चलाते हैं, कि एक मेंबर हैं वो, और उनका नंबर दिया उन्होंने और उन्होंने बोला कि ये तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि यही सज्जन पुरुष हैं। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने उनको फोन करता था, वो मैं पागल कर देता भैया मुझे यहाँ से निकलना है, प्लीज मुझे निकलना है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है तुम आ जाओ, और मैं एक डायरेक्टर है अलख नंदन सिन्हा जी, मैं अलख दादा से उनसे मिलवा दूंगा, पर वो तुम्हें रखेंगे नहीं रखेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर मैंने एक समय ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद मैं एमए के लिए मैंने अप्लाई किया था और मैं भोपाल की बस में बैठ गया रात को। शादियों का सीजन था, बहुत बहुत ढोल बज रहे थे, बस निकल नहीं पा रही थी शहर से, और मैं बस में बैठा हूं और मेरे घुटने कांप रहे हैं और मैं सोच रहा हूं कि मैं एक बंदे का नंबर जान है सिर्फ मेरा, उसकी शक्ल भी नहीं देखी और वो किस तरह के होंगे, किस तरह का व्यवहार होगा उनको, और मैं उस शहर में किसी को जानता नहीं हूं और मैं वैसे ही जा रहा हूं, मेरे घुटने कांप रहे हैं और बारात की वजह से बस धीरे धीरे चल रही है। मैं सोच रहा हूं कहीं ये भगवान का संकेत तो नहीं है कि अभी मौका उतर ले, है ना। और मैं फिर बस से नहीं उतरा और मैं पहुंच गया उधर 5 बजे मॉर्निंग में, और मैं 5 बजे से उनको फोन कर रहा हूँ। अभी 5 बजे कोई कोई फोन उठाएगा?
0: बिल्कुल।
1: वो तो उठे, जब उठे 10 बजे उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला कि वो रोशनपुरा चौराहे पे 12 बजे मिलेंगे। मैंने कहा 12 बजे तक मैं क्या करूंगा, मैं जाके कहीं, मैंने कुछ पोहा हुआ खाया, नाश्ता वास्ता किया, और मैं डिवाइडर पे खड़ा हुआ 2 घंटे के लिए। मैंने कहा, मैं उनको बोल दिया कि मैं बीच डिवाइडर पे खड़ा रहूंगा भैया, ऐसा ना हो कि मेरा फोन बंद हो जाए या आपका फोन कुछ बंद हो जाए, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो मैं डिवाइडर पे खड़ा रहा, और फिर एक बंदा
0: रोशनपुरा चौराहे पर,
1: हाँ, एक बंदा शरीफ सा बंदा, एक हाथ में झोला लेके एक बंदा मेरे पास आए, और मैं वो उनको देखा मैंने कि मेरे को भगवान आ गए मेरे लिए, ये मेरे को रास्ता दिलाएंगे, ये एक पहला इंसान है जो मुझे कहीं पहुंचाएगा, और वो मुझे मिले, मैंने उनको देखा, और मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैंने उनके पैर छूए, उन्होंने बोले कि पैर वैर नहीं छूते। मैंने बोले हमारे यहाँ तो बड़े बड़ों के पैर छूते हैं। उन्होंने बोले नहीं नहीं पैर नहीं छूते, क्योंकि लोग अजीब के होते हैं। तो उन्होंने मुझे समझाया, और कट्टू फिर वो मुझे एक डायरेक्टर के घर में ले गए, अलग दादा के घर में, और हम बैठे हुए हैं, और 1 घंटा हो गया।
0: पहले हेमंत आया,
1: हेमंत दादा आए पहले, और अच्छा। उन्होंने बोला कि मेरा तो कोई ग्रुप नहीं है भाई, मैं किसी ग्रुप में काम करता हूँ, मैं डायरेक्टर को मिलवा दूंगा, और क्योंकि उनका ग्रुप का नाम नटबुंदी ले, और तुम बुंदेलखंड से हो तो हो सकता है तुम्हें रख ले, और तुमने बोला तुम गाने गाना गाते हो तो हो सकता है तुम्हें म्यूजिक बंदों को रख ले। और मैं अतरंगीता सर, बेल बॉटम पैंट पहना हुआ है, लाल पीली कलर की शर्ट पहने हुए, बाल मेरे तेरे नाम जैसे हैं, बड़े बड़े मैंने बाल रखे हुए थे। तो मैं वहां पहुंचा, लगता कि उधर रहते थे प्रोफेसर कॉलोनी में, तो उनके घर के बाहर हम बैठे हुए हैं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, बैठे बैठे पानी आया, चाय आई, हम पी के बैठे हुए हैं, और मैं पूछूं कि क्या हुआ, तो बोले कि दादा कुछ पढ़ रहे हैं। और मैं सोचूं कि ऐसी क्या पढ़ाई है कि लोग घर में आके बैठे हैं, बंदा पढ़ ही रहा है, आ ही नहीं रहा है। फिर मुझे पता चला कि लोग इतने डिसिप्लिन होते हैं कि अपना पूरा काम करके आएंगे, वो उन्हें बैठना है तो बैठो। फिर अलग दादा एक आए, अंदर से एक बूढ़ा सा आदमी आया, और उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला कि कौन है ये, उन्होंने बोला किसको लेके आ गए, कौन है, मेरी शक्ल देख के। अरे मैंने कहा सर मैं देवेंद्र हिरवार, और मैंने बहुत नाटक किए हैं छतरपुर में, मेरा बहुत नाम है, मेरे कॉलेज में पूरे लोग जानते हैं, आपके ग्रुप को मैं बहुत बढ़िया कर दूंगा सर। मैं बहुत कॉन्फिडेंस था, मेरे को ये ताकत लगा रहा था, क्योंकि मैं डरा हुआ भी था, तो मुझे और ताकत लगा, मरता हुआ आदमी और हाथ पे चलाता है, तो मैं हाथ पे चला रहा था। उनने बोला भाई इससे हो ही नहीं पाएगा, उनको देखे, इसको भगाओ, इससे हो नहीं पाएगा। तो मैंने बोला सर ये ऑप्शन ही नहीं है, मैं जा ही नहीं सकता, मुझे कहीं जाना है और मैं उसके लिए आया हूँ, मैं जा ही नहीं सकता, लौट नहीं सकता मैं। तो फिर उन्होंने मेरी जिद देखी, उन्होंने बोला कि यार ये लड़का पता नहीं, उन्होंने बोला कि देखो ऐसे लड़के जो घर से पैसे मांगते हैं उनको हम अपने ग्रुप में रखते नहीं है, और हम अपने ग्रुप में तुरंत जुड़े हुए नए बंदे को पैसे देते भी नहीं है, तो तुम क्या करोगे? मैं सर कुछ भी करूंगा, मैं आप मुझे बोलो मैं कुछ भी करूंगा, आपकी रिहर्सल स्पेस साफ कर दूंगा, आपको कुछ भी कर दूंगा मैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो हम तुमको रहने के लिए बस व्यवस्था कर सकते हैं, आपको बाकी चीजें आप खुद से देखनी पड़ेंगी। तो जिस रिपेटरी कंपनी में उनका सामान रहता था, हाथा एक जगह थी श्यामला हिल्स पे, उसमें मैं, हेमंत देवलेकर भैया और एक और जितेंद्र भाई एक थे जो कि पत्रकार थे, वो रहते थे। तो ये लोगों के साथ रहना हुआ मेरा पहली बार, और ये पढ़ने लिखने वाले लोग थे, भोपाल के साहित्य के लोग आते थे उस कमरे में, वहां पे एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी, और उनके साथ रहना, कविताएं सुनना, हेमंत भैया को सुनना, और फिर मैं हिम्मत करके मैंने बोला कि भैया एक बार मैंने बोला कि मैं भी लिखता हूँ। तो उनने बोला कि अच्छा अच्छा, तो एक महफिल थी, मैंने हिम्मत करके बोल दिया, उन्होंने बोला कि क्या क्या लिखा, तो तुम चाहो तो पढ़ सकते हो देवेंद्र, क्योंकि बहुत ही प्यारे काइंड थे, और मुझे लगा कि सच में वो मेरे लिए भगवान जैसे ही हैं, अभी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने एक बुंदेली कविता लिखी थी जो कि मेरी एक तरीके से पहली कविता थी, और मैंने उनको फिर सुनाई, उस महफिल में सुनाई पहली बार। मैं इधर सुना दूं आपको?
0: जरूर।
1: तो कविता बुंदेली में ही है कि दद्दा मोखा मेला जाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने, ऊंचे ऊंचे गड़े हिड़ोरा बिचरी खूब बराई, और मेला में मिल जे है दद्दा मोखा मम्मा माई, वो पुत्रा और पुतनिया हल्के कक्का से लेबुआने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने, घूमत घूमत जो दद्दा मोखा मौसी मिल जे है, कैया लेके बड़े प्यार से हल्के मुन्ना के है, मोखा अपने मौसिया से गुब्बारो लेबुआने,
0: वाह वाह,
1: मोखा अपने मौसिया से गुब्बारो लेबुआने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने,
0: क्या बात है।
1: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, ये उसके दोस्त हैं,
0: बिल्कुल,
1: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, जिनके संगे बड़ी रहान में खेलो गिल्ली डंडा, जो मेलाना जा पाहो उनखा आके तिनगाने,
0: वाह वाह,
1: आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने,
0: वाह वाह।
1: आखिरी बंद है कि दद्दा धीरे से मुस्काए ढीले दोई बेला, और नए तंगड़िया बंठन के गए दोई घूमबे मेला, फिर मेला में फिर दद्दा ने गड़गड़िया लेवाई, और कंधे पे बैठा के पूरा मेला दो घुमाई, कहते हैं देवेंद्र जे बचपन हमें भूल नहीं पाने और आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया हिलाने रद्दा मुखा मेला जाए।
0: कहते हैं देवेंद्र
1: के बचपन उस समय ये बुंदेलखंड की कभी गानों में कभी जो राइटर होता था उसका नाम छाप बोलते थे उसे, छाप है तो छाप लगा के ही मैंने पहली कविता लिखी थी, मेरी बुंदेली कविता थी। और वहां से ही मेरा साहित्य के बारे में शेक्सपियर पढ़ना शुरू किया, ब्रेक्ट पढ़ना शुरू किया, चेखव पढ़ना शुरू किया, मोहन राकेश पढ़ना शुरू किया, गिरीश कर्नाड पढ़ना शुरू किया, विजय तेंदुलकर पढ़ना शुरू किया, बादल सरकार पढ़ना, तो वो साहित्य से जुड़ना शुरू हुआ।
0: उस समय खर्च निकालने के लिए क्या करते थे आप?
1: खर्च तो मेरा कुछ था ही नहीं, मैं तो आटा तो मैं घर से ले गया था और 10 रुपए का 5 रुपए का नमकीन का एक पैकेट आता है, भुजिया वो ले ली और रोटी बना के और रोटी में घी लगा के, घी और ये दोनों चीजें घर से ले गया था और रोल बना के उसमें नमकीन डालता था और उसको ऐसे खाता था। खर्च कुछ था ही नहीं,
0: बस खाना हो गया,
1: खाना हो गया। और वहां से रिहर्सल के लिए वॉक करता था तो वॉक करके वहां पे जाता था, रिहर्सल करता था, टाइम से पहले पहुंचता था तो रिहर्सल स्पेस साफ करता था, ये ड्यूटी थी मेरी, रिहर्सल स्पेस साफ करना है, चटाइयां बिछानी है, डायरेक्टर की कुर्सी लगानी है, पानी की बोतलें भरनी है। तो मैं और मेरे दो दोस्त और थे, एक दर्शित जो अभी कास्टिंग करता है कास्टिंग में, और एक मेरा दोस्त था सिद्धार्थ पांडे जो कि मेरा पहला दोस्त बना, कि उस तरह से भोपाल का पहला बेस्ट फ्रेंड मेरा बना। और हम तीन लोग जाते थे, हम पहले पहुंचते थे, हम सब कुछ काम करते थे, डायरेक्टर आते थे बैठते थे, बड़े बड़े लोग एक्टिंग करते थे ग्रुप में। और मैं देखता था भाई ये तो बहुत अच्छे पढ़ते हैं, मेरी भाषा का बहुत खराब था, एक नाटक कर रहे थे तांबे के कीड़े और दादा मुझे, और मेरी भाषा बहुत खराब थी तो उसमें थे एक पत्ती एक पत्थर एक शब्द ऐसे कुछ डायलॉग हुआ करते थे, वो भुवनेश्वर का नाटक था, एब्स्ट्रैक्ट नाटक था, और पहला नाटक ही मुझे वो करने को मिला। मैं कुछ ऐसे अजीब से नाटक करने के बाद अचानक से एक एब्स्ट्रैक्ट नाटक करने लग गया तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हो गया। तो उसमें एक डायलॉग था, ले लो कांच के बीच, तो मैं बोलता ले लो कांच के बीच, तो बोलते ले लो नहीं, वो मुझे सिखाते थे ले लो नहीं ले लो, और मैं बोलता था ले लो, और मैं बोलता था कि मैं वही तो बोलता हूँ, और मुझे इस बात पे गाली मिलती थी। और वो बोलते थे तुम बुंदेली फोड़ रहे हो, तो यार मैं समझ नहीं आता, मैं वही तो बोलता हूँ। फिर मेरे दोस्त मुझे समझाते थे, मुझे पता चला कि मेरे को भाषा पे कितना काम करना पड़ेगा। सर मुझे अच्छे से याद है कि वो दादा के साथ काम करते करते ड्रामा स्कूल खुला भोपाल में, एक एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा, और मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे तो मैं पैसे मैं कमा नहीं सकता और ग्रुप में पैसे मिलते नहीं, तो मुझे अब इस इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा जहाँ पे साल में इतने सारे लोग आएंगे नाटक कराने के लिए, वो खुला ही था। तो मैंने फिर एमपी स्कूल ड्रामा के लिए एग्जाम दिया, पहला राउंड में मेरा सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर वर्कशॉप में मैं गया, फिर वर्कशॉप में का एक माहौल। सो भोपाल में मैंने देखा कि एक नाटक कर रहे थे कि मैं कैसे मैंने म्यूजिक बनाना समझा, मैंने सीखा तो किसी नहीं है, मैंने हारमोनियम सीख लिया था पर म्यूजिक बनाना मैंने कैसे समझा, कि एक नाटक कर रहे थे हम लोअर डेप्थ, त्रिपुराई शर्मा मैम जो कि हम उनको डायरेक्ट करने आई थी जो कि हमारे बीच में नहीं है, पर मैम का बहुत बड़ा योगदान है मेरे को सब चीज़ों के लिए, काफ़ी एनर्जी में भी जाने ले जाने में उनका बहुत योगदान है। तो मैम का नाटक था और हम उसको कर रहे थे और संजय उपाध्याय सर जो कि बहुत बड़ा नाम है म्यूजिक इंडस्ट्री में और थिएटर की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, SNA अवार्ड ही हैं वो और मेरे गुरु हैं, मैं उनको बहुत प्यार से उनसे सीखा है मैंने। तो एक नाटक कर रहे थे तो उस नाटक में हम उज्जैन में, हमारी वर्कशॉप लगी हुई थी और उज्जैन में हम एक महीने के लिए वहाँ पे थे, तो सर ऐसे मेरे सामने ही गाने बना रहे थे, हारमोनियम बजाना मुझे आता था पर मैंने गाने नहीं बनाए थे, तो उन्होंने गाना बनाया मेरे सामने ही और वो गाना मुझे ही गाना था, तो मेरे सामने बना रहे थे क्योंकि मैम पूछती थी कि संजय क्या हुआ, तो बताते थे मैम हम कर रहे हैं। तो एक गाना उन्होंने बनाया, एक कविता थी, दिखती है आस क्यों पाक पसारे सही में है मन क्यों क्यों रूठे किनारे, तो उन्होंने इस गाने को कंपोज किया। सर देखिए छोटी सी बात है पर उन्होंने मेरे सामने कंपोज किया और मैं ऐसे इंस्पायर हो, इनलाइट हो गया, मुझे लगा

0: तो ये गाना मुझे लगा कि भाई ये तो इतना बढ़िया काम है। तो फिर मैं आया उधर से वर्कशॉप के बाद, मैंने कुछ दिनों में कुछ 4-5 गाने बनाने की कोशिश की और लिखने
1: क्या
0: भी शुरू
1: बात
0: किए,
1: है,
0: क्योंकि मैं पढ़ता था भावे में, लाइब्रेरी में पढ़ता था, बहुत सारे कवियों को मैंने पढ़ा हुआ था, तो मैंने कुछ कुछ गाने लिखने शुरू किए।
1: कंपोज करना शुरू किया या लिखना शुरू
0: लिखने
1: किया?
0: भी लिखना दिखता तो मैं कविताएं था ही, पर मैंने कंपोज किए फिर 4-5 गाने। और फिर मैंने भोपाल में आके स्कूल के बाद मैंने बोला सर से कि सर मैं एक 5-6 गानों का, 7-8 मिनट का, 15-20 मिनट का एक शो करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पर ये ऐसी परंपरा बनाओ कि हर सैटरडे को कोई एक बंदा परफॉर्म करेगा। तो मैंने कहा हाँ, तो सर उसकी शुरुआत मैं ही करता हूँ अगले।
1: रुको, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं, क्योंकि बहुत दिलचस्प दास्तान है। एक गाना सुनते हैं, उसके बाद ये दास्तान
0: हाँ,
1: सुनेंगे।
0: पता चलेगा
1: तो
0: सर।
1: बताओ यहां कौन सा गाना होना चाहिए देवेंद्र?
0: ओ साथी रे,
1: क्या बात है,
0: ओमकारा का,
1: ओमकारा का गाना
0: ओमकारा
1: है।
0: का गाना है
1: बहुत
0: कि बहुत ही
1: शानदार गाना
0: सुंदर
1: है,
0: गाना है, बहुत ही
1: बहुत
0: सुंदर
1: शानदार
0: गाना
1: गाना
0: है।
1: है।

0: ये गाना हमने ओंकारा फिल्म का सुना देवेंद्र, आप बता रहे थे कि हर शनिवार को ये परंपरा शुरू करो कि कोई परफॉर्म करेगा,
1: हाँ,
0: तो इसके आगे क्या हुआ?
1: तो मैंने कुछ गाने बनाए और मैंने परफॉर्म किया, तो वो गाने परफॉर्म करने के बाद कुछ बुंदेलवी गाने थे, कुछ ऐसे कुछ गाने थे, और वहां पे अगले नाटक को डायरेक्ट करने के लिए एक डायरेक्टर आए हुए थे, उनका नाम था वीके शर्मा। तो वीके सर ने मेरे को देखा परफॉर्म करते हुए, तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने मेरे शो के बाद बोला कि अगला मेरा जो शो होने वाला है उसका म्यूजिक तुम करोगे। तो वो मेरा पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उस नाटक का नाम था अपना अपना भाग। हाँ, अपना अपना भाग का मैंने पहला गाना है, वो ऐसा कुछ गाना था, एक सुना देता हूँ ऐसे करके। सुबह का भोला जीरो कादिर हीरो बन के लौटा है, सुबह का भोला जीरो कादिर

0: मौका है मेहनत करके भाग्य जगा ले, तुझको किसने रोका है, सुबह का भोला जीरो कादिर हीरो बन के लौटा है। तो एक फेलियर आदमी की कहानी थी कि वो फेल हो गया था, फिर वो कैसे हीरो बन के लौट के आया है, उसके ऊपर हमने ये नाटक, और ये पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उसके बाद तो ये लंबा सिलसिला है और फिर
1: म्यूजिक का सिलसिला चल पड़ा,
0: चालू हो गया। फिर उसके बाद मैं पास आउट हुआ और फिर वीके सर ने बोल दिया कि भाई तू पास आउट होके दिल्ली आ जाना मेरे ग्रुप में काम करना।
1: अच्छा,
0: तो एक ब्रिज में लिया कि मुझे दिल्ली जाने का मौका मिल गया, क्योंकि मुझे दिल्ली ही पहुंचना है डेस्टिनेशन।
1: वो बोर्ड
0: वो
1: और
0: वो तो छूटे नहीं है, वो रिकॉर्डिंग तो छूटे नहीं है।
1: हाँ।
0: वो तो मैं मुझे जाने थे स्कूल, उधर हुआ नहीं है। जिस समय मैंने एमपी स्कूल ड्रामा के लिए ऑडिशन किया था, उस समय मैंने एनएसडी का भी ऑडिशन किया था, पर
1: अच्छा
0: एमपी स्कूल ड्रामा मेरा हो गया। और देने गया इंटरव्यू तो उन्होंने बोला कि भोपाल में खुद एक ड्रामा स्कूल खुला है, भोपाल में काम करते हो तो भोपाल में आपने नहीं दिया। मैंने बोला मैंने दिया था। तो उन्होंने क्या हुआ, मैंने कि हो गया, तो उन्होंने बोला पहले वहां पढ़ के आओ।
1: अरे
0: मैंने कहा अरे यार, तो फिर मुझे पढ़ने को वहां पे मौका मिला और फिर मैं जुलाई में पास आउट हुआ था। 4 अगस्त 2012 को मैं दिल्ली आ गया था वीके सर के ग्रुप में काम करने के लिए, और फिर मेरे को 14 में मेरा सिलेक्शन हुआ। और तो उसके बाद मैं दिल्ली में लगातार काम किया, दिल्ली में काम
1: लेकिन
0: किया,
1: 14 में एनएसडी में सिलेक्शन
0: हो गया।
1: और वहीं वो
0: और वो
1: धुरंधर जी
0: धुरंधर जी
1: मिले
0: से मिलना हुआ मेरा,
1: मिले धुरंधर जी।
0: धुरंधर जी उस समय तक थे, धुरंधर जी पर वो मुझे भूल चुके थे तब तक।
1: हाँ
0: मैंने
1: हाँ
0: बोला आपको याद है एक बच्चा आया था, आपने मुझे बोला था कि तेरा नहीं हो पाएगा, यार ऐसे मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हो। और वो प्यार करते थे, वो थोड़ा सीनियर जैसे थे ना, जैसे बुजुर्ग
1: हाँ।
0: कैसे होते हैं, तो ऐसे थे वो। क्योंकि वो ऐसा कल्चरल ग्रुप है, एक्टिविटी है, तो वहां पे गार्ड गार्ड की तरह ट्रीट नहीं किया जाता जैसे
1: बिल्कुल
0: दुनिया में होता है।
1: जी,
0: तो वो ऐसे होता है कि अरे आप दादा हो, मतलब आप
1: हाँ हाँ परिवार
0: प्यार
1: के एक
0: मिलता, परिवार के
1: सदस्य।
0: सदस्य हो, सीनियर सदस्य हो आप,
1: हाँ
0: तो उस तरह से। तो धुरंधर जी से काफी लंबा समय तक उनसे प्यार रहा है, और फिर वो रिटायर्ड हो गए तो अब मिलना कम होता है, पर मैं दुआ करता हूँ जहां भी हो, बहुत ही अच्छे थे वो।
1: एनएसजी ने आपकी दुनिया को कितना बदला।
0: सो एनएसडी में भी मैं एक्टिंग करने गया था, मैंने एक्टिंग करनी थी मुझे, और मुझे शौक था एक्टिंग करने का। और मैंने पहला एक बड़ा नाटक मैं लीड रोल किया, उसके पहले तो क्योंकि मेरी भाषा बहुत खराब थी, एमपी स्कूल ड्रामा में मैं नाटकों में रोल करता था, एक नाटक में 6 रोल करता था, और मेरे डायलॉग किसके कैसे होते थे, छोटे छोटे रोल होते थे। बंदूक किसके पास है, मैं बोलता राजगुरु के पास, मैं डायलॉग खत्म, मेरा
1: बस
0: रोल भी खत्म, मेरा रोल भी खत्म, मेरी भाषा इतनी खराब थी।
1: अच्छा,
0: क्योंकि मेरे
1: लेकिन
0: को,
1: ये फिर भाषा पर काम कैसे किया, ये
0: हाँ
1: बहुत
0: मैं बता
1: महत्वपूर्ण
0: रहा
1: है।
0: हूं कि मैं ये कविता पढ़ते पढ़ते मैंने पहली बार शामिल बोलना शुरू किया था, शामिल बोलना शुरू किया पहले, क्योंकि मैं शामिल बोलता था, शेक्सपियर बोलता था,
1: हाँ
0: तो लोग हंसते थे।
1: हाँ
0: तो मुझे लगा कि अरे यार ये तो मैं बहुत बड़ा मसला है।
1: हाँ
0: हाँ,
1: हाँ
0: तो मैंने भाषा पे काम किया, दोस्तों ने मुझे हेल्प की, मुझे
1: हाँ
0: लगातार टोका, मुझे समझाया, और फिर मैं कॉन्शियस हो गया उसको लेके,
1: हाँ हाँ हाँ
0: मैं उसको लेके कॉन्शियस हो गया कि भाई अच्छा अच्छा मैं गलत बोलता था,
1: शक को साफ बोल रहे हो।
0: हमेशा ही बोलता था। तो पहली बार मैंने ये कविता, जो राजेश जोशी की बहुत पॉपुलर कविता है, बाद में मैंने उसको कंपोज भी किया,
1: हाँ
0: जो हमारे बैंड का मंडी हाउस द बैंड, हमारा जो बैंड बैंड है उसमें गाना है ना, जो इस
1: हाँ
0: पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, तो
1: हाँ
0: शामिल मैंने पहली बार शब्द बोला था, जिसमें मैंने
1: हाँ
0: सा को सही बोला था,
1: हाँ
0: शामिल बोला था। मेरे दोस्त चौंक गए थे कि भाई बोल दिया।

0: यही तो बोल रहा था, इतने दिन से तुमसे यही तो बुलवाना चाह रहे थे हम।
1: ओके ओके,
0: तो ये पहली बार ऐसे भाषा पे काम किया, और जब मैं पहली बार इसमें एनएसजी आया और मैंने बहुत बड़ा रोल किया लोअर डेप नाटक में, दोबारा हुआ एनएसजी में, और उसमें मैंने साचिन का रोल किया और डायरेक्ट कर रहे थे अनुरुद्ध खुटवर सर, और मैंने, मेरा बड़ा नाम हुआ उस नाटक से, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई लड़का आया और दो ढाई घंटे के नाटक में 1.5-2 घंटे कम से कम स्टेज पे है और लगातार बोलना है और कैरेक्टर बहुत डिफिकल्ट, कुछ भी चीज जो मैं नहीं करता था सब उसको करना है, मैनेरिज्म पकड़ने की कोशिश की, और लंबे अंतराल के बाद वो नाटक बहुत अच्छा हुआ। पर जैसे ही मैं सेकेंड ईयर में गया और उस समय मुझे समझ में आया कि यार मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, जिन लोगों से मैं बिलोंग करता हूँ, अगर मैं एक्टिंग मैंने ले ली तो उनकी कहानियाँ कौन कहेगा। तो फिर मैंने वहाँ से अपना रुझान बदला और मैंने डिज़ाइन एंड डायरेक्शन में अपने आप को कोर्स लिया सेकेंड ईयर से, आप स्पेशलाइजेशन करते हो तो वो लिया, और फिर मैं उस तरफ आ गया, और फिर मैंने अपनी कहानियां लिखनी शुरू की, अपनी बात लिखनी शुरू की, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ उस जमीन की सच्चाई को लिखना शुरू किया, सोसाइटी पे क्वेश्चन करना शुरू किया। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि मैंने ठीक किया, क्योंकि मैं अभी भी एक्टिंग तो मैं कर ही लेता हूँ, मेरे को लोग प्यार करते हैं और मेरे को पता ही है कि मैं डायरेक्शन के हिसाब से जो मैं डायरेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे इतना प्रेशर नहीं रहता क्योंकि मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो मैं एक्टिंग भी बहुत सरल तरीके से करता हूँ, लोग मेरी एक्टिंग की तारीफ भी कर देते इस बहाने कि भाई तुम लोड नहीं लेते,
1: बिल्कुल
0: तुम्हारी एफर्टलेस दिखती है। तो ऐसे करके शुरू हुआ पूरा पूरा।
1: तो फिर दिल्ली में कौन से बड़े नाटक इस दौर के बाद किए हैं आपने?
0: अभी दिल्ली पहुंचा उस दौर के बड़े नाटक हुए थे, विरासत एक नाटक किया था अनुराधा कपूर मैम ने, बहुत बड़ा लेवल पे वो नाटक किया था जिसका बहुत नाम हुआ। उस समय बंसी दादा भी नाटक करते थे,
1: बंसी कॉल
0: जी भी नाटक करते थे, एनएसडी में भी उनके साथ मैंने एक नाटक किया जिसका नाम था खेल मंडी खेल, उसका म्यूजिक मैंने बनाया। हाँ, तो वो मूवमेंट थिएटर करते थे, लार्ज लाइव थिएटर करते थे, और वो फार्स कॉमेडी करते थे, वो कन्विक्शन के साथ कराते थे, वो बहुत बढ़िया काम था। तो उनके साथ भी काम करने का, त्रिपुराई शर्मा जी का नाम उस समय बहुत था, और बहुत उनके साथ नाटक किए हम लोगों ने, और बहुत नाटक देखे उनके, और बाहर भी दिल्ली के जो ग्रुप्स थे उनके साथ भी काफ़ी नाटक देखे। एक नाटक देखा था मैंने वाटर स्टेशन, जो कि साउथ का नाटक था, और उस समय भारंगम होते थे, तो भारंगम से भी बहुत सारे नाटक आते थे, दुनिया के सारे नाटक, बहुत सारे नाटक उस समय
1: बिल्कुल
0: देखे हमने। अभिलाष पिल्लई सर के नाटक देखे थे हमने, और बहुत अलग अलग तरीके के, बहुत इंटरनेशनल लोगों से मिलना हुआ, पूरे देश के अलग अलग जगह के लोगों के, अलग अलग भाषाओं के लोगों से मिलना हुआ, और पावरफुल लड़कियों से मिलना हुआ जो कि अपनी बात बहुत स्ट्रांगली कह पाती हैं, और जो सोसाइटी में स्ट्रांगली अपनी प्रेजेंस को प्रूव करती हैं, और वो दिखाती हैं कि वो किसी से कम नहीं है, इंटेलेक्चुअली और क्रिएटिवली भी वो किसी से कम नहीं है। तो उन टीचर्स से ज्यादा हम बैचमेट्स से सीखते हैं।
1: तो वहां से फिर मुंबई कैसे आना हुआ?
0: मैं पास आउट हुआ 17 में, और फिर मेरे पास एक कॉल आया बहुत बड़े डायरेक्टर का, क्योंकि मैंने उस समय मेरा डिप्लोमा हुआ था, डिरेल मैंने किया था, वो नाटक उस साल का बहुत बड़ा नाटक बन गया, और वो थिएटर ओलंपिक हुआ उसकी क्लोजिंग में हुआ, वो इतना बड़ा नाटक था, उसके 1000 लोग देखते थे, और वो मैंने ही लिखा था, डायरेक्ट किया था, डिजाइन किया था, और एमपी छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे वो मैंने बनाया एक नाटक कि वहाँ से एक रेल की पटरी निकलती है और वहाँ पे एक गार्ड रहता है और वहाँ पे फाटक है और उस बंदे ने किसी बंदे को किडनैप कर रखा है, उसकी कहानी थी पूरा, ऐसे ओपन स्पेस में करता था मैं। तो उस नाटक में एक गाना था, तो वो गाना और उसके काफ़ी गाने ऐसे पॉपुलर हुए, वो मैंने रिकॉर्ड किया, तो दोस्तों ने मुझसे मांगे तो मैंने दे दिए किसी को, तो कुछ पत्रकार दोस्तों को भी दे दिया, उन्होंने एक गाना किसी डायरेक्टर को सुना दिया, काफी बड़े डायरेक्टर थे, उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने उनके साथ फिर काम नहीं हो पाया, और उन्होंने मुझे कॉल किया कि तू बम्बई आ जा और मैं हम काम करेंगे। वो बहुत बड़ा नाम था वो डायरेक्टर का, और मैं ऐसे चमक गया। रात का टाइम था, 12 बजे के आसपास एनएसजी से पास आउट होने के पहले की बात है, कुछ दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, और मेरे पास एक कॉल आता है, कुत्ते भौंक रहे हैं, हेली रोड पे मैं चल रहा हूँ मेरे दोस्तों के साथ में, और एक कॉल आया, उन्होंने बोला कि मैं फलाना बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि मैं सर मैं समझा नहीं हूँ, उन्होंने बोला फलाना फलाना बोल रहा हूँ, सर वे कुत्तों की बहुत भौंकने की आवाज़ म्यूट हो गई है, मेरे दोस्त आगे निकल चुके हैं, आगे निकल चुके हैं, और मैं वहीं खड़ा हुआ हूँ, कुत्ते मेरे आसपास पहुंचे, मैं सुनाई देना बंद हो गया मुझे, मैंने कहा अरे हाँ सर, अरे सर मैं तो मर जाऊंगा सर, क्या हो गया सर, मैं आप बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, तो आ जाना मुंबई और अपन मिलते हैं, कुछ काम करते हैं। फिर मैं आया मुंबई, उनसे मिलना हुआ, पर वो काम नहीं बन पाया, अभी तक मैंने उनके साथ काम नहीं किया, पर उम्मीद है कि कभी ना कभी काम करेंगे। पर फिर ऐसे में मुंबई आ गया,
1: और यहाँ से फिर मुंबई में काम का सिलसिला शुरू हुआ।
0: हाँ, मुंबई में काम का सिलसिला तो सर ऐसे शुरू होता कि 3 महीने तो मैं समंदर पे जाके बैठा, क्योंकि पहली बार समंदर देखा था और पता ही नहीं रहता था जाना किधर है, पर ये बता था कि वहाँ हर हाल में पहुंचना है, जहाँ जाने का ख्वाब देखा है, तो उसी तरफ बढ़ने की कोशिश करते थे, निकलते थे। फिर एक नाटक बना लिया, क्योंकि कोई काम नहीं देगा तो क्या करोगे, फिर मैंने एक नाटक बना लिया कांजी हाउस, जो मैंने ही लिखा था, और वो भी उसी बुंदेलखंड पृष्ठभूमि पे हो, शुरू ऐसे होता था, एक आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।
1: अच्छा
0: हाँ, वो क्योंकि रेडियो को अंदा था तो रेडियो पे कोई न्यूज चल रही है और आज शाम को 4-7 बजे उसका मैंने अनाउंसमेंट ऐसे बनाया था, इतने बजे नाटक होने वाला है जिस इस पृष्ठभूमि पे है, ऐसे करके उसमें ये अभिनेता काम कर रहे हैं, ये इसमें इस तरह के गाने, इस तरह का म्यूजिक है। तो कांजी हाउस उसको बहुत प्यार मिला, मैंने उसके 25 शो किए और वो फिर कोविड लग गया, हम पृथ्वी करने ही वाले थे, कोविड लग गया, फिर वो पूरा का पूरा बंद हो गया नाटक। फिर अभी बहुत समय बाद मैंने एक बड़ा नाटक, मतलब कम लोगों के साथ में एक बड़ा नाटक बनाने की, बड़ी बात के साथ बनाने की कोशिश की है, जिसका नाम है बहुत जोर से प्यार लगा है, जो अभी लगातार हो रहा है।
1: और उसका एक गाना सुनाओ यार,
0: उसका टाइटल सॉन्ग सुना दूंगा मैं आपको।
1: बिल्कुल
0: सुनाता हूँ मैं आपको, उसका एक गाना है जो टाइटल सॉन्ग है। मैं एक इसकी छोटी सी गंभीर बात आ देता हूँ कि एक छोटा सा सेंटेंस जिस उम्र में मैं पढ़ता हूँ, छोटी उम्र में, लाइक मैं अगर 13-14 साल का हूँ, 12-13 साल का हूँ, उस समय कोई एक कोई इंसान, ऐसा इंसान जिसके होने से आप चमकते हो, जिसके होने से आपको खुशी होती है, जिसके बगल से गुजरने से आपको कोई आपका क्रश है, और वो कोई एक ऐसी बात कह दे, एक सेंटेंस ऐसा बोल दे, उस सेंटेंस का असर कितना समय रहता है और वो सेंटेंस आपकी पूरी दुनिया कैसे बदल सकता है, वो एक सेंटेंस की कहानी है ये एक तरीके से। अगर वो नहीं होता तो ये लड़के की जो जिंदगी है, जो गुड्डू नाम का जो कैरेक्टर है, उसकी जिंदगी कुछ और ही होती, उस घटना ने उसकी जिंदगी बदल के
1: बदल दी।
0: उस पर एक कहानी है, हर किसी की जिंदगी में ऐसा होता है, एक संवाद कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, भाषा में कितना पावर है, और अगर वो मीन करके, अगर वो सच में इंटेंसिटी के साथ बोला गया सेंटेंस है, संवाद
1: तो
0: है,
1: क्या
0: तो वो क्या बदल सकता है, वो तबाही ला सकता है। तो वो कहानी है। अब ये गाना तो थोड़ा कमर्शियल गाना है क्योंकि हमारा नाटक भी कमर्शियल है, पर बात वही है कि वो फोक से शुरू होके ऐसे कमर्शियल की तरफ बढ़ता है, क्योंकि वो कैरेक्टर भी ऐसे छोटे गांव से निकल के कहां कहां पहुंचता है, उसकी कहानी है। सो गाना है।

0: इस पार से लेके सीने के उस पार लगा है, बहुत जोर से प्यार लगा है,
1: क्या बात है।
0: पै पै पै, बहुत जोर से प्यार लगा है, पै पै पै पै पै, बहुत जोर से प्यार लगा है। सीधे लड़के के हाथों में इनलीगल हथियार लगा है, बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: जहन की हर एक चोट थी गायब, उन होठों में होठ थे गायब, हाथ थे गायब, बात थी गायब, दुनिया की औकात थी गायब, गायब पूरा बदन हुआ था, मैं तो उसका कफन हुआ था, बचने को बस सांस बची थी, फिर भी आधी रात बची थी।
1: वाह।
0: सुबह उठा तो कान के नीचे गर्दन पर स्कार लगा है, बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है, पा पा पा पा पा, बहुत जोर से प्यार लगा है।
1: क्या बात है, क्या बढ़िया गाना। जी जी जी। कैसा रिस्पॉन्स है इस नाटक का?
0: सर जो भी देख रहा है उनको बहुत पसंद आ रहा है, और क्योंकि म्यूजिकल है तो लोग उससे और जुड़ते जा रहे हैं, और अभी हमने लगातार 5-6 शो किए हैं, हाउसफुल शो किए हैं, और हमें भी बहुत शो करने हैं, पूरे हिंदुस्तान घूमना है। तो जो भी श्रोता जो सुन रहे हैं हमें, अगर वो चाहें तो हमें बुला सकते हैं, और दो परफॉर्मेंस हम लगातार कर रहे हैं, एक तो हमारे मंडी हाउस बैंड है जो कि ऐसे गाने हैं, वो सारे गाने ओरिजिनल गाने हैं, इतने बड़े बड़े गाने हैं जो आपने फिल्मों में भी नहीं सुने होंगे, और रोहिणी ने ऐसा बोला हुआ है, मैंने नहीं बोला हुआ है। तो बहुत अच्छे गाने हैं और बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, और इसे कोम्यून ने प्रोड्यूस किया हुआ है, और हमें इसे बहुत करना है, और अभी हम कर रहे हैं, अभी आगे हमारे शो है, हम पृथ्वी में भी करने वाले हैं, एनएमसीसी में भी कर रहे हैं, तो अभी बहुत प्यार की उम्मीद है, अभी बहुत प्यार चाहिए सर, बहुत नाम चाहिए, क्योंकि एक ऐसी जगह से निकलना है ताकि बहुत सारे लोगों को ताकत मिले, और एक थोड़ा एग्जाम्पल बने कि हाँ कहीं से भी सपने देखे जा सकते हैं।
1: अभी वेब सीरीज आई थी बैंड वाले,
0: जी जी,
1: वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? स्वानंद है उस वेब सीरीज,
0: जी जी, स्वानंद दादा हैं, और अंकुर तिवारी जी ने को डायरेक्ट किया है, को क्रिएटर है वो, और अक्षय वर्मा जी ने उसको डायरेक्ट किया। उसमें मेरे कैरेक्टर नाम है जिग्गी। जिग्गी एक कैरेक्टर है जो एक लड़की को प्यार करता था, पर वो लड़की प्रोफेसर की बेटी थी, इसलिए प्रोफेसर को पता चला कि मेरी लड़की के पीछे पड़ा हुआ है ये, तो उस लड़के को अपने घर बुलाया राखी वाले दिन, और उससे राखी बनवा दी। तो वो जिग्गी कैरेक्टर ऐसा है कि वो राखी भाई बना हुआ बेचारा। अब वो क्या करे, उसके दिमाग में बहुत है, वो प्यार भी करता है पर उसको बहन मानता है वो, अब उसको वो पीछे घूमता रहता है 24 घंटे, वो अपनी थार से उसके पीछे घूमता है बहुत, मतलब लोगों ने मुझे बहुत उसके लिए प्यार इसलिए दिया क्योंकि लोग उसमें कह रहे हैं कि तुमने उसमें बिल्कुल एक्टिंग नहीं की, क्यों? क्योंकि मेरे को लगा कि मैं उसमें क्या ही एक्टिंग करूंगा, मैंने उसको समझा बस कैरेक्टर को, क्योंकि समझाने वाले लोग भी अच्छे थे, स्वानंद दादा भी थे, अंकुर जी भी थे, अक्षय वर्मा जी भी थे, और आसपास के लोग, रोविंद सर उसमें

0: कर रहे थे हमारे गुरु जी, सर्व काम आशीष विद्यार्थी जी उसमें काम कर रहे हैं, तो काफी लोग उसमें थे, तो उसमें बहुत ही अच्छा था। और उसमें मेरा गाना भी था, मैंने गाने बनाने के लिए पहले उससे जुड़ा था गाना, उसमें सब मोह माया नाम का एक गाना मैंने बनाया था। अच्छा वो गाना कुछ ऐसा था, वो देखो सब लूप में फंस गए, सभी लिटिल विट चूक में फंस गए, रोटी से परहेज किया है, पिज्जा बर्गर सूप में फंस गए, वो देखो सब लूप में फंस गए, बुजुर्गों ने फरमाया है प्यारे सब मोह माया है, अरे टैटू भी गुदवाया है, डूड सब मोह माया है, काफी ऐसे फन सॉन्ग है। आम आदमी का गाना है कि बेचारा क्या चाय चढ़ा के दूध में फंस गए,
1: वाह वाह,
0: पी के कई तो फूक में फंस गए,
1: वाह,
0: पिचकारी से खेल रहे थे नजरों की बंदूक में फंस गए,
1: क्या सुन
0: उसके लिरिक्स ऐसे हैं मतलब,
1: वाह वाह वाह। देवेंद्र बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, तो और सबसे अच्छी बातें वो होती हैं जिनमें आगे के लिए हमेशा गुंजाइश छोड़ दी जाए।
0: जी जी जी।
1: तो फिर कभी मिलेंगे और
0: बन्दर।
1: आगे और बहुत सारी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विविध भाई,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। रेडियो का मेरी जिंदगी में बहुत ही योगदान रहा है, और आप यकीन नहीं मानोगे मैंने बहुत सुना है विविध भारती, मैंने सुनता था, आकाशवाणी का टाइम खत्म होता था फिर बोलते थे आप विविध भारती से कनेक्ट करते हैं,
1: हाँ।
0: कर दिया जा रहा है आपको, फिर वहां से आप सुनते थे प्रोग्राम लगातार,
1: बिल्कुल।
0: और बहुत ही एक सादगी है, एक सरलता है, एक मोहब्बत इतना नहीं एक रेडियो में,
1: बिल्कुल।
0: और मैं बड़ा मिस करता हूँ इसको, और मैंने तो सुना ही, मैंने बताया कि वो रेडियो के गाने मेरे जहन में चलते रहते थे, बैरन होगी जिंदगी मैं कहां से कहूं जैसे गाने मैंने सुन सुन के बड़ा हुआ हूं मैं। सो मेरे साथ एक बड़ी खासियत जुड़ जाती है मेरे साथ कि मैंने थोड़ा म्यूजिक और जो लोक है जो फोक है वो काफी मैंने जिया है और मैंने उसको महसूस किया है, और दूसरा मैं शहर भी रहा हूं तो मैंने हर तरह की शहर से होके पानी पी के आया हूं, तो मेरे लिए ये काम कर जाता है, और रेडियो का मेरे लिए बड़ा योगदान है कि वो गाना नहीं सुनता जब जब प्यार पे पहरा हुआ है तो मेरे ख्याल ही नहीं आता दिमाग में, और मैं आज आपके साथ बैठा हुआ था।
1: सफर है,
0: हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है अच्छे लोगों से बात करके, और आपको तो मैं पढ़ता आया हूँ, मैं आपकी किताब भी पढ़ी है शैलेंद्र के ऊपर, और मुझे स्वानंदन दी थी वो पढ़ने के लिए, तो मैं उसको भी पढ़ता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपसे लगातार जुड़ा रहूंगा, आपसे बात करता रहूंगा, विविध भारती से जुड़ा रहूंगा।
1: शुक्रिया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।

आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, प्रस्तुत है युवा वर्ग को संबोधित कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवाओं की वाणी युववाणी में। जोश, जुनून और युवाओं की आवाज़ को लेकर आज हम फिर से हाजिर हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम में। और आज के खास कार्यक्रम के साथ हाजिर है आपके साथी कंचन। और आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ है हमारे आउटरीच प्रोग्राम की विजेता प्रिया भारती।
1: हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिया भारती और आज के कार्यक्रम की मैं गेस्ट हूँ।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा प्रिया। हम आशा करते हैं कि आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और हमारे कार्यक्रम का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। तो आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के कार्यक्रम में क्या क्या खास और मज़ेदार होने वाला है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत आज के दिन विशेष की चर्चा के साथ करेंगे। उसके बाद आज के कार्यक्रम में भावों से भिवोर कर देने वाले गीतों का आनंद लेंगे आज के खास सेगमेंट भावगीत के साथ, और अंत में समसामयिकी के चर्चा को सुनकर कार्यक्रम से विदा लेंगे।
1: तो आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत बिना समय गवाए इस सुंदर से गीत के साथ करते हैं। ये सुंदर सा गीत फिल्म तेरे इश्क में इस गीत के गायक कलाकार ए आर रहमान हैं। तो आइए इस गीत को सुनते हैं।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आइए अब कार्यक्रम में आज के दिन विशेष की चर्चा को सुनते हैं। आज विश्व कछुआ दिवस मनाया जा रहा है। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य कछुओं और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस दिवस की स्थापना वर्ष 2000 में कैलिफोर्निया स्थित गैर लाभकारी संस्था अमेरिकन टॉर्टाइज रेस्क्यू द्वारा की गई थी। कछुए पृथ्वी के सबसे प्राचीन जीवों में से एक माने जाते हैं। वे करोड़ों वर्षों से धरती पर मौजूद हैं और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विश्व कछुआ दिवस हमें संदेश देता है कि हमें प्राकृतिक और जीव जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए।
1: और हाँ कंचन, विश्व कछुआ दिवस के साथ आज हम राष्ट्रीय टॉफी दिवस भी मना रहे हैं। राष्ट्रीय टॉफी दिवस अमेरिका की सबसे यादगार और जवानी में स्वादिष्ट मिठाई टॉफी का एक मीठा उत्सव है, जो उबली हुई चीनी और मसालों को खींचकर नरम चबाने योग्य पट्टियों में ढाली गई क्लासिकल मिठाई और मीठे आनंद से पूरे राष्ट्रीय टॉफी दिवस अमेरिका मिठाई उद्योग की एक पुरानी परंपरा का जश्न मनाता है। ये मिठाई निर्माताओं को समर्थन करता है और हमें जीवन की छोटी छोटी मीठी खुशियों की सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो आप आज इस खट्टी मीठी टॉफी को जरूर खाएं और नेशनल टॉफी डे को जरूर मनाएं।
0: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ चर्चा यहीं खत्म होती है। आशा है कि साथियों को आज की चर्चा पसंद आई होगी। तो आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आज के डेली ट्रिविया के खास प्रश्न को जानते हैं। आज के हमारे डेली ट्रिविया का खास प्रश्न है, दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों, इस प्रश्न के जवाब को हमें जल्दी से भेजें। तो आइए अब कार्यक्रम में आज के खास सेगमेंट भाव गीत को शुरू करते हैं और इसमें भाव से विभोर कर देने वाले गीतों को सुनते हैं। आज के हमारे भाव गीत का विषय है वर्षा, प्रकृति का जीवनदायी संगीत। जी हाँ दोस्तों, अभी गर्मी अपनी चरम सीमा पर है। इस मौसम की तपिश को ठंडा करने के लिए बरसात की बहुत अधिक ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं भावगीत को। वर्षा या बारिश प्रकृति का सबसे सुंदर, मनमोहक और जीवनदायी रूप है। ये केवल आकाश से गिरने वाली पानी की बूंदें नहीं, बल्कि धरती के लिए अमृत समान है। जब भीषण गर्मी से धरती तपने लगती है, पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं और चारों ओर वातावरण में उदासी छा जाती है, तब पहली बारिश अपने साथ ठंडक, हरियाली और नई आशा को लेकर आती है। काले काले बादलों से घिरा आकाश, ठंडी हवाओं का चलना और बूंदों की मधुर रिमझिम मन को एक अद्भुत शांति प्रदान करती है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं अपनी मधुर वीणा बजा रही हो और अपने संग बरसने को कह रही हो।

0: अरे कंचन, मुझे भी ये बारिश का मौसम बहुत पसंद है। पहली बारिश की बूंद जब सूखी धरती पर गिरती है, तब मिट्टी से उठने वाली सौंधी खुशबू और हर खुशबू में मन को मोह लेने वाली लेती है। ये खुशबू केवल वातावरण को नहीं, बल्कि पशु पक्षी, नदी तालाब और हम इंसानों को भी ताजगी से भर देती है। बच्चे बारिश में भीगते हुए खेलते हैं, कागज की नाव बनाकर पानी में बहाते हैं और अपनी छोटी छोटी खुशियों को मन में मोह लेते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने प्रिया। और उनके चेहरे पर दिखाई देने वाली ये प्यारी सी मुस्कान इस वर्षा को और भी खास और सुंदर बना देती है। बरसात आते ही प्रकृति का रूप पूरी तरह बदल जाता है। पक्षियों की मधुर चहचहट और मेंढकों की टर टर वातावरण को एक अलग ही धुन पैदा कर देती है। मोर अपने सुंदर पंख फैलाकर नृत्य करने लगते हैं, जिसे देखकर मन आनंदित हो उठता है और दिल कहता है, नाचूं मैं आज छम छम छम।

0: भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के किसानों का जीवन वर्षा पर अधिक निर्भर करता है। जब समय पर बारिश होती है तब खेतों में धान, मक्का और अन्य फसलें अच्छी तरह उगती है। इससे किसानों के चेहरे पर खुशी और संतोष दिखाई देता है। कई लोगों के लिए बारिश बचपन की यादें लेकर आती है और खिड़की के पास बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ बारिश को देखना एक अलग ही सुख देता है।
1: कभी कभी वर्षा प्रेम की भावनाओं को जगाती है तो कभी कभी बिछड़े हुए लोगों की याद दिलाती है। कई कवियों और लेखक ने वर्षा को प्रेम, विरह और भावनाओं का प्रतीक माना है, क्योंकि हमने त्याग, समर्पण और प्रेम की पनाह होती है। तभी तो आशिकों की पसंदीदा मौसम बारिश है। ये मौसम की बारिश की बात ही अलग है।

0: वर्षा हमें जीवन का महत्वपूर्ण संदेश देती है। जैसे सूखी धरती वर्षा के जल से फिर से हरी भरी हो जाती है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी दुख और कठिनाइयों के बाद सुख और आशा का आगमन होता है। वर्षा हमें धैर्य रखना और कठिन समय में भी उम्मीद न छोड़ना सिखाती है। तो साथियों, इसी के साथ भावगीत का ये सेगमेंट खत्म होता है। आशा है कि साथियों को आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। तो आइए अब कार्यक्रम में आज के समसामयिक की चर्चा को सुनते हैं और जानते हैं देश विदेश की महत्वपूर्ण खबरों को।
1: पश्चिम बंगाल ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 8 करोड़ रुपए और डीएसपी स्तर की नौकरी की घोषणा की है।
0: भारत और इटली ने 2027 वर्ष को कल्चर एंड टूरिज्म ईयर घोषित किया है।
1: इंडिया सुपर लीग 2026 का खिताब ईस्ट बंगाल ने जीता।
0: ताइवानी लेखिका यांग सुआंग और अनुवादक लिंग किंग को ताइवान ट्रेवलॉग के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। इसी के साथ समसामयिकी की चर्चा यहीं समाप्त होती है। आशा है कि श्रोताओं को आज की सारी जानकारी पसंद आई होगी। तो आइए अब कार्यक्रम में आकाशवाणी फन फैक्ट्स में आज कुछ खास जानते हैं। क्या आपको पता है, भोपाल आकाशवाणी केंद्र ने 1980 से 1992 तक 12 साल की मेहनत के बाद रामचरितमानस के सभी 7 कांडों का रिकॉर्ड किया था। और आज के डेली ट्रिविया के प्रश्न का सही जवाब है, दूरदर्शन पर रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण 25 अप्रैल 1982 को शुरू हुआ था। आशा है कि श्रोताओं के सही जवाब होंगे और आप सभी को ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। तो साथियों, इसी के साथ कार्यक्रम का ये प्यारा सा सिलसिला यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आज के कार्यक्रम में खूब आनंद आया होगा और आज के कार्यक्रम को भरपूर एंजॉय किया होगा। तो आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा, हमें ज़रूर बताएं। आप अपना मैसेज हमारे मेल और पते के जरिए भेज सकते हैं। हमारा पता है युवानी अनुभाग द्वारा के निदेशक आकाशवाणी भागलपुर 812001 और हमारा मेल आईडी है phairbhagalpur@gmail.com। तो साथियों, अपना अनुभव ज़रूर साझा करें।
1: तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम से लेते हैं विदा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मैं आपकी दोस्त प्रिया भारती।
0: प्रिया भारती, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में इसी समय। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अब अपनी रेडियो साथी कंचन को दे विदा। नमस्कार।

अभी आप युवाओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 होने को हैं। वक्त है फिल्म संगीत का।

0: Akashwadi at 90.
1: तुमको मेरी कसम कार्यक्रम का अगला गीत इस फिल्म से है। गायक कलाकार हैं यासिर देसाई।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।

0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: आकाशवाणी भागलपुर से अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत नीतेश अहिर और जोनिता गांधी की आवाज़ में है। फिल्म है तेरे इश्क में।

आकाशवाणी भागलपुर से अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे हैं। इस अंतराल के बाद फिल्म संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं फिल्म स्काई फोर्स का ये गीत। गायक कलाकार हैं अरिजीत सिंह और अफसाना खान।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर पर। कार्यक्रम विवरण, इसमें सुनिए हमारे केंद्र से आज और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सबसे पहले आज के शेष कार्यक्रम। आज की सभा में अब से थोड़ी देर बाद शाम 6 बजे ग्रामीण बंधुओं का कार्यक्रम होगा ग्राम जगत खेती गृहस्थी। इसमें आज हम श्रोताओं को अरुण कुमार तिवारी की वार्ता सुनवाएंगे, जल ही जीवन है। साथ ही किसान भाई अनुभवी किसान वैदेही शरण सिंह से की गई बातचीत के अंश भी सुनेंगे। शाम 7:10 पर लोकगीतों का कार्यक्रम होगा, कलाकार होंगे बसंत कुमार। 7:50 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में आज हम आपको ज्ञानी लक्ष्मण सिंह बेदी के गाए कुछ शब्द कीर्तन सुनवाएंगे। रात्रि 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। 9:30 पर विज्ञान भारती कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। और रात्रि 10 बजे से सुनिए संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से।

श्रोताओं, ये तो थे आज के शेष कार्यक्रम और अब एक नज़र कल की सभा पर। कल की सभा में सुबह 5:55 पर खेत खलिहान कार्यक्रम के साथ हम आएंगे। 6:05 पर आप सुनते हैं चिंतन मनन। 6:10 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा वंदना। 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में कल आप डॉक्टर आर पी जायसवाल से ली गई भेंटवार्ता सुनेंगे। विषय होगा प्लेटलेट्स में गड़बड़ी। इनसे बातचीत करेंगे सचिन कुमार। 7:00 से लेकर 7:55 तक आप सुनते हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इस कार्यक्रम में कल हम आपको शर्मिला गुप्ता के गाए कुछ गीत और भजन सुनवाएंगे। साथ ही साथ आप सुनेंगे स्वर्ण प्रतिभा की हिंदी वार्ता, बांग्ला साहित्य में काजी नजरुल इस्लाम की झलक। 9:30 पर बच्चों का कार्यक्रम होगा बाल मंजूषा। 10:30 पर लोक गीतों के कार्यक्रम में कल की कलाकार होंगी सृष्टि सुमन। 11:00 फिल्म संगीत का आनंद लीजिए। 12:00 हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम सुन सकते हैं आप विज्ञान वाणी। 12:30 पर हम आप सुनवाएंगे एक विशेष भेंटवार्ता, मुझे याद है जरा जरा। भेंटवार्ताकार होंगे शंकर मिश्र नाहर और इनसे बातचीत करेंगे सौरभ कुमार। 1:20 पर लोकरंग कार्यक्रम में कल के कलाकार होंगे बासुकी प्रसाद यादव। 1:30 पर सुनिए अंगिका पत्रिका कार्यक्रम अंग दर्पण। 2:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा चित्रपट से। 5:00 युवा श्रोताओं का कार्यक्रम लेकर आएंगे हम युववाणी। 6:00 ग्रामीण बंधुओं का कार्यक्रम होगा ग्राम जगत खेती गृहस्थी। 7:10 पर लोक गीतों के कार्यक्रम में कल हम आपको कविता सिन्हा के गाए कुछ लोकगीत सुनवाएंगे। 7:50 पर कल सोलहरी के कलाकार होंगे अभय कुमार सुमन। 8:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। 9:30 पर पुनः आप फिल्म संगीत का आनंद ले सकेंगे और 10:00 से रविवासरीय संगीत सभा का अनुप्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, जिसमें आप सुनेंगे पंडित हारा शंकर भट्टाचार्य का सितार वादन। कार्यक्रम विवरण में अभी आप हमारे केंद्र से आज और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:00 हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण बंधुओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी।

0: ग्राम जगत के सब श्रोता का विदो के नमस्कार
1: और सबका गैरू के भी नमस्कार और अपने के भी नमस्कार विदो भाई।
0: नमस्कार गैरू भाई, बताओ की हाल समाचार छे।
1: अरे समाचार की बते यहाँ विदो भाई, आजकल तक की बोले छो, डेग है डेग हो पर लगे छो, तनी है तनी देर होई छे और कंठ सुखे लगे छे।
0: हाँ, गर्मी तेखनी चरम पर पहुँची गिलो छे, यही वास्ते सावधानी रखे के जरूरत छे। जो काम नहीं रहत बिना काम के जो धूप में नहीं निकलना चाहिए, आ धूप में जब भी निकलो बाहर जब भी घरों से निकलो कुछ खाए पीबी ला आ साथ साथ पानी के एक बोतल अपनों पास जरूर रखना चाहिए।
1: पानी के की कहे छो विदो भाई, आज दिन भरी में 20 दाव बिजली कटल हाँ, आरु है फेरो में मोटरें चल हाँ, और जब नए चले छे नी तो पानी के बड़ा दिक्कत हो जाए छे, और ये गर्मी में नहाना धोना आय सब कुछ तो पानी है छे। आय बड़ी की बोलियो कुछ नहीं हुआ पड़लो छ।
0: हाँ देखो, हमरा सनी के जीवन में जे छे नी जल के काफ़ी महत्व है। कहलो गिलो छे जल छे तो जीवन छे, यही वास्ते बिना जल के जीवन के कल्पना करी करना मुश्किल छे। तो जल का संरक्षित करी के रखना चाहिए, आवश्यकता अनुसार ही यूज करना उकरा उपयोग करना चाहिए और जल का बर्बाद नहीं करना चाहिए।
1: सही बात बोल रहो, अरु जल तो खाली जे छौ है पानी के खाली पियै है के काम में तो नहीं ना आवे छे विदो भाई, बल्कि चाहे अपनो खेती बाड़ी रह कि उद्योग रह कि मतलब जे भी काम छे अपनो जीवन से संबंधित ओकरा में पानी के एक महत्वपूर्ण जे छे कि योगदान छे।
0: यही वास्ते देखो गर्मी के बाद बरसात आबै छे, तो बरसा के दिन में जे छे नी जल का संरक्षित करी के रखना चाहिए। गांव घर में भी जहाँ तालाब रह कुआं भी खुदवाना चाहिए, बांध में भी पानी संरक्षित करने के रखना चाहिए। कहना पानी संरक्षित कर लो रहता हूँ तब न जखनी पटाए की जरूरत होता हूँ तो अपनो फसल का पटाए दबो, तो देखो जो नहीं पटेबो तो फिर उतरा नुकसान हो जाता हूँ। इतना मेहनत करी के आदमी ने लगाए छे अन्न लगाए छे, आ जो ओकरा समय सिंचाई नहीं करबो तो फिर वो दिक्कत छे।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहलो विदो भाई, आरो समय जे छे ना समैया अभी ऐ लेली ई खराब भए गेले, पानी से नी के इतना दिक्कत भए गेलो, आरो शहरो सनी में तो देखबो कि चापा कल के नहीं झलकबे नहीं करे छे।
0: हाँ,
1: कहने की बहुत एकदम नीचो चलो गेलो छे पानी।
0: हाँ,
1: आ वहां से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाए छे, आरो ओकरा लेली जरूरी छे कि एकदम बड़का बड़का मशीन सब लगावे पड़े छे।
0: हाँ,
1: वह में सब लोग सक्षम सही से नहीं हुआ पड़े छे।
0: हाँ,
1: है कि नहीं?
0: हाँ,
1: अही लेली ई जो छौ के दिक्कत हो जाए छे, यानी कि लगातार जे बढ़ी रहलो जनसंख्या छे।
0: हाँ,
1: जे जनसंख्या हाँ, बढ़ते हाँ, तो जरूरत बढ़ते।
0: हाँ, हाँ,
1: आरो जनसंख्या बढ़ना एक तो अलग बात छे।
0: हाँ,
1: लेकिन वहू में जो संयमित होय के सही ढंग से जितना जरूरत छे उतने उपयोग करलो जाए तो भी जे छे कि बढ़िया होते।
0: हाँ, उपयोग के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। कहना कि देखो जल के जो तो अनावश्यक बर्बाद कर

0: छो तो अपनो आवे वाला पीढ़ी के साथ भी अन्याय करे।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ताकि जब तक जल बचेबे नहीं, कहे छे कि नहीं जल छे तो कल छे, यानी यह एकरो मतलब छे कल छे कि मतलब हमरो जे पीढ़ी अते ओकरा सनी के जल मिले। देखे ला एक तो अभिये की स्थिति आबि गेले कि दुनिया में यही पृथ्वी पर 75% भागो पर लगभग लगभग जे छे पानी छे, लेकिन फिर भी पिए के पानी के देखो कत्ता किल्लत छे, ओकरा में 0.03% ही मृदु जल छे। त अभी ये बोतल डिब्बा सनी में मिला लगले पानी आ कत्ता किल्लत हो गेलो छे, छे कि नहीं? तो ई सब दिक्कत छे आरु एकरा तभिये संभव छे आपूर्ति करना जबकि हम पानी के जे छे कि बुद्धिमता पूर्वक विवेक से जे छे कि ओकरो उपयोग करबे, यानी कि जितना जरूरत रहे उतने उपयोग करना छे। बेसी इने का बल नहाओ नहाबे गेलिए तो बल नहाओ 10-15 मिनट तक नहाए रहलो छे, पानी के नहि नल खुल्लो छे तो जनहै तो नहि से एकदम खुल्लो छे, ओकरा सनि पर नियंत्रण करला से जे छे कि पानी निश्चित रूप से बचते आरो आबे वाला भविष्य के हम सनि पानी जे छे कि ओकरा
0: सुरक्षित
1: जी दिया पारबे।
0: हाँ तो चलो आब जे छे श्रोता लोग के एक सुंदर सा मनोन सुनवाई छे।
1: बिल्कुल।

0: Some cars are designed to blend in, others are designed to be remembered. Meet the Maruti Suzuki Fronx with powerful 1.0-liter turbo booster engine. Fronx delivers performance that matches its bold SUV-inspired design, already trusted by more than 4 lakh proud owners across India. Fronx is now available starting at just rupees 6.85 lakh with exciting offers available at your nearest Nexa showroom. So, why follow the road when you can lead it? Visit your nearest Nexa showroom and experience the Maruti Suzuki Fronx right now.
1: Nexa.
2: Namaskar. Ye Akashvani hai. 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: Akashwadi at 90.
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: जी, ये संदेश के बाद फिनु से सब श्रोतागण के स्वागत छे अपने सबके पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी में।
4: हाँ,
3: है कि नहीं विदो भाई?
4: हाँ, हाँ।
3: आरो देखो, अपने अभी अपना सब आयल हो। हाँ। तो बात कर लिए कितना बढ़िया सा जल संरक्षण के बारे में।
4: हाँ।
3: आरो निश्चित रूप से जल जे छे कि संपूर्ण प्रकृति के लिए जे छे कि जीवन छिके, चाहे हाँ। वो मनुष्य रहे, जीव जंतु रहे, जानवर रहे कि पेड़ पौधा रहे,
4: जल के बिना प्रकृति के परिकल्पना करना भी मुश्किल छे।
3: तो अभी एक पूर्व प्रसारित वार्ता के माध्यम से जाने छी कि आरो एकरो महत्व के समझे छी, जेकरो विषय छके जल ही जीवन है। आरो वार्ताकार छके
4: अरुण कुमार तिवारी
3: जी, सुने छे आरो कुछ ज्ञान प्राप्त करे छी।

जल जीवित रहने की प्रक्रिया का रूप है। पानी धरती पर पाए जाने वाले पदार्थों में सबसे साधारण है, लेकिन गुणों में असाधारण एवं विशिष्ट है। हमारे पुराणों में जीवन की उत्पत्ति का दर्शन दिया गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने जल को गंगा, यमुना आदि नाम देकर उनको देवत्व प्रदान किया और वह सर्वत्र पूजनीय हो गई। जब तक लोगों ने इनको पूजा, तब तक उनको संरक्षित, संचित और पवित्र बनाए रखा, किंतु सीमा से अत्यधिक पूजन उनकी दुर्दशा का कारण बन गया। एक दोहा प्रसिद्ध है, रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। आज नदियों को भोग्या बनाकर रख दिया, उनको दूषित कर दिया है। आज इन नदियों की दशा राजनीति का मुद्दा बन गया है। जल मानव जाति के लिए प्रकृति के अनमोल उपहारों में से एक है। मानव शरीर में 2/3 मात्रा पानी की है। इससे स्पष्ट है कि जल का हमारे जीवन में कितना महत्व है। पृथ्वी के हर जीव के लिए जल की बहुत आवश्यकता होती है। पेड़,

पौधे के लिए भी जल की बहुत आवश्यकता होती है। जल तरल, ठोस एवं गैस के रूप में विद्यमान होता है। जल जीवन का सबसे आवश्यक घटक है और जीविका के लिए महत्वपूर्ण है। यह समुद्र, नदी, तालाब, पोखर, कुआं, नहर आदि में पाया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में जल का बहुत महत्व है। हमारा जीवन तो इसी पर निर्भर है। यह पाचन कार्य करने के लिए शरीर में मदद करता है और हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। यह हमारी धरती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारे जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण घटक है और एक सार्वभौमिक विलायक है। जल के बिना हमारे जीवन की कल्पना करना भी कठिन है, परंतु विडम्बना है कि जल के महत्व को समझते हुए भी मनुष्य ने इसे दूषित करना प्रारंभ कर दिया है। जल प्रदूषण और जल की बर्बादी के परिणाम स्वरूप अब हमारे पीने के लिए ही शुद्ध जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यह भविष्य के लिए कदापि उचित नहीं है। जल जीवन के अमृत के रूप में जाना जाता है, इसलिए जीवन को बचाने के लिए पानी संरक्षण अति आवश्यक है। यह लोकोक्ति तो सभी कहते हैं, मगर जल में ही जीवन है, इसका कोई बखान नहीं करता है। अगर सभी यह कहने लगे कि जल भी हमारी तरह जिंदा है, जीवधारी है, ज्ञान दर्शन चेतना वाला है, तो निश्चित ही हम जल की व्यर्थ बर्बादी को रोककर उसकी बचत और सुरक्षा करने लगेंगे। नहाने को चाहिए 2 लोटा, प्रयोग करते हैं 2-3 बाल्टी। अब तो वस्त्र विहीन होकर स्विमिंग पूल में घंटों उलट पुलट कर तैरते हुए जल की बर्बादी करते हैं। पहले घर के बर्तन भी सूखी राख से साफ किए जाते थे, इसके विपरीत अब कई बाल्टी पानी चाहिए उन बर्तनों को साफ करने के लिए। पहले शौच जाने के लिए 1 लोटा जल से ही काम चल जाता था, परंतु अब काफ़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है। यही नहीं, जल में जोड़ते हैं मल और मल के माध्यम से नष्ट करते हैं पल पल असंख्यात अनंतनागत जल काई जीवों का। क्या कभी इस ओर हमने विचार किया? पहले फुलझाड़ू से घर की सफाई होती थी, अब उसके साथ गीला पोंछा लगता है। मुलायम झाड़ू होने के कारण जीव बच जाते थे, लेकिन गीले कपड़े की सफाई की रगड़ती मार के कारण जीवों का बच पाना संभव नहीं है। कल कारखानों का तीखा विषाक्त घोल और शहर की गंदी नालियों का गंदा पानी नदियों में बहाया जाता है। नदी में ही धर्म के नाम पर ही मुर्दे का प्रवाह किया जाता है तथा मुर्दे की जली हुई राख और हड्डियां अस्थियां को नदी में विसर्जित की जाती है। कैसे जिएंगे जल के प्राणी? कैसे रहेगा जल शुद्ध? कैसे कायम रहेगी जल की पवित्रता? ये सोचने का विषय है। लोगों के दीन बुद्धि पर तरस आता है, और तो मुर्दा और अस्थियां गंगा और नर्मदा जैसी नदियों में विसर्जित करते हैं, और दूसरी ओर सफाई अभियान के नाम पर करोड़ों रुपया देश का बर्बाद करते हैं। कैसी विडम्बना है! ताजुब है कि इसी जल से हमारा जीवन संभव है। जल से ही फसलें लहलहाती हैं, जल से ही सब्जियां उगाई जाती है। यही अपवित्र जल हम अपने आराध्य देव के ऊपर चढ़ाते हैं, परंतु जल का इतना भयानक दोहन हुआ है कि धरती माता की छाती ही सूख गई। इससे भी हमारा पेट नहीं भरा तो हमने धरती माँ की छाती में छेद करके सैकड़ों फीट की गहराई से जल निकालने लगे। पता नहीं कुदरत का कहर जब टूटेगा तो हमें क्या क्या नहीं सहना पड़ेगा। जब हम गहराई में जलकायिक जीवों का घात कर रहे हैं तथा बिगाड़ रहे हैं, प्रकृति का संतुलन तो बताइए, क्या हमें भी उतने गहरे नरक या निगोद में पहुंचकर सजा नहीं भोगनी पड़ेगी? अर्थात अवश्य दुर्गति का भाजन बनना होगा। इस पर बहुत ही गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। जल जीवन का आधार है। सचमुच जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए तो कहते हैं जल जीवन है। पानी की महत्ता को हमारे पूर्वज भी अच्छी तरह जानते हैं।

0: जानते थे जीवन के लिए इसकी आवश्यकता और उपयोगिता का हमारी तमाम प्राचीन पुस्तकों एवं धार्मिक कृतियों में व्यापक उल्लेख मिलता है। पानी के महत्व का वर्णन वेदों और दूसरी अन्य रचनाओं में भी मिलता है। मानव को हमेशा से ज्ञात रहा है कि हवा, जिसे हम ऑक्सीजन के रूप में जानते हैं, और पानी जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसलिए कहते हैं जल ही जीवन है, और शुद्ध जल स्वस्थ जीवन का आधार है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।
1: जी, बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक जानकारी दिलके अरुण कुमार तिवारी जी ने एक हिनका ले ली। एक राज छे कि हिनका बहुत बहुत धन्यवाद दे छे। निश्चित रूप से विदो भाई अपनो सने भी बात करी रहलो रहो, और अभी हिनी भी बहुत बढ़िया से जानकारी दिलके कि हमरा सनी के आत्मसंयम अपनावल पड़ते है कि नहीं। जना कि अभी बरसात दिन आबे, अपने कहलो ना अभी कि बरसात दिन आबि रहलो छे, तो जहाँ भी पोखर छे चाहे जे भी छे, तो वहना जगह पर ओकरा बचाना
2: छे, नहर जे भी छे वो जल संरक्षित करी के रखना चाहिए,
1: रखना चाहिए। आरो अब तो सरकार हो नी व्यवस्था करला छे कि शहरो सने में आखिर केना होते, शहरो सने में तो खाद कुआ रहे नहीं छे, तो वहाँ की छे कि अपनो छतों पर ओकरो व्यवस्था करे के निर्देश छे कि जे बड़ो बड़ो बड़ो बड़ो मकान बने छे, तो ओकरा सने में वर्षा के जल संरक्षित करे के लिए ओकरो बनाबे के निर्देश छे, तो वो बनाना चाहिए। आरो जे भी प्रयास हुआ पर अपनों से अगर एक बूंद जल भी बचावे छे तो वो भविष्य के लिए अच्छा होते। जना कि नल नहीं खुला छोड़ना छे, जितना आवश्यकता छे उतना बल्हो जे छे कि दू चार आधा घंटा जे छे कि नहाय रहल छे, हो सनी नहीं करना चाहिए, छे कि नहीं। आरो अभी छे तालाब कुआं सनी का अखनी अभी जे समय छे, अभी सुखाक समय छे, तो एकरा में साफ सफाई कर लेना चाहिए, करवाए देना चाहिए। कई योजना भी सरकार के चली रहा है, लेकिन फिर भी सरकार के जो योजना है वो तभी सफल हो जब वे में आम जनमानस के भागीदारी सुनिश्चित हो। की विदो भाई,
2: और साथ ही साथ जे छे हमरा सनी के वृक्ष लगाए पर जोर देना चाहिए। वृक्ष लगेला से जे होई छे वैसे बारिश होई छे।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पौधा रोपण तो निश्चित रूप से करना चाहिए। अब जे छे कि समय आबिये रहलो छ, मानसून हेते अपनो बिहार में, आरो जब
2: मान की छे कि अभी के जंगल के अंधाधुन कटाई करलो जाय रहल छे, जे गलत छे, प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमरा सनी के समय समय पर पौधा रोपण करना चाहिए, कहना कि वैसे की हुई छे वर्षा के संभावना बढ़ी जाए
1: बढ़े छे। आरु देखो आरु कई प्रकार के आपदा आवे से भी रुके छे जना। हाँ। देखो हर साले देखो अपना कोसी किनारा या गंगा के भी जे किनारा में जे कई जगह कट्टी लागी जाए छे। हाँ। जो पौधा रोपण बढ़िया से हुए तो ओकरास की छे कट्टी रुकते। हाँ, है कि नहीं। यह सब बढ़िया बात है, तो सबके आरो समझे छे अपनो श्रोता से नहीं। हाँ। निश्चित रूप से ये सब पर अमल होते, आरो अब कार्यक्रम में भी आगू बढ़लो जाए। हाँ, आरो अपनो श्रोता से नहीं के सुनवाई छे एक बढ़िया से रंग लोक भजन।

0: बहुत बहुत धन्यवाद। आरो अब जैसे कि कार्यक्रम में बढ़े छे आगू की भी तो भाई ठीक है ना कि संगीत भले तो अब कुछ आरो काम के बात भी भ जाए,
1: खेती गृहस्थी है इसनी की भी बात होना चाहिए। आ एकरा वास्ते जे छे सबसे पहले मौसम संबंधी सूचना श्रोता लोग को दे दे।
0: जी जी बिल्कुल दे दी एकदम विस्तार से।
1: हाँ, मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान के अवधि के दौरान दक्षिण बिहार के जिला में अगला दू दिन मौसम शुष्क आरु ओकरो बाद जिला में एक दू स्थान पर गरज चमक के साथ आंधी 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तेज हवा चले के आरु वर्षा हल्का हो के संभावना छे। हालांकि अरवल, जहानाबाद, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय जिला में अगला दू दिन लू चले के संभावना है। अधिकतम तापमान 37-38 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-75% और दोपहर में 20-25% रहे के संभावना छे। पूर्वानुमान के अवधि में 10-14 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पूर्वा हवा के चले के संभावना छे। तो गैरू भाई आब जे छे किसान भाई लोग के कुछ सामान्य सलाह भी देना चाहिए।
0: जी बिल्कुल।
1: देखो लू के स्थिति में फसल के नमी में कमी, पत्ती के झुलसना, फूल फल गिरना आ पशु में दूध उत्पादन कम होल पड़े छे। सुबह शाम हल्का सिंचाई करना चाहिए, मल्चिंग अपनाना, दिन में उर्वरक कीटनाशी के छिड़काव नहीं करना चाहिए आ पशु के छायादार स्थान में पर्याप्त स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना चाहिए। देरी से रोपलो गलो मूंग और उड़द फसल में हेयरी कैटरपिलर के प्रकोप के नियमित निगरानी करे के सलाह दिलो गलो छे। प्रकोप दिखाई दिला पर मिथाइल पैराथियोन 50 EC 2 मिलीलीटर पानी में छिड़काव करना चाहिए। अब सब्जी में जना भिंडी के सब्जी छे गेरू है, तो भिंडी में जे छे माइट आरु फल आरु तना छेदक आरु कद्दूवर्गी फसल में फल मक्खी के प्रकोप के नियमित निगरानी करे के सलाह दिलो गलो छे। माइट के प्रकोप दिखाई दिला पर एथियन 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। भिंडी में फल आरु तना छेदक के प्रबंधन हेतु मैलाथियन 50 मेलेबडॉन 1.0 मिलीलीटर प्रति लीटर या डाई एथोमिट 30 EC 1.5 मिलीलीटर पानी के छिड़काव करना चाहिए। कद्दूवर्गी फसल में फल मक्की के नियंत्रण वास्ते डाई मेथोएट 30 EC 2 मिलीलीटर 10 ग्राम चीनी प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
0: अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। ये तो बहुत बढ़िया जानकारी दिलो।
1: हाँ,
0: आरो
1: हाँ।
0: कुछ जे छे कि अभी समय छ आम लीची
1: कटहल। हाँ, तो बागवानी केना करना चाहिए एकरो एकरो बारे में कुछ सलाह दो।
0: बिल्कुल
1: कि देखो होइ छे कि आब तोरो वर्षा के समय एथो गर्मी के बाद
0: जी,
1: तो हाउ समय जे छे बागवानी के अनुकूल छे।
0: जी बागवानी के बगान में कीट प्रकोप के नियमित निगरानी करे के सलाह देलो जाय छे। यदि रेड बैंडेड कैटरपिलर के प्रकोप दिखाई दिया तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट 2 मिलीग्राम लीटर पानी या लैम्डा साइहेलोथ्रीन 2 मिलीलीटर पानी के छिड़काव करे के सलाह दिलो जाए छे। आरो बगान में पर्याप्त आरो निरंतर नमी बनाए रखे के भी सलाह दिलो जाए छे। लीची के तोराई फल के परिपक्वता के आधार पर करे के सलाह दिलो जाए छे। आरो शाही किस्म में तुराई निकट होय के कारण कोनो भी प्रकार के छिड़काव नहीं करे के सलाह दिलो जाए छे, यानी कि अभी कोई छिड़काव अब नहीं करना छे। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन हेतु लैम्डा साइहेलोथ्रीन 1 मिलीलीटर पानी के छिड़काव करे के सलाह देलो जाए छे। आरो जे अपना पशुपालक भाई सनी छे विदो भाई, ओकरा में जे गाभिन पशु छे जेकरो के ब्यान होय वाला छे, तो ओकरा में पशु के प्रसूति बुखार से बचावे के लेली खनिज मिश्रण 50-60 ग्राम प्रतिदिन आरो दूध दे वाला पशु के खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध के दर से देना चाहिए। आरो गाय के 400 ग्राम दाना किलो

0: तो दूध उत्पादन में भैंस के 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन के दर से दै के सलाह देलो जाए छे। आरो हरा चारा 20 से 25 किलोग्राम प्रति पशु प्रतिदिन जरूर खिलाबो। तो है तरह कुछ मौसम के जानकारी आरो अपनो किसान भाई सने के लिए महत्वपूर्ण सलाह। तो
1: हाँ
0: अब खेती गृहस्थी में भी आगू बढ़े छे
1: हाँ
0: आरो एक वार्ता सुनाए छे कि किसान भाई सनिक भेंट वार्ता पूर्व प्रसारित जे कि अनुभवी किसान से ले लगलो छे। भेंट वार्ता कार्ज के वैदही शरण सिंह आरो भेंट करता के विजय कुमार मिश्र।
2: श्रोताओं, अपना ये प्यारा देश भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि के क्षेत्र में जो अनुसंधानों के उपरांत जो उन्नत तकनीक सामने आती है और दूसरी बात अनुभवों के उपरांत जो उन्नत तकनीक सामने आती है ताकि हमारी खेती उन्नत हो सके, इस विषय पर समय समय पर आपके लोगों से हम मुलाकात करवाते रहते हैं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं स्टूडियो में बसंतपुर पीरपैंती क्षेत्र के एक प्रगतिशील किसान, अनुभवी किसान, और साथ ही साथ ये बताऊं तो कृषि के क्षेत्र में कई उपलब्धियों को हासिल किए हुए एक ऐसे किसान जिनको राज्य सरकार या राष्ट्रीय स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर उन्नत कृषि के लिए, उन्नत खेती के लिए कई बार कई अवसरों पर पुरस्कृत किया गया है। आप हैं वैदेही शरण सिंह जी। सबसे पहले वैदेही बाबू, आपका हम स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। आपकी उम्र अच्छी खासी है, 90 के आसपास के हैं और जिंदगी में एक लंबा चौड़ा अनुभव है खेती के क्षेत्र का। उन्नत खेती कैसे हो?
3: भारत गांवों का देश है।
2: जी
3: गांव में 75% लोग किसान हैं जो अन्न उत्पादन करते हैं, लेकिन उनकी खेती परंपरागत होती थी। उस समय विज्ञान इतना उच्च चरम सीमा पर नहीं था, करते थे लोग, लेकिन उतना उन्नत ढंग से खेती नहीं करते थे। पुराने लोग करते थे, घाघ ने कहा है, जिनके खेत पड़ा नहीं गोबर, उस किसान को ज्ञानो दूबर। खेती गोबर पड़ा तो खेत, नहीं तो कूड़ा रेत। तो वो लोग भी जानते थे, लेकिन उस समय हमारे पास खाद था जरूर, उर्वरक नहीं था। लेकिन आज उर्वरक है, उत्पादन भी बहुत उच्च कोटि का हो गया है, लोग किसानों में लगन भी है, श्रम करने की क्षमता भी है, नए नए यंत्र भी आ गए हैं। इसलिए अच्छी खेती तो यह एक अच्छी चीज़ है। स्वामीनाथन जी 60 के दशक में जब देखे कि अन्न का पूरा अभाव हो गया, हम विदेश से मंगाने लगे, तो उनको हार्दिक चोट आई। उन्होंने अमेरिका गए, वहाँ से बार्लोंग साहब को लिया और 3 गेहूँ लाया उन्होंने, एक 3 निर्माण हो
2: तीन प्रकार के गेहूँ
3: जी जी जी
2: और उसकी
3: और उससे 3 यूनिवर्सिटी में इन्होंने दिया। एक तो ICAR में दिया, दूसरा पंजाब में दिया, तीसरा पंतनगर में। लेकिन पंतनगर इसकी उपज क्षमता को देखकर इसका नाम रखा सोना।
2: सोना
3: जी। पंजाब यूनिवर्सिटी से इसका नाम रखा
2: कुछ हो ही।
3: अधिक भार देखकर उन्होंने रखा, तब इसका नाम बदल के ICAR कहा कि नहीं, तब तो गड़बड़ होएगा, कोई सोना कहेगा कोई, इसे दोनों का नाम जोड़ के उन्होंने रखा। और इस समय से तो खेती तो हमारी बहुत पुरा परंपरा से है, लेकिन इस तरह की बढ़ती हुई आबादी को देखकर आज हमारे वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिकों को और हमारे नेता लोगों को यह सिरदर्द हो रहा है कि आज हमारी जनसंख्या जो है आंगनिक माने ज्यामितिक बढ़ रही है, 2, 4, 16 इस तरह से डबल होते जा रहा है। और जबकि हमारी जनसंख्या इस तरह बढ़ रही है, अन्न उत्पादन हमारा आंगनितिक ढंग से हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यह संभव नहीं है। अब एक ही उपाय है कि हमको अब अत्याधुनिक ढंग की खेती करनी चाहिए। इसके लिए खाद दे दिया जाए, खेत की अच्छी जुताई की जाए, उसके साथ उर्वरक दिए जाएं, उर्वरक भी दिए जाएं तो इस तरह का उर्वरक दे जो मृदा हमारी अक्षुण न रहे, बर्बाद न हो, इसका भी किसान को ख्याल रखना चाहिए। ऐसा करने से दोनों हुआ, आम के आम गुठली का नाम
2: जी जी।
3: दोनों तरह का लाभ मिलेगा। अब इसके लिए हमको चाहिए नई नई तकनीक आई है, जैसे गेहूँ की SWR गेहूँ की श्री विधि, दूसरे धान की आई है श्री विधि, इसमें बीज कम लगता है और अन्य खर्च भी उर्वरक भी कम देना पड़ता है और हमारी उपज जो है परंपरागत खेती के साथ कंपेरिजन करके देखा गया है, तुलना करके तो ये दुगना हुआ है, आमद भी दुगना।
2: बदेवा वो अभी आपकी उम्र कितनी हुई?
3: हमारी उम्र करीब करीब अब 90 के लगभग पहुंच रही है।
2: 90 के आसपास। खेती में आप कब से जुड़े हुए थे?
3: खेती में हम 60 के दशक से, जब स्वामीनाथ जी बोले
2: जी जी।
3: आज देखे उनका तो हमको ये बहुत मैंने खुशी हुई। और एक हमारे वीडियो थे, उन्होंने कहा कि भाई यही तुम आइए करके आइए किए हो, क्या घर में बैठे हो, जाओ तुम बांका। बांका में जाके हमने ट्रेनिंग लिया और वहाँ हमको प्रेरित किए पुष्पेंद्र बाबू थे। हम लोग रोज इधर उधर भागे थे, नहीं देखो आए हो तो लगन से पढ़ो। और उस समय विराट साहब हम लोग के प्रिंसिपल थे, उन्होंने भी हमको समझाया भाई यही अच्छी खेती करो, यही अन्न देगा हम लोग का, वही माने उसी से हम लोग को पेट भरेगा। और तुम लोग जैसे आदमी नहीं लगोगे जवान तो कैसे होगा काम। तो वही हमारी लगन जगी, हम बहुत दूसरा दूसरा जगह भी।
2: यानी कहने का मतलब ये है कि आपके पास खेती के क्षेत्र का अनुभव जो है वो 60 वर्ष का 70 वर्ष।
3: जी हम 60 के दशक से अभी मैं उन्नत ढंग की खेती करता हूँ, लेकिन अब तो
2: जी जी जी
3: अब तो वो अब तो सकान होता नहीं है क्योंकि अवस्था भी
2: उम्र के हिसाब से, लेकिन आपके पास जिंदगी का एक बहुत बड़ा अनुभव
3: है। अभी बुलंदी है कि हमारे यहाँ भारत को विदेश से मुखापेक्षी नहीं होना, पर किसान का यही धर्म भी है, करना चाहिए।
2: तो अब सबसे बड़ी बात है कि ये 60 से 70 वर्ष का जो कृषि क्षेत्र का आपका अनुभव है, तो ये 60 से 70 वर्ष कृषि क्षेत्र के अनुभव के दृष्टिकोण से आपको अपनी जिंदगी में क्या लगा, कैसा लगा कि हमें किस प्रकार से खेती करनी चाहिए कि कृषि बहुत ही उन्नत हो, उत्पादन बहुत ही अच्छा हो, गुणवत्ता बहुत ही अच्छी हो?
3: हमारी यही तबीयत शुरू से रही है कि अधिक से अधिक उत्पादन कर, जहाँ हमको कुछ भी समस्या होता था मैं सब
2: खेती के में आरंभ से खेती में आरंभ से जैसे मिट्टी की तैयारी से लेकर आगे का क्रम में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उत्पादन ज्यादा अच्छा।
3: सबसे जरूरी है कि हमको दो तीन तीन बिंदु पर ज्यादा ध्यान देना होगा। पहले तो खेत की जुताई अच्छी हो, इसके बाद कुछ नई तकनीक आई है, जैसे धान काट के बहुत जगह धान की भी खेती होती है, तो अब उसकी जुताई के फेर में रहने पर हमारा पिछाड़ हो जाएगा, उपज कम होगी, इसलिए उसको आजकल जीरो चीले भी से वो मिलता है और उससे हम उसको लाद सहने लायक हो जाए तो उसमें घुमा कर हम बीज बो सकते हैं और उपज भी अच्छी मिलती है और बढ़िया होता भी है। यही सब मुख्य मुख्य बिंदु पर किसान दे दे तो आधुनिक खेती में कृषि बहुत अच्छी उपज होगी, यह मेरा विश्वास है, दावा है। और मैंने करके देखा भी है कि थोड़ा सा ध्यान अगर किसान दे दे तो हमको माने हम विदेश देखिए हम लोग विदेश से अन्न भेजने लगे हैं, ये हम लोग की लगन की बात है। किसान अगर इस तरह से ध्यान दे तो खेती तो सबसे उत्कृष्ट माना गया है, उत्तम खेती मध्यम मान तो उत्तम कैसे है कि हम अपने पूरे समाज का अपने पूरे देश का अन्न उत्पादन कर पेट भरते हैं, इसलिए किसान को ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा तो किसान है या तो पालन करता है अन्न उत्पादन करता है इसीलिए तो ब्रह्म है, विष्णु है कि यह पालन करता है अन्य जगह करता है इसलिए ब्रह्मा विष्णु के समान किसान को हम स्थान देते हैं। और उनको हम कहेंगे बार बार किसान भाइयों से कि उन्नत खेती कीजिए, और कम खर्च में अधिक आमद करने का प्रयास कीजिए। उर्वरक कम दीजिए, आप पहले मिट्टी की जांच करा लीजिए आपके मिट्टी में कितनी उर्वरक क्षमता है पौधा उपजाने के लिए, और कंपोस्ट दीजिए। कंपोस्ट देने से उर्वरक भी देते हैं तो वो न्यूट्रल कर देता है, उर्वरक की क्षमता को काट देता है, इसलिए खाद देने से खेत खराब नहीं होता है। यह बिल्कुल मैंने यह सोचना महान भूल है। और जैविक खेती करे किसान तो उससे और बढ़िया होगा। जैविक खेती करने के लिए सरकार भी अब मुखापेक्षी है कि भाई अब जैविक खेती किया जाए। तो जैविक खेती होगा कैसे, तो यही कंपोस्ट दिया जाए, थोड़ा हल्का उर्वरक दिया जाए, उसकी सिंचाई नियमित हो, उसका मैंने व्यवस्था बढ़िया से देख रेख, खर पतवार निकाला जाए उसके लिए। हम लोग जल लगाते हैं तो इसमें लेबर खर्च ज़्यादा होता है। आजकल कोनो बीडर है, उसको लाइन से बोइए, और उसको कोनो बीडर से हम लोग कर देते थे तो उसका घास भी सड़ता था और खाद होता था। किसान को मैं कहूँगा कि आप लोग, अब हम लोग धान काट के उसको जो जलाते हैं या गेहूँ काट के जलाते हैं, पराली उसको नहीं जला में, क्योंकि इससे पर्यावरण प्रदूषित होता
2: है। पर्यावरण को देखते हुए और खेती की उन्नत तकनीक जो अनुसंधान के फलस्वरूप सामने जो आए हुए हैं,
3: खाद बढ़िया होगा। हम उसको जला देंगे तो उसका माने हमारे दुष्प्रभाव भी करेगा पर्यावरण पर भी।
2: यानी कि अपनी पुरानी पारंपरिकता और साथ में वैज्ञानिकता को जोड़ते हुए अगर कृषि के क्षेत्र में आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से उत्पादन बहुत अच्छा होगा, खेती बहुत उन्नत होगी। इस विषय पर इतने अच्छे ढंग से प्रकाश डालने के लिए भाई बैदेही शरण सिंह जी, श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी बहुत ही बढ़िया विदो भाई, जानकारी दिल के और खास
1: सुन लिए। आए पहलो बार जान लिए कि कृषक का जे छे ब्रह्मा विष्णु और महेश के भी दर्जा दिलो छे।
0: बिल्कुल,
1: किसान अन्न उत्पादन करे छे तो ओकरा पालन करता भी कहलो जाए छे। आर ओ कहलो गले साथ साथ कि जो किसान न ध्यान द सही तरीका से मेहनत करे त अन्न के इतना उत्पादन हुल पारे छे कि हम विदेश भी अन्न के भेजल पारे।
0: जी बिल्कुल, अब सुनबे एक झूमर, लेकिन उकरा से पहने सुनी ले छे कुछ जरूरी संदेश।

0: बहुत ही बढ़िया झूमर।
1: हाँ सुन लिए, अब आज के कार्यक्रम से यही विदा ले छे, अगला दिन फिर मिलवे, सबका विदो के नमस्कार
0: और सबका गैरों के भी नमस्कार।

ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजने को हैं। अब रांची से प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ ने की युवाओं से देश सेवा की अपील। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए पेयजल की व्यवस्था के लिए जारी किए कड़े निर्देश। कहा कि किसी भी गांव, टोले या मोहल्ले में नहीं हो पानी की कमी। राज्य भर के मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाता सूची का हुआ प्रकाशन। अगले 2 सप्ताह तक मतदाता देख सकेंगे नाम। लातेहार पुलिस ने JJMP के 5 लाख रुपए के इनामी सब जोनल कमांडर समेत 2 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। हथियार और कारतूस भी बरामद। और मौसम विभाग ने राज्य के 8 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कल तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशव्यापी 19वें रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। देश भर में 47 स्थानों पर इस मेले का आयोजन किया गया था। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है और इस लक्ष्य को पाने के लिए कई अलग अलग क्षेत्रों में निवेश किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: इसी कड़ी में रांची के CCL सभागार में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां रेलवे, सेना और डाक विभाग सहित 6 विभागों के 132 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सांकेतिक रूप से 25 युवाओं को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपे। श्री सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से किया हर वादा क्रमबद्ध तरीके से पूरा कर रहे हैं।
2: हमारा स्टार्टअप अच्छा काम कर रहा है, हमारा MSME अच्छा काम कर रहा है, देश के युवा दुनिया के किसी भी युवा से कम नहीं। और इसी तरह रोजगार, सरकारी नौकरी और अब तक लगभग 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर है। यह है प्रधानमंत्री का मंत्र, सबका साथ सबका विकास। देश विकसित भारत 2047 की ओर, उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
0: उधर धनबाद के रेलवे ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 88 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के हर युवा को रोजगार से जोड़ना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि अब तक 12 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए।
3: झारखंड की वर्तमान स्थिति, आए दिन घटनाएं घट रही है, आए दिन महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ दुष्कर्म के बाद उनकी हत्याएं हो रही है। तो इस तरह की घटना के बाद भी राज्य सरकार जाग नहीं रही है। 7 साल से ज्यादा समय हो गया, महिला आयोग का गठन नहीं हो रहा है, राज्य सरकार गंभीर नहीं है महिला सुरक्षा को लेकर। तो राज्य की महिलाओं को उसका हक, उसका अधिकार मिले, उन्हें कोई एक अच्छा प्लेटफॉर्म जहाँ अपनी बात को रख सके।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए पीने के पानी की व्यवस्था के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। सभी जिलों के अधिकारियों और थानों को अपने दफ्तरों के बाहर और सार्वजनिक जगहों पर आम लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी गांव या टोले में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन को पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करने का निर्देश दिया है। राज्य में आज से सभी मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रदर्शित कर दी गई है, जिसे देखने के लिए सुबह से ही बूथों पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। SIR के तहत जिन मतदाताओं का नाम इस सूची में नहीं मिल रहा है, वे संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर BLO से संपर्क कर अपनी मैपिंग की प्रक्रिया पूरी करवा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि यह सूची आज से अगले 2 सप्ताह तक सभी केंद्रों पर उपलब्ध रहेगी। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। लातेहार पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन JJMP के 5 लाख रुपए के इनामी सब जोनल कमांडर शिव नारायण भुइया सहित 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। SP कुमार गौरव ने बताया कि इस कार्रवाई में उग्रवादियों के पास से हथियार बरामद हुए हैं।
4: टीम के द्वारा बड़ी ही कुशलता से शिवा सिंह की गिरफ्तारी की गई। शिवा सिंह खेरवार है, इसके विरुद्ध कुल 24 कांड दर्ज है। ये सब जोनल कमांडर के रूप में कार्यरत था और इसके विरुद्ध सरकार द्वारा 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। और इसके साथ ही एक सकलदीप उरांव जो एरिया कमांडर के रूप में JJMP में कार्यरत था, उसकी भी गिरफ्तारी लातेहार थाना क्षेत्र से हुई। साथ ही सभी नक्सलियों को यह भी अनुरोध किया जा रहा है कि मुख्य धारा से जुड़े, आत्मसमर्पण करें।
0: कोडरमा के NCC कैडेट आकाश कुमार ने अरुणाचल प्रदेश की 17,500 फीट ऊंची बर्फीली चोटी पर तिरंगा फहराया है। उन्होंने देश के 20 लाख कैडेट्स में से चुने गए केवल 8 कैडेटों में शामिल होकर झारखंड का मान बढ़ाया। NCC अधिकारियों ने आकाश की इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि यह उसके धैर्य, अनुशासन और इच्छा शक्ति के बल पर मिली सफलता है।
5: पूरे झारखंड की तरफ से यह पहला ऐसा लड़का है जिन्होंने 17,800 फीट पर जाकर तिरंगा को फहराया है। ये उसके लिए भी गौरव की बात है, हमारे लिए भी गौरव की बात है, हमारे बटालियन और हमारे उसके लिए भी गौरव की बात है। ये बहुत दुर्गम इलाका होता है जहां सांस लेने में कठिनाई आती है, कोई राहगीर नहीं मिलता है, ऑक्सीजन की कमी रहती है, पानी की कमी रहती है, ठंड उतना ही रहता है, फिर भी ये बच्चा वहाँ पर जाके सर्वाइव किया।
0: और अब मौसम का हाल। राज्य के 8 जिलों में कल गर्जन के साथ तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के अनुसार गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गुड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 25 से 2 जून तक नौतपा के दौरान भीषण गर्मी और लू का प्रकोप रहेगा, जिससे पारा और ऊपर जा सकता है। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज कई महत्वपूर्ण मुकाबले हो रहे हैं। पुरुषों की डेकैथलॉन स्पर्धा में भारत के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक तेजस्विन शंकर ने शानदार शुरुआत की है। उन्होंने 100 मीटर रेस और लंबी कूद में अपना सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाया और कुल 2,575 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर चल रहे हैं। धनबाद में

0: आगामी 5 से 7 जून तक 13वीं झारखंड राज्य सीनियर महिला एवं पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। झारखंड राज्य कबड्डी संघ के महासचिव संजय कुमार झा ने बताया कि बिरसा मुंडा पार्क के पास स्थित डॉक्टर जेके सिन्हा मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल में इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस महाकुंभ में राज्य भर से करीब 40 से 45 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें से अब तक 19 टीमों ने अपना पंजीकरण करा लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ ने की युवाओं से देश सेवा की अपील। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए पेयजल की व्यवस्था के लिए जारी किए कड़े निर्देश। कहा कि किसी भी गाँव, टोले या मोहल्ले में नहीं हो पानी की कमी। राज्य भर के मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाता सूची का हुआ प्रकाशन। अगले 2 सप्ताह तक मतदाता देख सकेंगे नाम। लातेहार पुलिस ने JJMP के 5 लाख रुपए के इनामी सब जोनल कमांडर समेत 2 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। हथियार और कारतूस भी बरामद। और मौसम विभाग ने राज्य के 8 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कल तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर पर। 7:11 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं बसंत कुमार के गाए कुछ लोकगीत। आरंभ में सुनिए एक देवी गीत।

अभी आप बसंत कुमार के गए लोकगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है मीडियम वेव 205.76 मीटर पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:25 होने को है। थोड़ी देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे पटना केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। पटना में 114 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में AI के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि समेत अन्य क्षेत्रों में विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। पटना विश्वविद्यालय सीनेट की वार्षिक बैठक में 535 करोड़ रुपए का बजट पारित। और दक्षिण बिहार के अधिकतर भागों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। रोहतास का डेहरी 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले का उद्घाटन करते हुए कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय आज देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है। श्री मोदी ने नव नियुक्त कर्मचारियों को आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित भी किया।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है, इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
0: हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का संकल्प लिया है। इसी संकल्प को पूरा करने का यह प्रयास है।
2: हर साल हम 2 करोड़ लोगों को नियोजन देंगे, नौकरी देंगे और उसी के तहत हर साल मेला लगाई जा रही है। आज कई एक जगहों में मेला लगी है, हजारों लोगों को आज नियुक्ति पत्र बटे हैं। गया का सौभाग्य है कि दूसरा बार हम लोग यहाँ इस भवन में उपस्थित हैं और यहाँ पर लगभग 74 लोगों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटा।
0: विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने देश भर के युवाओं को बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। गया में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं से किए वादे पूरा कर रही है।
3: रोजगार मेला के तहत आज देश के 47 स्थानों पर 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र दिया गया।

0: अग्रणी राज्य बनेगा। श्री चौधरी ने पटना के ऊर्जा सभागार में आयोजित दो दिवसीय एआई समिट का उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि एआई आधारित विकास से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।
1: लोग कहते हैं बिहार पीछे छूट गया है, अर्थव्यवस्था हो, सामाजिक संरचना हो, यह हमारे नौजवान यहाँ से पलायन कर रहे हैं। इस पूरे चीजों पर चर्चा हमको करनी है और एआई ऐसा सेंटर है, समिट जो आज आप लोगों ने रखा है और आगे भी आईटी डिपार्टमेंट आगे भी इसी तरह के समिट को लगातार करते रहेगा जब तक हम एआई के स्तर पर खड़ा नहीं होगा।
0: श्री चौधरी ने कहा कि इस समिट का मुख्य उद्देश्य राज्य को टेक्नोलॉजी हब बनाना और युवाओं को कौशल विकास के नए अवसर प्रदान करना है। कार्यक्रम में देश भर के एआई विशेषज्ञ, स्टार्टअप, डेवलपर्स और शोधकर्ता समेत हजारों की संख्या में छात्र शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज बक्सर जिले के डुमराव अनुमंडल में विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया। श्री चौधरी ने अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित बक्सर के प्रथम सांसद महाराजा कमल सिंह की प्रतिमा का लोकार्पण भी किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत युवा संगम के छठे चरण में पंजाब के आईआईटी रोपड़ के 60 चयनित युवा बिहार दौरे पर पहुंचे हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत आज पटना के राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पर आईआईटी रोपड़ के चयनित युवाओं का जत्था पहुंचा। आईआईटी पटना के नोडल अधिकारी डॉक्टर सतीन्द्र कुमार और कृपा शंकर ने उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने खुशी जाहिर की।
3: मैं दूसरी बार बिहार आई हूं। मैं पहले पटना साहिब जाके आई थी, तब मैं काफी छोटी थी, पर ये एक्सपीरियंस अच्छा है कमिंग फ्रॉम आईआईटी रोपड़ इन अ ग्रुप विद स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर द कल्चरल हेरिटेज।
2: युवा संगम कार्यक्रम के तहत बिहार दौरे पर आए प्रतिनिधियों को राज्य की सांस्कृतिक विविधता, परंपरा और सामाजिक जीवन से अवगत कराया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं नंदिनी।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के परीक्षार्थियों को सरकारी बसों में निःशुल्क आवागमन की सुविधा दिए जाने की घोषणा की है। श्री चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इसका उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों को बिना किसी आर्थिक और मानसिक तनाव के समय पर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में अगले 5 वर्षों में 1,00,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके अंतर्गत हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हर वर्ष जुलाई महीने में शिक्षक नियुक्ति विज्ञापन जारी किया जाएगा। शिक्षकों की स्थानांतरण नीति पारदर्शी होगी। महिला शिक्षकों का स्थानांतरण यथासंभव गृह जिले के प्रखंड के पंचायत में होगी। पुरुष शिक्षकों का गृह जिला के गृह प्रखंड के बगल के प्रखंड में तबादला किया जाएगा। सभी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को पोशाक की आपूर्ति जीविका के माध्यम से की जाएगी। समाचार कक्ष से रजनीकांत चौधरी।
0: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बोर्ड कार्यालय में परीक्षा परिणाम जारी किया। इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा में 3,711 परीक्षार्थी सफल हुए हैं, जबकि मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा में 3,450 छात्रों ने सफलता प्राप्त की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि ऊर्जावान कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत हैं। श्री नवीन ने प्रदेश भाजपा की ओर से पटना सिटी में आयोजित 2 दिवसीय दीनदयाल उपाध्याय

0: उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। इस अवसर पर पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल समापन सत्र में शामिल होंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि की गई है। बिहार में पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। पिछले 10 दिनों में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में तीसरी बार वृद्धि हुई है। प्रदेश के विभिन्न भागों में मौसम का मिला जुला रूप देखने को मिल रहा है। राज्य के दक्षिणी भागों में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। वहीं उत्तर पूर्वी भागों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण आंधी बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार औरंगाबाद, गया, भभुआ, बक्सर, अरवल, जहानाबाद समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में गर्मी के प्रकोप से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। पटना और आसपास के क्षेत्रों में भी अधिकतम पारा 41 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि राज्य के उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व भागों को छोड़कर अधिकतर क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत की संभावना नहीं है। इधर विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सुपौल, अररिया, किशनगंज और कटिहार समेत राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भागों में विभिन्न स्थानों पर तेज हवा के साथ मध्यम बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। हमारे सुपौल संवाददाता ने बताया है कि जिले के विभिन्न भागों में आज शाम तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। इस दौरान कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। पटना विश्वविद्यालय के सीनेट की आज संपन्न वार्षिक बैठक में 535 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: पटना विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में आयोजित बैठक में विश्वविद्यालय में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने, छात्र छात्राओं को छात्रावास की बेहतर सुविधा तथा वाचनालय और पुस्तकालय को आधुनिक बनाने संबंधी विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने अपने अध्यक्षीय भाषण में विश्वविद्यालय की उपलब्धियों और जारी कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर विधान पार्षद नीरज कुमार समेत सीनेट के अन्य सदस्य और विश्वविद्यालय के अधिकारी मौजूद रहे। नीरज कुमार ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बैठक के दौरान हुई चर्चा के बिंदुओं की जानकारी दी।
2: सीनेट में छात्र शिक्षक कर्मचारियों संवाद का माध्यम, उनका प्रोन्नति, मातृत्व का, कर्मचारी संघ के नेता का स्थानांतरण, छात्र नेता जो बच्चे पीएचडी के लिए दूसरी मांगों के लिए है, हम लोगों ने अनुरोध किया है कि कुलपति महोदय इनसे वार्ता करके समस्या का निदान करिए।
1: बैठक के दौरान परिसर के बाहर आईसा, AISF और अन्य छात्र संगठनों ने विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सीनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। पूर्व में किए गए कार्यों की समीक्षा की गई और भविष्य में किए जाने वाले योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। समाचार कक्ष से सत्यम कुमार।
0: भाकपा माले ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय और नीट पेपर लीक मामले को लेकर आंदोलन की घोषणा की है। पार्टी महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 24 मई को पटना में विरोध प्रदर्शन मार्च निकाला जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार पर लोगों की असली समस्याओं की अवहेलना करने का आरोप लगाया है। बेगूसराय के बरौनी रेलवे स्टेशन पर टाटानगर थावे एक्सप्रेस की एक बोगी से पुलिस ने 52 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। वहीं जिले के लाखो थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजितपुर गांव के पास सड़क हादसे में एक किसान की मौत हो गई। नवादा के कृष्णा प्रसाद स्टेडियम में आज से 2 दिवसीय जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है। जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित प्रतियोगिता में सरकारी और निजी विद्यालयों के छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया GMCH अस्पताल रोड में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी और 1 नगर निगम कर्मचारी घायल हो गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। पटना में 114 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा राज्य में AI के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि समेत अन्य क्षेत्रों में विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। पटना विश्वविद्यालय सीनेट की वार्षिक बैठक में 535 करोड़ रुपए का बजट पारित। और दक्षिण बिहार के अधिकतर भागों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। रोहतास का डेहरी 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सहरसा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रही हैं हमारी संवाददाता आरती कुमारी।
1: आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सहरसा जिले के सभी 10 प्रखंडों के चिन्हित स्थलों पर सहयोग शिविरों का आयोजन किया गया। शिक्षा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री मिथिलेश तिवारी भी इस शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने आम जनों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं, शिकायतों एवं आवश्यकताओं को गंभीरता पूर्वक सुना तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सहयोग शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की सहभागिता देखने को मिली। लोगों ने भूमि विवाद, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, आवास योजना, पेयजल, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सहित अन्य जनहित से जुड़े मामलों को मंत्री के समक्ष रखा। इस दौरान मिथिलेश तिवारी ने विभिन्न शिविरों का निरीक्षण भी किया। मंत्री ने कहा कि अब प्रत्येक महीने में 2 बार शिविर लगाए जाएंगे, जिससे जनता को ब्लॉक नहीं जाना पड़ेगा। जिले में भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य तेजी से किया जा रहा है। यह अभियान 2 मई से शुरू हुआ है, जो आगामी 31 मई तक जारी रहेगा। जिलाधिकारी दीपेश कुमार ने बताया कि जिले में मकान सूचीकरण का कार्य लगातार प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि जनगणना के तहत नियुक्त प्रगणक घर घर जाकर मकानों से संबंधित आवश्यक जानकारियां एकत्र कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने आम लोगों से अपील की कि जब प्रगणक उनके घर पहुंचे तो उन्हें सही और पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि जनगणना कार्य को सफलतापूर्वक और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जा सके। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच सहरसा जिले में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति स्थिति सामान्य बनी हुई है। गैस एजेंसियों द्वारा उपभोक्ताओं को नियमित रूप से होम डिलीवरी सेवा प्रदान की जा रही है। जिला प्रशासन ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे घबराकर या पैनिक में आकर घरेलू गैस सिलेंडरों की अनावश्यक बुकिंग ना करें। जिले में सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र में सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति आम नागरिकों को जागरूक करने तथा नियमों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के महत्वपूर्ण नियमों के पालन के लिए जागरूक किया गया। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में सहरसा जिले के महिषी

0: जल कार्यालय में कार्रवाई करते हुए टीम ने रिश्वतखोरी के आरोप में एक राजस्व कर्मचारी और उसके निजी सहयोगी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार राजस्व कर्मचारी पर रसीद काटने के नाम पर 16,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप है। सहरसा पुलिस द्वारा कोशी क्षेत्र में जनवरी 2026 से 8 मई 2026 तक नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने 448 तस्करों एवं आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इस दौरान लगभग 2,92,64,000 रुपये मूल्य के नशीले पदार्थ एवं शराब बरामद किए गए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जिले के विभिन्न स्थानों पर श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया गया। कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सहरसा जिले के सलखुआ प्रखंड अंतर्गत चानन पंचायत में जीविका हाट का उद्घाटन किया गया। यह पहल ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। यह जीविका हाट सप्ताह में 2 दिन संचालित किया जाएगा, जहां जीविका दीदियां ताजी सब्जियां और दैनिक उपयोग की वस्तुओं का विक्रय करेंगी। बीते दिनों अपर समाहर्ता निशांत कुमार ने सहरसा जिला एथलेटिक्स मीट के 41वें संस्करण का उद्घाटन मशाल प्रज्वलित कर किया। इस प्रतियोगिता में जिले के 370 खिलाड़ियों ने विभिन्न आयु वर्गों में भाग लिया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को 10 से 13 जून 2026 तक पटना में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा।
1: अभी आप सुन रहे थे सहरसा जिले की हलचल। सहरसा जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रही थी हमारी संवाददाता आरती कुमारी।
2: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 205.76 मीटर पर। 7:52 हो चुके हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर लहरी। कलाकार हैं ज्ञानी लक्ष्मण सिंह बेदी। कार्यक्रम के आरंभ में आइए इनसे सुनते हैं नानक का भजन।

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: सुरलहरी कार्यक्रम के आखिर में ज्ञानी लक्ष्मण सिंह बेदी से आइए सुनते हैं गुरु अर्जुन देव का भजन।

सुरलहरी कार्यक्रम में अभी आप ज्ञानी लक्ष्मण सिंह बेदी को सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर पर। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

0: और कास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: छोटी सी मुलाकात, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की आवाजों में।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: इस अंतराल के बाद रजनीगंधा कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब सुनिए फिल्म धर्मकांटा का गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में।

0: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: रजनीगंधा कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं धनवान फिल्म का गीत। आवाजें लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की हैं।

धनवान फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब दिल्ली से समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा

0: शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
1: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
2: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
5: विकसित भारत 2047, जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें, जहां जहां

0: इस चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज है, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
1: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: विकसित भारत जीरामजी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबी जीरामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा

0: years old and was unwell for some time. He served for many years as news editor in All India Radio. The India Meteorological Department has issued a red alert for heat wave to severe heat wave conditions over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbh tomorrow. Similar conditions will prevail over Haryana, Chandigarh and Delhi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's consistent support for peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy. U.S. Secretary of State Marco Rubio terms India as cornerstone of United States' approach towards Indo-Pacific region. Defense Minister Rajnath Singh asserts the country is becoming self-reliant in defense manufacturing, inaugurates artillery shell manufacturing plant at Shirdi in Maharashtra. Center asks Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by 5th of next month for strengthening defense infrastructure. 90 people killed in a coal mine explosion in China and Indian grappler Suraj Vashisht and Sagar Singh clinched silver medals at Asian Under 23 Wrestling Championships in Vietnam. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात का पुरअमन हल निकाले जाने के लिए भारत की लगातार हिमायत का इरादा किया है। अमेरिका के वज़ीर-ए-खारजा मार्को रूबियो ने भारत बहरुल काहिल खित्ते के तई अमेरिका की हिकमत अमली में भारत को मजबूत बुनियाद करार दिया है। वज़ीर-ए-दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत दिफाई सामान तैयार करने के शोबे में खुद कफील बन रहा है। वजीर मौसूफ ने महाराष्ट्र में शिरडी के मकाम पर तोपखाने के गोले तैयार करने के प्लांट का इफ्तिताह किया। मरकज ने नई दिल्ली में जिमखाना क्लब से कहा है कि वो दिफाई बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने की खातिर अगले महीने की 5 तारीख तक अपनी जमीन हवाले कर दे। चीन में एक कोयला कान में धमाका होने से 90 अफराद की मौत हो गई और भारतीय पहलवानों सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में 23 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में चांदी के तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में भारत अमेरिका जामे आलमी कलीदी साझेदारी में पेशरफ्त और इलाकाई और आलमी अमन सलामती से वाबस्ता मामलात पर तबादला ख्याल किया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने आज दोपहर नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जनाब मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि भारत और अमेरिका आलमी सतह पर फलाह बहबूद के लिए करीबी इश्तराक से काम करते रहेंगे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल भी मीटिंग के दौरान मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि जनाब मार्को रूबियो ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को मुख्तलिफ शोबों में बाहमी इश्तराक की पेशरफ्त से वाकिफ कराया। इनमें दिफा कलीदी टेक्नोलॉजी तजारत सरमायाकारी तवानाई की यकीनी फराहमी कनेक्टिविटी तालीम और आवाम से आवाम के रबते शामिल हैं। जनाब मोदी ने मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए तनाज़ात का पुरअमन हल निकाले जाने की बात दोहराई और कयामे अमन की कोशिशों के तई भारत की लगातार हिमायत का इरादा किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भारत के 4 दिन के दौरे पर आए हुए हैं। वो इस महीने की 26 तारीख को क्वाड वज़राए ख़ारजा की मीटिंग में शिरकत करेंगे। जनाब रूबियो आज सुबह कोलकाता पहुंचे थे जहां वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी गए और मदर टेरेसा की विरासत को खराज अकीदत पेश किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कल वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि उनके इस दौरे से भारत अमरीका जामे आलमी कलीदी साझेदारी को मजीद तकवीत मिलेगी। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका किस अंदाज से भारत बहरुल काहिल खित्ते के तई अपनी हिकमत अमली इख्तियार करता है, इसमें भारत की मजबूत बुनियाद है। नई दिल्ली में अमरीकी सिफारतखाने की एक जेली इमारत का इफ्तिताह करते हुए जनाब रूबियो ने कहा कि अमरीका में भारतीय कंपनियों ने जो 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी की है और पैक्स सिलिका के लिए भारत ने जिस मुआहदे पर दस्तखत किए हैं उससे इस बात की अक्कासी होती है।

0: है कि हुक्म की तामील ना होने की सूरत में कानून के मुताबिक इसे कब्जे में लिया जाएगा। मगरबी बंगाल में आयुष्मान भारत स्कीम इस साल जुलाई से शुरू हो जाएगी। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल मीटिंग के बाद कोलकाता में ये ऐलान किया। रियासती सेहत स्कीम स्वास्थ्य साथी के तहत मुस्तफीद होने वाले मौजूदा अफराद को आयुष्मान भारत स्कीम में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के सिलसिले में अगले महीने नई दिल्ली में एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए जाएंगे। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर जेपी नड्डा ने कहा है कि हिफ्जान सेहत के बुनियादी ढांचे के साथ साथ सेहत माहरीन और तिब्बी पेशावर अफराद की तरबियत भी उतनी ही अहमियत की हामिल है। उन्होंने आज नई दिल्ली में मेडिकल साइंसेज में कौमी बोर्ड इम्तिहानात इदारे की तकसीम असनाद की 23वीं तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। जनाब नड्डा ने जोर देकर कहा कि डॉक्टर हिफ्जान सेहत निज़ाम के सॉफ्टवेयर के तौर पर काम करते हैं, जबकि बुनियादी ढांचा और दीगर सहूलियात मुल्क के हार्डवेयर के मानिंद काम करती हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि हिफ्जान सेहत का शोबा और सेहतमंद भारत का नज़रिया विकसित भारत मिशन के हुसूल में मरकजी रोल अदा करेंगे, लिहाजा तिब्बी पेशावर अफराद का रोल मुल्क के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। हुकूमत ने वसीतर अवामी सलाह मशोरे के लिए विकसित भारत जी रामजी एक्ट 2025 के तहत जाब्तों का मसौदा शाया किया है। दही तरक्की की वजारत ने कहा है कि कोई शख्स मुतल्लिका फरीक तंजीम या इदारा जाब्तों के मसौदे के सिलसिले में गौर खोज के लिए इस माह की 21 तारीख तक एतराजात या मशवरे दाखिल कर सकता है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: विकसित भारत जी राम जी एक्ट 20 साल पुराने महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी एक्ट एमजी मनरेगा 2005 की जगह लेगा। इस नए कानून का मकसद इस माली बरस में रोजगार की कानूनी गारंटी के दिन 100 से बढ़ाकर 125 दिन करना है। वजारत के मुताबिक जाब्तों का मुसवदा दफा 33 और कानून की दीगर मुतालिका दफात से मुताबिकत रखते हुए तैयार किया गया है। वजारत ने कहा है कि कौमी सतह की रहबर कमेटी के जाब्तों, मरकजी ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल के जाब्तों, इंतजामी अखराजात से मुतालिक जाब्तों और शिकायत के इजाले से मुतालिक जाब्तों को सलाह मशवरे के लिए अवाम के सामने रखा गया है। नए कानून में बरवक्त शफाफ और जवाबदेह तरीक़ेकार के तहत उजरत की अदायगी पर जोर दिया गया है। इस कानून के तहत अगर मुकर्रर मुद्दत के दौरान रोजगार फराहम नहीं किया जाता तो बेरोजगारी भत्ते की भी सहूलत है। दिल्ली से अक्षित वैद्यन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: चीन के शांक्सी सूबे में कोयले की एक कान में हुए गैस के एक धमाके में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 90 हो गई है। गैस का यह धमाका कल हुआ था। सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि कान में काम करने वाले 200 कानकुनों को अब तक बचा लिया गया है, जबकि बचाव कार्रवाई जारी है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने एक जामे बचाव कार्रवाई और जख्मियों के इलाज के लिए हिदायत जारी की हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चीन के शांक्सी सूबे में कान में हुए हादसे में जान गंवाने वालों के तई दुख का इजहार किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम ने भारतीय अवाम की जानिब से चीन के सदर शी जिनपिंग और चीन के लोगों से अपनी ताजियत का इजहार किया। उन्होंने सभी बाकी लापता अफराद की जल्द और बाहिफाजत बाजियाबी की भी दुआ की और इस मुश्किल घड़ी में सोगवार कुंभों से यकजहती का इजहार किया। फ्रांस ने इसराइल के कौमी सलामती के वजीर एटामार बेन गवीर के फ्रांस में दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी है। फ्रांस के वजीर खारजा जीन नोएल बेरोट ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि इस इकदाम से गजा जाने वाले समुद्र फ्लोटिला में सवार सरगर्म कारकुनों के साथ रवा रखे गए बर्ताव के मामले पर बढ़ते हुए गम गुस्से की अक्कासी होती है। फ्रांस के वजीर खारजा ने यूरोपीय यूनियन पर भी जोर दिया कि वो इसराइल के कौमी सलामती के वजीर पर पाबंदियां आयद करे। शुमाल मशरकी यूक्रेन के शहर सूमी के मजाफाती में रूस के ड्रोन हमले में आज एक शख्स हलाक और 9 जख्मी हो गए। यूक्रेन के लुहानसिक खित्ते में रूस के कंट्रोल वाले इलाके में एक कॉलेज के रिहायशी इलाके पर यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जवाबी फौजी कार्रवाई का हुक्म दिया था। आज वियतनाम के डेनेंग में भारत के कुश्ती खिलाड़ी सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप के मर्दों के ग्रेको रोमन जुमरों में चांदी के तमगे जीते हैं। 60 किलोग्राम के जुमरे में सूरज वशिष्ठ कजाकिस्तान के कुश्ती खिलाड़ी से खिताबी मुकाबले

में 4-0 से हार गए। वहीं 67 किलोग्राम के जुमरे में सागर सिंह को फाइनल में उज्बेकिस्तान के कुश्ती खिलाड़ी ने 9-0 से शिकस्त दी। आखिर में खास-खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुजाकरात और सिफारतकारी के जरिए तनाजात का पुरअमन हल निकाले जाने के लिए भारत की लगातार हिमायत का यादा किया है। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत बहरुल काहिल खित्ते के तई अमेरिका की हिकमत अमली में भारत को मजबूत बुनियाद करार दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत दिफाई सामान तैयार करने के शोबे में खुद कफील बन रहा है। वजीर मौसूफ ने महाराष्ट्र में शिरडी के मकाम पर तोपखाने के गोले तैयार करने के प्लांट का इफ्तिताह किया। मरकज ने नई दिल्ली में जिमखाना क्लब से कहा है कि वो दिफाई बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने की खातिर अगले महीने की 5 तारीख तक अपनी जमीन हवाले कर दे। चीन में एक कोयला खान में धमाका होने से 90 अफराद की मौत हो गई और भारतीय पहलवानों सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में 23 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में चांदी के तमगे जीते। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अल्पी कुमारी।
1: और मैं संजय किशोर।
0: विज्ञान भारती में हम विज्ञान, तकनीक, शोध, नवाचार और समाज पर उनके प्रभाव से जुड़े विषयों को आप तक पहुंचाते हैं।
1: आज के अंक में हम चर्चा करेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, विज्ञान और तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका पर।
0: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और सुपर कंप्यूटर,
1: दुर्लभ खनिजों के निष्कर्षण की नई तकनीक,
0: विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और बिहार में प्रवासी पक्षियों की गणना, खरीफ फसलों के नई किस्में एवं जैविक उर्वरक,
1: साथ ही सुनेंगे विज्ञान जगत की बातें, मई माह में जन्मे और दिवंगत महान वैज्ञानिकों के योगदान तथा मई माह के प्रमुख विज्ञान दिवस।

गौरवशाली 90 वर्षों की यात्रा। इन 9 दशकों में आकाशवाणी ने केवल समाचार और मनोरंजन ही नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक के जन जागरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत होती है वर्ष 1927 से, किंतु वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई। बाद में 1957 में इसे आकाशवाणी नाम मिला। स्वतंत्रता के समय देश में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे और इनकी पहुंच लगभग 11% आबादी तक थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। वर्तमान में आकाशवाणी के 470 से भी अधिक केंद्र कार्यरत हैं, जो देश के लगभग 92% भौगोलिक सीमा और 99% जनसंख्या तक पहुँच रखते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक है। यह आंकड़ा केवल प्रसारण क्षमता का संकेत नहीं देता बल्कि यह दर्शाता है कि आकाशवाणी ने भारत के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक विज्ञान और तकनीक की जानकारी पहुंचाने में कितनी प्रभावी भूमिका निभाई है। आज FM, डिजिटल रेडियो और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के माध्यम से विज्ञान आधारित कार्यक्रम नई पीढ़ी तक पहुंच रहे हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष केवल प्रसारण की यात्रा नहीं बल्कि ज्ञान, शिक्षा और वैज्ञानिक चेतना के प्रसार की गौरव गाथा है। स्वतंत्रता के बाद देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। कम उत्पादन, पारंपरिक खेती और वैज्ञानिक जानकारी के अभाव के कारण किसान आर्थिक कठिनाइयों में थे। ऐसे समय में आकाशवाणी किसानों का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मार्गदर्शक बनकर सामने आया। कोविड-19 महामारी के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाहें तेजी से फैल रही थीं। वहीं लोग वैक्सीन से डर भी रहे थे, कहीं घरेलू उपचारों को वैज्ञानिक सत्य मान लिया गया था। ऐसे समय में आकाशवाणी ने डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के माध्यम से प्रामाणिक जानकारियां प्रसारित की। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इंटरनेट की पहुंच सीमित थी, वहां रेडियो सबसे विश्वसनीय माध्यम बना। बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा और समुद्री तूफान जैसे आपदाएं हर वर्ष लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं। ओडिशा चक्रवात, बिहार बाढ़, असम की बाढ़ और सुनामी जैसी आपदाओं के दौरान रेडियो जीवन

0: रक्षक माध्यम के रूप में सामने आया। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में आकाशवाणी ने स्वयं को तकनीकी रूप से आधुनिक भी बनाया है। विज्ञान एवं तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका के बारे में आइए जानते हैं ICMR के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर VK श्रीवास्तव से।
1: 1990-92 के बीच में ICMR ने आकाशवाणी के साथ मिलकर के एक रेडियो डेट प्रोग्राम किया। डेट मतलब ड्रग एल्कोहल टोबैको एजुकेशन। ये ऑल इंडिया रेडियो के 84 स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हुआ प्रोग्राम, 30 एपिसोड का, 16 लैंग्वेजेस में। तो ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। सबसे ज्यादा इसका फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। इसका इवेल्युएशन हम सिर्फ दो जगह कर पाए, कर्नाटक और गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों में। उससे पता चलता था 4-6% लोगों में, कहीं 4% कहीं 6% लोगों ने इस प्रोग्राम को सुनने के बाद में इन बुरी आदतों से छुटकारा पाया। एक सबसे और अच्छी बात थी, ये अपने से छोटे बच्चों को सिखाते थे, उनमें बुराइयां बताते थे, उनको शिक्षित करते थे। दो तरह का फायदा हुआ इस प्रोग्राम से। तो हम तो चाहते हैं इस तरह के प्रोग्राम और होते रहने चाहिए। सन 86 के आसपास भारतवर्ष में HIV का दौर शुरू हुआ। सन 88 में फिर मैंने HIV पर एक नेशनल फीचर, आधे घंटे का फीचर किया। उसमें हिंदुस्तान भर में जा जाकर जो उस समय के अपने एक्सपर्ट थे, मुंबई में डॉक्टर गिलाडा थे, चेन्नई में डॉक्टर सोलोमन थे, और यहाँ के उनकी पेशेंट्स के इंटरव्यू किए, यहाँ होम्योपैथिक एक्सपर्ट्स, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स, एलोपैथिक एक्सपर्ट्स, WHO, इन सबके से इंटरव्यू करके इनकी रिकॉर्डिंग करके 30 मिनट का प्रोग्राम एक फीचर किया।
0: विज्ञान जगत में किए गए अपने

0: बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और नवीन अनुसंधानों की। संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एनर्जी और बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। आईआईटी पटना के निदेशक डॉक्टर टीएन सिंह,
1: यहाँ पर तीन शोध के एक नए आयाम खुले हैं जिनको हम इनक्यूबेशन सेंटर कहते हैं, टीबीआई, टीआईएच। इन तीनों का मैंडेट अलग अलग है और इसमें एक नए नवाचार और नए तरह की शोध करने वाले विद्यार्थियों, न केवल आईआईटी पटना के लेकिन बिहार और सुदूर राज्यों से भी आए हुए विद्यार्थी इसमें काम करते हैं। नई एक शोध हमारे यहाँ के एक शिक्षक और विद्यार्थियों ने मिलकर किया है कि डिमेंशिया की बीमारी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है और उसके तहत उनका पेटेंट भी ग्रांट हुआ है। इस तरह से हमारे यहाँ 100 से ऊपर के पेटेंट फाइल हुए हैं और बहुत सारे ग्रांट भी हुए हैं। अभी भाषिनी प्रोजेक्ट चल रहा है जो अंतर इंस्टीट्यूशनल कार्यक्रम है जिसमें कि कुछ आईआईटी, कुछ एनआईटी, कुछ यूनिवर्सिटी सभी मिलकर के ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें एक भाषा में यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है तो सुनने वाला अपनी लोकल भाषा में उसको समझ सके और उसको सुन सके और प्रश्न भी कर सके अपनी भाषा में, तो वक्ता के पास उसकी भाषा में जिसमें वो बोल रहा है उसको वो प्रश्न का उत्तर देगा। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत ही सफल प्रयोग है यहाँ के शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए और पहली बार आईआईटी पटना से विदेश में बैटरी गई है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। बिहार में पहला सुपर कंप्यूटर आईआईटी पटना के प्रांगण में स्थित है। हमारे यहाँ जो सुपर कंप्यूटर है ये ब्रह्मास्त्र हम बोलते हैं, ये सुपर कंप्यूटर की टेराबाइट में इसकी स्पीड हो, टेराबाइट बहुत ही फास्ट स्पीड, त्वरित काम को निष्पादित करने का इसके अंदर जो है काम है। एआई के क्षेत्र में काफी यहाँ काम हो रहा है, केवल हम भाषा तक ही नहीं, हम एआई के क्षेत्र में फॉर्मेशन तक के अंदर किस तरह से 5-6G को स्पीडअप किया जाए उसके लिए भी, और क्वांटम में भी यहाँ का फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विभाग जो है वो राष्ट्रीय स्तर के जो मिशन है क्वांटम का उसके साथ जुड़े हुए हैं।
2: दुर्लभ खनिज यानी रेयर मिनरल्स या क्रिटिकल मिनरल्स, ये ऐसे खनिज हैं जो स्वच्छ ऊर्जा, विद्युत, वाहन, रक्षा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा उन्नत विनिर्माण उद्योगों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर 17 खनिजों को दुर्लभ खनिज का दर्जा दिया गया है जिनकी मांग तेजी से बढ़ रही है क्योंकि विश्व ऊर्जा परिवर्तन यानी एनर्जी ट्रांजिशन और हरित प्रौद्योगिकी की ओर अग्रसर है। भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन या ANRF देश के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के लिए धन देने, बढ़ावा देने और रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए अनिवार्य सर्वोच्च निकाय है। ANRF ने IIT पटना के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रत हती के परमानेंट मैग्नेट यानी स्थायी चुंबक से दुर्लभ खनिज के निष्कर्षण के अनुसंधान को ग्रांट दिया है।
3: जो आपका दुर्लभ खनिज है और हम लोग बोलते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स है, ये है कि आपका जो हम लोगों का डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होता है तो वो सब चीजों में ये दुर्लभ खनिज इस्तेमाल होता है। हर देश में किसी किसी जगह में आपका ये दुर्लभ खनिज के जो डिपॉजिट्स होता है, तो ये डिपॉजिट से अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं जो हम लोग उनको बोलते हैं कि प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी रिसोर्स, तो वो उसके जियोलॉजिकल हैजर्ड्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो होता है हमारे पास सेकेंडरी रिसोर्स होता है। सेकेंडरी रिसोर्स ये होता है कि जैसे ई वर्ज्य होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है आपका, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो भी हम लोग डे टू डे यूज करते हैं, तो सारा चीज एक यूजुअल लाइफ पीरियड के बाद वो ऑब्सोलीट हो जाता है और ऑब्सोलीट हो जाने के बाद क्या है कि उसमें उससे हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से उसको हम लोग निष्कासित करते हैं। निष्कासित करने के लिए आपके पास तरीका जो होता है, टेक्निकल तरीका, वो बोलते हैं कि पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी एंड बायोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी में हम लोग क्या करते हैं कि आपको हीट ट्रीटमेंट देते हैं और उससे क्या है कि अगर आप मेटेरियल प्राइमरी सोर्स पे अगर कोई मटेरियल है, प्लास्टिक्स है, तो उसको जलाया जाता है तो उससे प्रदूषण हो सकता है। तो इसलिए दूसरा तरीका क्या होता है कि आपके पास हाइड्रोमेटलर्जी होता है। हाइड्रोमेटलर्जी में जनरली लोग क्या करते हैं कि एसिड और एल्काली यूज करते हैं, तो वो जो एसिड और एल्काली होता है वो जनरली कन्वेंशनली लोग उसका स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्काली यूज करते हैं। तो उसके बदले में अगर कुछ ये है कि अगर आप कुछ नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड यूज करें, और नाउ क्या है कि नोबेल जो टेक्निक आया है उसको बोलते हैं कि हम लोग डीप यूटेक्टिक सॉल्वेंट। उससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो हमें एनआरएफ से जो रिसर्च ग्रांट मिला है इससे हम लोग कर रहे सेकेंडरी रिसोर्स परमानेंट मैग्नेट। उससे परमानेंट मैग्नेट जनरली आप देखेंगे व्हीकल्स में यूज होता है, जनरली देखेंगे विंड मिल में यूज होता है। सो परमानेंट मैग्नेट जब वो ऑब्सोलीट हो जाता है उस परमानेंट मैग्नेट से, और मेजोरिटी ऑफ द सोर्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट

0: चाइना है, तो वो सब आप एक्सपोर्ट सब बंद कर दिया। जो डेवलप कंट्रीज है जिनके पास क्रिटिकल मिनरल का मेजोरिटी ऑफ द रिजर्व्स है, वो लोग इसका दुर्लभ खनिज का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। जो अगर स्वावलंबी बनना है भारत को, तो इसलिए क्या है कि हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से ये सब पदार्थ और दुर्लभ खनिज निष्कासित करना है। तो इसी संदर्भ में ये जो परमानेंट मैग्नेट से क्रिटिकल मिनरल निष्कासित करना डीप यूटेक सॉल्वेंट लेके, ये एक हमारा पहल है जिसमें हम लोग काफी शोध कर चुके हैं और आगे शोध को हम लोग स्केल अप करेंगे।
1: और अब हम जानेंगे प्रवासी पक्षी के बारे में। प्रत्येक वर्ष हजारों लाखों किलोमीटर का सफर तय करके हमारे देश, हमारे शहर और हमारे इर्द गिर्द पहुंचते हैं, और इन्हीं पक्षियों के लिए 9 मई 2026 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। इस बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम था हर पक्षी महत्वपूर्ण है, आपका नजरिया मायने रखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पक्षी दो प्रमुख वजहों से प्रवास करते हैं, भोजन और घोंसले की तलाश में ये पूरी दुनिया में प्रवास करते हैं। वर्ल्ड लाइफ के अनुसार विश्व के पक्षियों की 40% प्रजातियां अब घट रही हैं। प्रवासी पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनकी घटती संख्या जल की गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रति कमजोर सहनशीलता का कारण बन रही है। भारत में हर साल 370 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। बिहार में 70 से अधिक प्रवासी पक्षियों सहित कुल 260 से ज्यादा प्रजातियों के 10,000 से अधिक पक्षियों की गणना की गई है। आप ई बर्ड बिहार पर जाकर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पटना, भागलपुर या और भी जो क्षेत्र हैं, उनमें हाल ही में देखे गए पक्षियों की सूची और चेकलिस्ट को देख सकते हैं। बिहार में प्रवासी पक्षियों के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर देव नारायण चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी डिपार्टमेंट, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर।
2: पिछले कई सालों से बिहार का जो वन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो और बॉम्बे की संस्था है बीएनएचएस, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इन दोनों के प्रयास से पक्षियों की गणना शुरू हुई है। 2022 से इसकी शुरुआत हुई और ये 26 लगभग 5 गणना हो चुकी और इससे काफी अच्छे परिणाम आए हैं। हम लोगों ने बिहार के 3800 जिलों में जितने भी इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स है जहाँ पर इन पक्षियों का वास होता है, ये प्रवासी पक्षी जहाँ से आकर के पनाह लेते हैं, वहाँ पर इसकी गिनती शुरू हुई और इसमें जो भी पक्षी विशेषज्ञ थे, जो बर्डर थे, जो ट्रेनर थे, उन लोगों को इसमें लगाया गया और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑर्डिनेटर की बहाली हुई जो एक्सपर्ट के रूप में काम करते हैं। इससे अच्छे परिणाम आए तो धीरे धीरे हर साल कुछ कुछ वेटलैंड की संख्या भी बढ़ती चली गई, उसको भी हम लोग कवर करते हैं। तो इसमें देखा गया कि एक अच्छा डाटा तैयार हो गया और आने वाले दिनों में बिहार के पक्षियों पर एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। जो इसके पहले 2012 में ही एक बुक पब्लिश हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा, बर्ड्स ऑफ बिहार, उसका जो इन्फॉर्मेशन था उससे कहीं ज्यादा इस रिपोर्ट के बाद जो ये छपेगा, तो आने वाले दिनों में जो एकेडमिक्स के फील्ड में ये एक अच्छी जानकारी साबित होगी।
1: और अब जानते हैं विज्ञान जगत की नवीनतम घटनाओं के बारे में। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाला सुपर एल नीनो 1950 के बाद सबसे शक्तिशाली में से एक हो सकता है, जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है। यह कई क्षेत्रों में बाढ़, सूखा, हीट वेव और जंगलों में आग जैसी घटनाओं को बढ़ा सकता है। जलवायु परिवर्तन इसकी प्रकृति को और अधिक अनिश्चित बना रहा है। सुपर एल नीनो का मतलब समुद्र के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की असामान्य बढ़ोतरी से है, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है। खासकर दक्षिण एशिया पर इसका अधिक असर पड़ता है।
3: भारत के असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पहली बार सैटेलाइट ट्रैक की गई गंगा सॉफ्ट शेल कछुए को छोड़कर संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। यह संवेदनशील मीठे पानी की प्रजाति का कछुआ है जो नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके व्यवहार, प्रवास और पर्यावरणीय खतरों के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए ट्रैक की जा रही है। यह पहल वैज्ञानिकों को इस जलीय सरीसृप प्रजाति के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करने में मदद करेगी। इस प्रजाति को असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है। और अब स्वाद और सेहत से भरपूर बिहार की पहचान मखाना के बारे में जानते हैं। सुपर फूड बन चुका मखाना अब वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। मखाना अनुसंधान केंद्र में मखाना की नई प्रजातियों और उत्पादन तकनीकों पर कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में ICAR राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार।
4: कोरोना काल के बाद से जब स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता काफी तेजी से बढ़ी है, तो मखाना में पाए जाने वाले जितने औषधीय गुण है, इसमें पाई जाने वाली जितनी पौष्टिकताएं हैं, तो इन गुणों के प्रति, इन स्वास्थ्य लाभों के प्रति बहुत तेजी से दुनिया भर में जागरूकता हो रही है। इसमें मिनरल्स काफी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटाशियम, पोषक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे न्यूट्रिशन के लिए, जैसे आयरन, जिंक इत्यादि बहुत अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। इसके अलावा ये जीरो फैट फूड इसे मानते हैं, इसमें फैट की मात्रा बहुत ही कम है, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें बहुत कम होता है, मधुमेह के जो मरीज हैं वो भी बहुत सुगमता से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, मोटापे की समस्या से जो ग्रसित है वो भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं क्योंकि फैट इसमें बहुत कम है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे औषधीय गुण है। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के माध्यम से भी एक नई प्रजाति अभी विकसित की जा रही है और मेरा मानना है कि अगले एक वर्ष में ये वैरायटी आ जाएगी जिसकी उत्पादन क्षमता यहाँ से करीब 15-20% और ज्यादा होगी। और इसके अतिरिक्त कांटे रहित मखाना के प्रभेदों के विकास पर भी अभी चर्चा हो रही है।
1: हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को सीमित करने की बात कही है ताकि खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा को प्राप्त किया जा सके। बिहार के 13 जिलों में जैविक खेती की जा रही है। कृषि विज्ञान में खरीफ खाद्यान्न की नई प्रजाति के विकास एवं ब्लू अलगी जैविक उर्वरकों के उपयोग के संबंध में बता रहे हैं डॉक्टर दिव्यांशु शेखर, कृषि विज्ञान केंद्र जाले दरभंगा।
5: जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को प्राथमिकता में रखा है कि हम रासायनिक उर्वरकों से हटकर प्राकृतिक या जैविक उर्वरकों की तरफ बढ़े, जिससे कि न कि हमारा फसल की उत्पादकता बनी रहे, साथ में ही उसकी गुणवत्ता में भी कोई ह्रास न हो। खास तौर पे धान की फसल में जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी या जिसको हम अजोला कहते हैं, उसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है या आवश्यकता है वो 10-20% तक हम उसके द्वारा कम कर सकते हैं। साथ में ही इसके प्रयोग करने से हमारे भूमि में कार्बनिक तत्वों की भी मात्रा बढ़ती है और साथ साथ जो खरपतवार होते हैं उनकी भी संख्या कम होती है।
3: और अब अंतरिक्ष की बात। हाल ही में विश्व का पहला ऑप्टो SAR सैटेलाइट मिशन दृष्टि लॉन्च किया गया। यह एक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट है। अंतरिक्ष क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों के बारे में हमसे बात की भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुअनंतपुरम के कुलपति प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी ने।
6: दो चीज होता है, देखिए आप जो 100 साल से हम लोग कोडाईकनाल से सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं, ये जरूरी इसीलिए है कि वो हमारे सबसे नजदीकी तारे है, उसका चुंबक क्षेत्र का कुछ परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन का एक 11 साल का एक हम बोलते हैं सोलर साइकिल जैसा है, तो कभी कभी उसमें चुंबक क्षेत्र थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी कभी थोड़ा कम होता है। एंड ये जो बढ़ना और कमना का जो ऑसिलेटन पैटर्न जो है, इसको स्टडी करने के लिए एक डायनामो मैकेनिज्म को हम लोग मैथमेटिकली हम इस्तेमाल करते हैं। सोलर डायनामो एक थ्योरी है जो हमको समझने के लिए ये करते हैं कि क्यों ऐसा सूर्य में चुंबक क्षेत्र 11 साल का एक पीरियोडिसिटी क्यों रहता है। बट ये तो एक थ्योरी हो गया, थ्योरी को तो मैच करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए, ऑब्जर्वेशन जितना लंबा होगा तभी इतना अच्छा है। इसीलिए ये कोडाईकनाल में ऑब्जर्वेशन हम लोग 1904 साल से चालू किया। उसी जमाने में तो फोटोग्राफिक प्लेट होता था, फिल्म होता था, हमने वो पूरा जो आर्काइव है उसको पूरा डिजिटाइज किया। आजकल के जमाना में तो कोई हाथ से तो कुछ करते नहीं, आपको इमेज होना चाहिए जो डिजिटल मोड है। एक्चुअली पुराना आर्काइव है उसको डिजिटाइजेशन करना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है। तो ये 100 साल का पूरा डेटा डिजिटाइज करने के बाद हमने अभी अध्ययन किया कि ये 11 ईयर साइकिल कैसा होता है। कभी कभी एक साइकिल थोड़ा बड़ा होता है, कभी थोड़ा छोटा होता है। जब बड़ा होगा उसमें सोलर जो तूफान वो और ज्यादा होगा, जब थोड़ा चुंबक क्षेत्र थोड़ा कम होगा तो वो भी जानकारी होना चाहिए। एक तो है कि अभी हाल ही में ये तूफान आने वाला है या नहीं आने वाला, ये जानकारी, और एक है कि पहले ऐसा तूफान होता था कि नहीं होता था। अभी सन जो स्टार वो मिडिल एज में है, वो जब बड़ा हो जाएगा, वो रेड जायंट हो जाएगा, हम तो बच नहीं पाएंगे। अभी मिलियनेयर में नहीं होने वाला है तो अभी सोचने का नहीं है, बट ये सब जानकारी होना चाहिए।
1: मई का महीना विज्ञान के इतिहास में बेहद खास है। कई महानतम वैज्ञानिकों का जन्म हुआ जिन्होंने भौतिकी, चिकित्सा और रासायन विज्ञान की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इस महीने देश के कुछ ऐसे महान वैज्ञानिक और गणितज्ञों का जन्म हुआ जिन्होंने न केवल भारत में आधुनिक विज्ञान और परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी बल्कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया। डॉक्टर राजा रमन्ना, आप भारत के परमाणु कार्यक्रम के शिल्पकार कहे जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1925 को तुमकुर कर्नाटक में हुआ। के आर रामनाथन, आप भारत के मौसम विज्ञान और ओजोन अनुसंधान के जनक माने जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1893 को पलक्कड़ केरल में हुआ। हरीश चंद्र, जो कि गणित और भौतिकी के महान सेतु कहे जाते हैं, आपका जन्म हुआ 11 मई 1923 को कानपुर उत्तर प्रदेश में। आप महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के सहायक भी रहे। आपने लाई ग्रुप्स और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में क्रांतिकारी सिद्धांत दिए, जिन पर आज भी क्वांटम मैकेनिक्स और आधुनिक गणित टिकी हुई है। हमारे अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विजय भटकर, आप भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। आपका जन्म 11 मई 1946 को मोरंबा महाराष्ट्र में हुआ। आपके नेतृत्व में सीडेक ने साल 1991 में भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया। आगे नाम आता है प्रोफेसर डॉक्टर बलराम भार्गव का, जिनका जन्म 3 मई 1961 को हुआ था। आप भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे। पूरी दुनिया जब सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रही थी, तब भारत की वैज्ञानिक लड़ाई का नेतृत्व करने वाले मुख्य चेहरों में डॉक्टर भार्गव का नाम सबसे आगे था। और अब हम जानेंगे मई महीने में दुनिया ने विज्ञान जगत के कुछ बेहद प्रतिष्ठित चेहरों को खोया है। डॉक्टर मोनिका मोंटे फाल्कोन, आपका निधन 14 मई 2026 को हुआ। आपने समुद्री पारिस्थितिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर विलियम चार्ल्स लिविंगस्टन, आपका निधन 2 मई 2026 को 98 वर्ष की आयु में हुआ। आपने सौर्य खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया।
3: आज विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को याद करते हुए हमारे सुधी श्रोताओं ने अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए। बिहार विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार,
7: शब्द ब्रह्म के मूल मंत्र को चरितार्थ करते हुए देश के जन जन की आवाज एवं सूचना क्रांति के उद्घोष के प्रतीक आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के गौरवमयी चरित्र के 90 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण आकाशवाणी परिवार और इसे करोड़ों श्रोताओं को मैं प्रेम कुमार, अध्यक्ष बिहार विधानसभा, हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। 8 जून 1936 को अपनी औपचारिक यात्रा शुरू करने वाला आकाशवाणी आज केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं, बल्कि स्वतंत्र भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विकास का आजीवन साथी है। स्वाधीनता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत का निर्माण तक आकाशवाणी राष्ट्र के सूत्र में पिरोने का अभूतपूर्व कार्य किया है। संकट और आपदा के समय इसकी प्रमाणिक खबरों ने हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है, जिससे इसकी विश्वसनीयता आज भी अक्षुण्य है। जन जागृति और राष्ट्र निर्माण सुदूर गांव, खेतों, खलिहानों और सीमावर्ती क्षेत्रों तक ज्ञान और चेतना का प्रकाश फैलाने में इस माध्यम की भूमिका रहती है। कृषि सुधारों से लेकर मन की बात जैसे संवादों के माध्यम से इसने जन जागृति को एक नई दिशा दी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति तक सरल भाषा में पहुंचाकर आकाशवाणी ने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के संकल्प को सिद्ध किया है। मैं इस अवसर पर आकाशवाणी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। यह अद्वितीय संस्थान आदि की अपनी स्पष्टता, राजभक्ति और सेवा से देश को आलोकित करता रहेगा। रेडियो की वह मधुर पुकार आज भी दिलों में बसती है। आकाशवाणी की हर धुन भारत की आत्मा से लगती है।
1: पंचायती राज्य मंत्री बिहार सरकार दीपक प्रकाश,
8: मैं दीपक प्रकाश, मंत्री पंचायती राज विभाग, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब के सामाजिक जीवन में, देश के राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में और साथ ही साथ जो हमारा देश का इतिहास है, उन सब में आकाशवाणी का एक विशेष रोल रहा है। आजादी की लड़ाई हो या विभिन्न कालखंडों में जन आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने का काम हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने कमेंडेबल काम किया है। हम सब के बचपन की यादें भी आकाशवाणी से जुड़ी है। क्रिकेट की कमेंट्री आकाशवाणी पे सुननी हो, पुराने गाने आकाशवाणी पे सुनने हो, सभी विद्यार्थियों के लिए टॉक शोज के माध्यम से ज्ञानवर्धन करने की बात हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने काम किया है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ आकाशवाणी ने अपने को बदलने का भी काम किया है। एनालॉग से डिजिटल तक का सफर आकाशवाणी का विशेष रूप से कमेंडेबल है। आज के इस चकाचौंध और दिखावटी मीडिया के दौर में आकाशवाणी का एक विशेष स्थान है, जो कि हमें अपने चेहरों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। आकाशवाणी का विशेष रूप से हम धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहेंगे आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबों के बीच किया जाने वाला मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होता है। एक बार पुनः आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे करने के लिए बधाई देते हुए, और आकाशवाणी हम लोगों के बीच जीवन का और हिस्सा बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, आज के युवा

0: आकाशवाणी से जुड़े इस बात की शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मेरा नाम नीलम चौधरी है, मैं एक्स आईएएस ऑफिसर हूं और एक कथक डांसर भी हूं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आकाशवाणी का नाम आते ही एक स्पंदन सा होने लगता है और याद आता है अपने स्टूडेंट लाइफ का वो स्टडी टेबल जहां हमेशा एक ट्रांजिस्टर रखा रहता था। क्योंकि मैं म्यूजिक की फील्ड से हूं, इसीलिए म्यूजिक के लगभग सब कार्यक्रम मैं आकाशवाणी का सुना करती थी, चाहे वो शास्त्रीय संगीत का हो या फिल्मी गानों का हो, गैर फिल्मी गानों का हो, भजन हो, लोक संगीत हो, मैं सब कार्यक्रम सुनती थी और वो सारे गाने मुझे कॉन्सेंट्रेशन देते थे और मुझे पढ़ाई अच्छी मेरी होती थी। मैंने महसूस किया है कि आकाशवाणी ने समाज के हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों को अपने कार्यक्रम में इनकॉर्पोरेट किया है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र से हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र से हो, तकनीकी क्षेत्र से हो, नारी सशक्तिकरण की बात हो, लगभग सभी क्षेत्र के लोगों के लिए इसने कार्यक्रम बनाया है। बच्चों के लिए हो, शाम में 7:30 बजे अनंत सिंह का न्यूज होता था, वो तो बहुत ही लोकप्रिय था और बहुत स्पष्ट और बहुत अनबायस्ड कार्यक्रम हुआ करता था। उसके अलावा नाटक में हवा महल और लोहा सिंह का नाटक हम लोग बहुत इंतजार करते थे और सुनना करते थे। तो ये रिचनेस आकाशवाणी में शुरू से रहा है। आज भी हर वर्ग के लिए कार्यक्रम बनाना, उसे सक्सेसफुली प्रसारित करना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है आकाशवाणी की और मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से 90 वर्षों का सफर तय हुआ, उससे भी और आगे बढ़कर आकाशवाणी अपना कार्यक्रम करे, लोगों में प्रिय रहे और हर वर्ग के लोग इसमें जुड़े रहे।
2: प्रोफेसर दिनेश सिंह, पद्मश्री, उपाध्यक्ष जम्मू एवं कश्मीर उच्च शिक्षा परिषद और पूर्व कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय।
3: पूर्ण रूप से अपने हृदय से बधाई दे रहा हूँ आकाशवाणी से जुड़े सारे जो हमारे सहयोगी हैं, और मैं चाहता हूँ कि इसको एक त्योहार के रूप में भारत में मनाया जाए, त्योहार के रूप में कि आकाशवाणी ने भारत के लिए क्या किया। मैं आकाशवाणी से बचपन से जुड़ा हूँ और आकाशवाणी से अमृत बरसता है पूरे देश में, विश्व में। मैंने यहाँ से इतनी रचनात्मक युक्तियों को ग्रहण किया है, इसने भारत की आत्मा को आकाशवाणी ने सींचा है। अब इसके जो एनिवर्सरी आ रही है, इसके 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हम सबको इसमें भागीदारी लेनी है और इस उत्सव को पूर्ण रूप से अपने अपनी जगह मनाना है। आकाशवाणी ने भारत का बहुत भला किया।

0: ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे नई जानकारियों, नवीन शोध परक बातों एवं विज्ञान जगत की हलचलों के साथ।
1: तो सीखें कुछ नया, सोचें कुछ अलग। आज की विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती को तैयार करने में स्वर सहयोग रहा अल्पी कुमारी और संजय किशोर का। संयोजक थे दिलीप झा और प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार। आकाशवाणी पटना।
0: नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लाए हैं श्री सीपी माधवन नंबूदरी द्वारा प्रस्तुत कर्नाटक शास्त्रीय गायन। श्री सीपी माधवन नंबूदरी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी के नाम से जाना जाता है, आकाशवाणी के ए ग्रेड वोकल आर्टिस्ट हैं और कर्नाटक संगीत में 2 दशकों से अधिक के उत्कृष्ट योगदान के साथ अत्यंत सम्मानित कलाकार हैं। उन्होंने 500 से अधिक एकल प्रस्तुतियां की है, जिनमें से अनेक में प्रसिद्ध कलाकारों जैसे डॉक्टर टी के मूर्ति, डॉक्टर उमयालपुरम के शिवरामन, श्री श्रीमुष्णम राजा राव तथा श्री मन्नारगुड़ी ईश्वरन ने संगति की है। उनके कार्यक्रम विदेशों में भी आयोजित हुए हैं, जिनमें अमेरिका, पेरिस, दक्षिण पूर्व एशिया तथा खाड़ी के देश शामिल हैं। केरल के चंगनाशेरी में जन्मे माधवन नंबूदरी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा अपने प्रथम गुरु श्री पीजी पद्म कुमार से प्राप्त की। बाद में वे स्वर्गीय टीवी शंकर नारायणन के शिष्य बने तथा उन्हें श्री पीआर कुमार केरल वर्मा और श्री कलन्यूर चंद्रशेखरन जैसे प्रसिद्ध संगीतज्ञों से उन्नत मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। वे आरएलवी संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय त्रिपोणितरा में पूर्व संगीत प्रवक्ता रह चुके हैं। उन्हें भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से जूनियर फेलोशिप भी प्राप्त हुई है और मद्रास म्यूजिक अकादमी से सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का सम्मान भी प्राप्त हुआ है।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। वी ब्रिंग यू अ कर्नाटिक वोकल कॉन्सर्ट बाय श्री सीपी माधवन नंबूदरी, पॉपुलरली नोन एज चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी। ही इज एन ए ग्रेट वोकल आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी and a highly respected performer with over 2 decades of distinguished contribution to Carnatic music. He has presented more than 500 solo concerts, many of them accompanied by eminent maestros such as Dr. T.K. Murthy, Shri Umayalpuram K. Shivaraman, Shri Shri Mushnam Raja Rao, and Shri Mannarkudi Ishwaran. His performances have also reached audiences abroad, including concerts in the United States, Paris, Southeast Asia, and Gulf countries. Born at Chengannasheri in Kerala, Madhavan Nambudri began his musical training under his first guru, Sri P.G. Padmakumar. He later became a disciple of late T.V. Shankaranarayanan and also received advanced guidance from renowned musicians Shri P.R. Kumara Kerala Varma and Shri Kalanyur Chandrasekharan, a former music lecturer at the RLV College of Music and Fine Arts, Tripunatra. He is also a recipient of the Junior Fellowship from the Ministry of Culture, Government of India, and has been honored with the Best Musician Award from the Madras Music Academy.
2: The contribution of Akashavani to the growth of artists like me is truly immeasurable. Akashavani has provided a dignified platform that nurtures talent and strengthens the cultural fabric of our nation. Best wishes to Akashavani for completing successful 90 years.
0: आज रात के प्रसारण में इनके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर विद्वान तिरुविरा विजू एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही विल बी अकंपनीड बाय विद्वान तिरुविरा विजू एस आनंद ऑन वायलिन, विद्वान कोटयम जी संतोष कुमार ऑन द मृदंगम एंड श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार ऑन द घटम।
0: श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी अपने गायन की शुरुआत स्वाति तिरुनाल की रचना परम पुरुषम से कर रहे हैं, जो राग ललित पंचम पर आधारित है और खंडु चापु ताल में निबद्ध है।
1: श्री सीपी माधवन नंबूदरी बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विद परम पुरुषम, अ कंपोजिशन ऑफ स्वाति तिरुनाल इन द राग ललित पंचमम सेट टू खंडु चापु ताल।

0: अब प्रस्तुत है केसी केशव पिल्ले की एक कृति श्री बालकृष्ण पाहि माम, जो राग पूर्वी कल्याणी पर आधारित है और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू श्री बालकृष्ण पाहि माम।

अपने गायन को जारी रखते हुए श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी अब प्रस्तुत कर रहे हैं श्यामा शास्त्री द्वारा रचित रावे हिमगिरी कुमारी, जो राग तोड़ी पर आधारित है और

0: आदि ताल में निबद्ध है।
1: द नेक्स्ट आइटम इज रावे हिमगिरी कुमारी इन द राग तोड़ी सेट टू आदि ताल कंपोज्ड बाय श्यामा शास्त्री।

0: ये था तनियावर्तनम। मृदंगम पर थे विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार।
1: दैट वॉज तनियावर्तनम प्लेड ऑन द मृदंगम बाय विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार एंड ऑन द घटम बाय श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार।
0: श्री चंगनाश्री माधवन नंबूदरी अपने गायन का समापन पुदुकोड कृष्णमूर्ति की एक रचना श्री हरे से कर रहे हैं, जो कि राग रेवती पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री सीपी माधवन नंबूदरी कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद श्री हरे कंपोज्ड बाय पुदुकोड कृष्णमूर्ति इन द राग रेवती सेट टू आदि ताल।

0: इसके साथ ही संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी का गायन समाप्त होता है। इनके साथ वायलन पर विद्वान तिरुविजा विजू एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार ने संगति की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुवनंतपुरम केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: With that, we conclude the vocal recital by Sri C.P. Madhavan Nambudiri in the broadcast of National Program of Music. He was accompanied by Vidwan Tiruvida Viju S. Anand on the violin, Vidwan Kottayam G. Santosh Kumar on the mridangam, and Sri Vaadapalli R. Krishna Kumar on the ghatam. This broadcast was recorded at Akashvani Tiruvananthapuram and came to you from the Delhi station of Akashvani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: भारत ने पैक सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहेर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि यह भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांचकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्युआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतुकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एहतजान खालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।